FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 सितंबर 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नवी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। दिन की शुरुआत कुछ अच्छे विचारों के साथ हो, जिनसे मन को नई ऊर्जा और सोच को नई दिशा मिलती है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज के चिंतन का विषय है अनुशासन।

0: अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। अनु का अर्थ है पालन और शासन का अर्थ है नियम। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन हमें नियमों का पालन करना सिखाता है, जीवन को सही तरीके से जीना सिखाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है जहां अनुशासन की आवश्यकता होती है। नियमों का पालन करना पड़ता है क्योंकि अनुशासन ही सफलता की ओर ले जाता है। यदि व्यक्ति अनुशासन में रहकर नियमों की पालना करता हुआ कार्य करता है तो वो अपनी मंजिल को सफलता से प्राप्त कर सकता है। अनुशासन सही रास्ता बताता है, चीजों को आसान करता है और हमारे जीवन में सफलता लाता है। अनुशासन आगे बढ़ने का सही तरीका, जीवन में नई चीजें सीखने, अनुभव करने आदि के अवसर प्रदान करता है। यदि जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो भ्रम और विकार पैदा होते हैं, व्यक्ति लक्ष्य से भटकता है, जीवन में प्रगति न होकर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में सफल होने के लिए माता पिता तथा शिक्षकों के आदेशों का पालन करना ही चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए एवं सही तरीके से सब कुछ सीखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और अनुशासन में रहते हुए जीवन जीना चाहिए।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सुबह का शांत वातावरण और भक्ति के मधुर स्वर मन को सुकून देने के साथ साथ भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमेय चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। भक्ति, मर्यादा और जीवन मूल्यों की प्रेरणा देने वाली रामकथा के साथ अब आगे बढ़ते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है अद्भुत और पूजनीय श्री रामचरितमानस गान। आज आप इसमें सुनेंगे कड़ी संख्या 184। संगीतकार हैं सतीश।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

कि उनका कल्याण मात श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं। रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा,

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए प्रसारित होगा उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात। उसके पश्चात ठीक 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत। कार्यक्रम वातायन का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 7:20 पर। दिल की जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुनेंगे ठीक 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 8:45 पर और सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 9:10 पर और 11:00 से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 9:30 पर।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 11:30 पर और रात्रि 10:00 से 11:00 तक।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं किसान श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेती निवाद।
1: खेती निवाद कार्यक्रम हमरा वारा सब किसान भाई ने निबोने ने वीणा बेनो राम राम राम राम। किसान भाइयों देखो, आ हवा नो टेम है ने आ हवा ना टेम में आपड़े जो खेतर नो काम काज है ई करवो पड़ी रो है। देखो खास करे ने आना हवा ना टेम में आपड़े खरीफ फसल नी बात कर, आ पाने वारो जरा इंतजार आपड़े ने करावी रो थको तो पण समय पाते पासो आवी गयो। देखो जरा पहले आवानी आपड़े जरूरत थी, पहले जी भी मक्का वगैरह ने पानी नी जरूरत थी, पई जरा वेर लगाड़ लीधी पण पाने समय माते आवी गयो तो आपड़ी जी लाज है ई रही गई, वधार नुकसान थत थे कि आपड़े बसी गया। किसान भाईओ देखो इधे हवे पाणा वारे ने साथ में है, कई घड़ी आवे कई घड़ी वहरी जाए, पण हवे देखो आपड़े खरीफ फसल में खास करीने मक्के वगैरह तो हवे थई रही थकी है ने पोकड़ो वगैरह भी तैयार थई गया है, ने हवे खरीफ फसल में जे भी आपड़े सोयाबीन वगैरह है दलहनी तिलहनी फसल करी थकी है, आना नो आपणे विशेष करीने किसान भाईओ ध्यान राखवू है, क्योंकि हवे आ फलियो

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो,
3: हाँ हाँ,
2: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर कीर्ति सोलंकी से वार्ता। वार्ता का विषय है राजभाषा हिंदी, दशा और दिशा। आइए श्रोताओं,
2: निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। आधुनिक काल में हिंदी के स्वरूप को स्थापित करने के संघर्ष की पीड़ा को अभिव्यक्त करती बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां देश भाषा के महत्व को उद्घाटित करती हैं। जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, उनका विकास संस्कृत से हुआ है, वैसे ही हिंदी का विकास भी संस्कृत से हुआ है। यह विकास अनेक सोपानों को पार करते हुए हुआ है। सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, और पाली के बाद प्राकृत प्रचलन में आती है। प्राकृत तक आते आते कई रूप हो जाते हैं, जिसमें सन 1000 के आसपास अपभ्रंश भाषा प्रचलन में आती है एवं उससे शौरसेनी, अर्धमागधी एवं मागधी प्रचलन में आती है।

देती है। इन तीनों अपभ्रंशों से हिंदी की बोलियों का विकास होता है। आदिकाल में डिंगल, मध्यकाल में अवधी और ब्रज एवं आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का रूप प्रचलन में आता है, जिसे हमारे विभिन्न विद्वानों ने अपने परिश्रम से परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत कर रूप स्थिरीकरण का प्रयास किया है। भारत की अस्मिता और राष्ट्रीय अखंडता की परिचायक और आधार हिंदी रही है। हिंदी अमीर खुसरो से लेकर संतों, फकीरों, मजदूरों और किसानों की भाषा रही है। इसने भक्ति काल में पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर भारत राष्ट्र को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से सुगठित और समृद्ध किया है। यह नानक, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा और जायसी की भी भाषा रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय पूरे देश के लिए एक भाषा की आवश्यकता अनुभव की गई, जो संपर्क भाषा का कार्य करे, इसलिए राष्ट्रभाषा का नारा पैदा हुआ एवं इसके लिए सभी ने एक स्वर में हिंदी को उपयुक्त पाया। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों की आवाज बनी। लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। उनका कथन था कि प्रांतीय कार्यों के लिए प्रांतीय भाषाएं ही चले, किंतु अंतर प्रांतीय विचार विनिमय का माध्यम हिंदी ही होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय, राजगोपालाचारी, के एम मुंशी आदि सभी अहिंदी भाषी नेताओं ने हिंदी में भाषण देकर हिंदी को लोकप्रियता प्रदान की। हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र भी अहिंदी भाषी क्षेत्रों से निकले। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव गुजराती भाषी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और तमिल भाषी गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। इसी के फलस्वरूप 14 सितंबर 1949 को संविधान की धारा 343 पारित हुई, जिस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी से संबंधित प्रावधान हैं। हमारे भारतीय प्रांतों का विभाजन भी भाषाई आधार पर किया गया है। राजभाषा हिंदी में कामकाज करने की दृष्टि से भारतीय संघ के राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, क, ख एवं ग। क श्रेणी के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार हैं। इन राज्यों में पत्र व्यवहार अनिवार्य रूप से हिंदी में होगा। असाधारण मामलों में यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। ख श्रेणी के राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब आते हैं। इन राज्यों में राज्य सरकार को पत्र या उस राज्य में स्थित केंद्र सरकार से भिन्न कार्यालय को पत्र सामान्य रूप से हिंदी में भेजा जाएगा। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो साथ में हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा। ग श्रेणी के राज्यों में क और ख को छोड़कर अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पत्र हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। वैश्वीकरण के दौर में जब आर्थिक मुद्दे सर्वोपरि हो गए हैं, हिंदी को विश्व भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का मार्ग खुल गया है। वैश्वीकरण की प्राचीन भारतीय अवधारणा में लोक मंगल और लोक रक्षण का भाव था, जो वसुधैव कुटुंबकम की सुगंध से सुवासित था। हिंदी का चरित्र बेहद लोकतांत्रिक है, इसलिए वह अपनी कमी को दूर करते हुए कई भारतीय और अभारतीय शब्दों को अपना अंग बना चुकी है। हिंदी का शब्द पाचन कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हिंदी के प्रसिद्ध साठोत्तरी कवि लीलाधर जगुड़ी अपनी पुस्तक रचना प्रक्रिया से जूझते हुए में लिखते हैं, हमने व्यक्ति की श्रेष्ठता को ही हमेशा बड़ी चीज माना और मिश्रित होने को शुद्धता के विरुद्ध माना, परंतु वे विनय पूर्वक कहते हैं कि 3 चीजें मिलावट के बिना नष्ट हो जाती हैं, एक तो बीज, दूसरी भाषा, तीसरा अंतरिक्ष। इन तीनों में सम्मिश्रण है तभी वे विकसित हैं और परिवर्तनशील हैं और उनकी निरंतरता बनी हुई है। आत्यंतिक शुद्धता का आग्रह भाषा की समाप्ति का कारण बन जाता है। जैसे नदी अपने उद्गम से जितना जल लेकर चलती है,
अगर मात्र उतना

0: ही जल लेकर आगे बढ़ती रहे और मार्ग में मिलने वाली अन्य नदियों का जल उसमें न मिले तो वह मूल नदी अपना प्रवाह खो बैठेगी। ऐसी नदी और ऐसी भाषा लंबी यात्रा नहीं कर सकती। मिलीजुली भाषा और नदी अधिक समृद्ध होती है। वैश्विक स्तर पर हिंदी अधिक ऐश्वर्यवान हुई है। ब्लॉग लेखन, ई पत्रिकाएं और ई बुक्स ने हिंदी के प्रचार प्रसार और व्यवहार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विज्ञापन के बाजार ने हिंदी को अपनी वैश्विक छवि बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज गूगल और अमेजन हिंदी में ऐप बना रहे हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त नागरी लिपि के वैज्ञानिक स्वरूप का वर्णन करते हुए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अनायास ही नहीं कहा है कि जब बोलकर लिखने की तकनीक विकसित हो जाएगी तो हिंदी सर्वाधिक सफल भाषा होगी। देवनागरी लिपि के कारण हिंदी की लिपि विश्व की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि है। दुनिया की ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जो देवनागरी में अविकल न लिखी जा सके। हिंदी अब सिर्फ कागज के पन्नों तक सीमित नहीं रही। हिंदी किताबों के ई संस्करण के साथ साथ हिंदी पत्र पत्रिकाएं भी अपना ई संस्करण जारी कर रही हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा व साहित्य को नए आयाम मिल रहे हैं। आज हिंदी के वेब पोर्टल सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं। विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी सिनेमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अहिंदी भाषी अभिनेता और अभिनेत्रियों की देन उल्लेखनीय है। हिंदी सिनेमा ने आज अपनी वैश्विक छवि बनाई है। आज बॉलीवुड के नाम से मशहूर हिंदी सिनेमा अरबों का व्यापार कर रही है। हिंदी सिनेमा ने भी हिंदी की समृद्धि में श्री वृद्धि की है। हिंदी सिनेमा ने भाषाई बंदिशों को तोड़कर दर्शकों के हृदय की भाषा, जनभाषा तथा व्यवहार में संपर्क की भाषा बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। निष्कर्षतः प्रत्येक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसकी पहचान होती है। चीन की मंडारिन, इंग्लैंड की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रेंच की तरह भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा के स्थान की अधिकारी है। यह जनतंत्र की भाषा है क्योंकि इसने लगभग 38 बोलियों और 14 बड़ी भाषाओं से अपनी शक्ति पाई है। यहाँ बाल कवि वैरागी की हिंदी भाषा विषयक कविता उल्लेखनीय है। हिंदी नहीं किसी की दासी, हिंदी अपने घर की रानी। हिंदी है भारत की भाषा, हिंदी है गंगा का पानी, हिंदी अपने घर की रानी। भारत में ही जन्मी हिंदी, भारत में परवान चढ़ी, भारत इसका घर आंगन है, नहीं किसी से कभी लड़ी। सबको गले लगा कर चलती, करती सबकी अगवानी, हिंदी अपने घर की रानी। खेतों खलिहानों की बोली, आंगन आंगन की रंगोली, सत्यम शिवम सरलतम सुंदर, पूजा की यह चंदन रोली। जन्म जन्म जन जन की भाषा, कण कण की वाणी कल्याणी, हिंदी अपने घर की रानी। भूख नहीं है इसे राज की, प्यास नहीं है इसे ताज की, करती आठों प्रहर तपस्या, रचना करती नव समाज की। याचक नहीं नहीं है आश्रित, सदा सनातन अवढर दानी, हिंदी अपने घर की रानी, हिंदी अपने घर की रानी। धन्यवाद।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम वातायन। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: सूरज इस फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे रचा है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

गाते हैं, हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं। कैसे

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
1: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
0: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में सुनिए कैदी नंबर 911 का ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम का संगीत।

0: अंतराल पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था सुहागन फिल्म से, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, मदन मोहन का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शेरा फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने इसे गाया है, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत।
2: कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से, चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से। बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
5: अरे जा जा
6: जा जा जा।

जाती है नशीली शाम के पर्दे में सुबह मुस्कुराती है वो शोला हो के

किसी से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे जा।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं ससुराल फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी ने इसके अल्फाज लिखे हैं और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

हम है राही प्यार के आप कार्यक्रम सुन रहे थे विविध भारती से। आज मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी के लिखे कुछ लोकप्रिय गीत हमने आपको सुनवाए। अब दीजिए नेहा अगरकर देसाई को आज्ञा। नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया, कहा पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड

0: टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच थ्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करना लोड पर खाटू श्याम तिल्ली धाम में 108 कुंडी यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
5: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
6: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया।

0: फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
1: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
2: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
1: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जनभागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

0: ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है।

0: की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द हैं। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिन्दुस्तान की खबर है। हिन्दुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से। मैं हूं आपकी दोस्त रेडियो होस्ट हीना जैन, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में। दोस्तों, किसी ने पत्थर को आकार दिया, किसी ने लकड़ी को सुंदर रूप दिया, किसी ने लोहे को मशीन में बदला, किसी ने मशीनों को नई तकनीक दी, किसी ने अपने हाथों से घर बनाया तो किसी ने अपने हुनर से पूरी दुनिया को नई दिशा दी। इन सभी हाथों में एक समानता है, ये हाथ सिर्फ काम नहीं करते, ये हाथ सृजन करते हैं। भारतीय परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को दिव्य शिल्पकार और निर्माण कौशल से जोड़ा जाता है। विश्वकर्मा पूजन का अवसर हमें अपने औजारों, मशीनों और कार्यस्थल के साथ साथ उस मेहनत का सम्मान करने की प्रेरणा देता है जिससे हमारी दुनिया आगे बढ़ती है। तो आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं, ये दिन है हुनर को नमन करने का, श्रम को सम्मान देने का और सृजन की शक्ति को पहचानने का। आइए इसी खूबसूरत विचार के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम कुछ दिल से का। सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसा गीत जो मेहनत और अपने देश से प्रेम करना सिखाता है। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हम सुबह उठते हैं तो हमारे आसपास कितनी सारी चीजें होती है। हमारा घर, कुर्सी, हमारी गाड़ी, मोबाइल, हमारे खेतों के उपकरण, कारखाने और न जाने कितनी सारी चीजें। इनमें से हर चीज के पीछे किसी न किसी इंसान का हुनर और मेहनत छिपी है। हम अक्सर तैयार चीज को देखते हैं लेकिन उसे बनाने वाले हाथों को भूल जाते हैं। विश्वकर्मा पूजन हमें उन्हीं हाथों को सम्मान देने का अवसर देता है। वो हाथ जो गर्मी में भी काम करते हैं, ठंड में भी काम करते हैं, धूप में भी मेहनत करते हैं और अपनी कला से दूसरों के जीवन को आसान बनाते हैं। हाथों में हुनर हो तो पत्थर भी बोलता है। मेहनत का हर कतरा सफलता में ढलता है। जो अपने काम को पूजा समझकर करते हैं, उनके हाथों से ही नया संसार बनता है। इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, एक कारीगर के लिए उसका औजार केवल लोहे या लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता, वह उसके हुनर का साथी होता है। बढ़ई के लिए उसकी आरी और हथौड़ा, लोहार के लिए उसकी भट्टी और औजार, किसान के लिए उसके कृषक उपकरण, इंजीनियर के लिए उसकी तकनीक और आधुनिक दुनिया के तकनीक विशेषज्ञों के लिए कंप्यूटर और मशीनें। इस क्षेत्र के हर क्षेत्र के अपने औजार हैं, और जब हम इन औजारों की पूजा करते हैं तो असल में हम अपने काम और अपनी मेहनत का सम्मान करते हैं। यह भावना हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाती है, अपने काम को छोटा मत समझिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम के पीछे लगी ईमानदारी और मेहनत उसे महान बनाती है। जिस हाथ में हुनर है वही हाथ भविष्य का निर्माण करते हैं। और याद रखिए, काम कोई भी हो, अगर ईमानदारी से किया जाए तो वही काम सम्मान बन जाता है।

हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने हुनर से हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। कोई घर बनाता है, कोई कपड़े सिलता है, कोई फर्नीचर बनाता है, कोई बिजली की समस्या ठीक करता है, कोई मशीन की मरम्मत करता है, कोई मिट्टी से खूबसूरत वस्तुएं बनाता है। कभी हमने रुक कर उनसे कहा, आपका काम बहुत जरूरी है? शायद नहीं। हर किसी का काम की कीमत अक्सर तभी समझते हैं जब वह काम करने वाला व्यक्ति हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। इसलिए आज हर मेहनतकश इंसान को सम्मान दीजिए, उनके काम की कीमत समझिए, क्योंकि हमारे शहर, हमारे घर, हमारी सुविधाएं किसी एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं, लाखों हाथों की मेहनत से बनती है। कोई ईंट उठाता है, कोई दीवार सजाता है, कोई मशीन चलाता है, कोई पहिया घुमाता है, कोई खेतों में पसीना बहाता है, तभी तो हमारा जीवन आगे बढ़ पाता है। इन्हीं बातों के साथ आइए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों आज भगवान विश्वकर्मा का पूजन करते हुए आइए सिर्फ मशीनों और औजारों को ही नमन नहीं करें, उन हाथों को भी नमन करें जो इन्हें चलाते हैं, उन दिमागों को भी नमन करें जो नए विचार पैदा करते हैं, उन लोगों को नमन करें जो अपने श्रम से हमारे जीवन को बेहतर और आसान बनाते हैं, और खुद से वादा करें काम कोई भी हो हम उसका सम्मान करेंगे, मेहनत करने वाले हर इंसान का सम्मान करेंगे और अपने हुनर को पूरी ईमानदारी से निखारेंगे, क्योंकि जहां मेहनत का सम्मान होता है वहीं सृजन का जन्म होता है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मैं हिना जैन आपसे विदा लेती हूं। भगवान विश्वकर्मा से यही प्रार्थना है कि हम सभी को अपने कर्म में निष्ठा, अपने हुनर में निखार और अपने जीवन में सृजन की शक्ति मिले। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैठक 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः 8:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज में गाए कुछ राजस्थानी गीत।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: इसी के साथ कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 9 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 की शुरुआत आज से। इस बार की थीम है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। प्रदेश भर में आज विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और राज्य के 305 नगरीय निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए 872 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। सम्मेलन में सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नेदरलैंड्स, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन होंगे। इसके अलावा 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और स्टार्टअप के लिए अलग पवेलियन भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री के स्मृति चिन्हों की 8वीं नीलामी आज से शुरू होगी। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से होने वाली इस ई नीलामी में 1498 स्मृति वस्तुएं शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में ई नीलामी के 8वें संस्करण की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस बार का संग्रह भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत, कला, शिल्प कौशल और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाता है। श्री शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री की लोक कल्याण की भावना के मद्देनजर ये ई नीलामी की जा रही है।
7: प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया जो लोक कल्याण को के रूप में जो कुछ भी समाज से प्राप्त हुआ, चाहे व्यक्तिगत उपलब्धि,

0: व्यक्तिगत पारिश्रमिक होगा या ये वो व्यक्तिगत रूप से मिले हुए उपहार होंगे, वो सब लोक कल्याण के रूप में समाज को लौटाना ही मेरे जीवन का अवलंब है। और प्रधानमंत्री जी की ये आठवीं उनको प्राप्त स्मृति चिन्ह बजानी जो है वो उनके इसी नैतिक और राजनीतिक दर्शन की साकार अभिव्यक्ति।
1: स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा सफाई मित्र, सुरक्षा तथा सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जनभागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल हैं। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 और कचरे के 4 स्तरों पर स्रोत पृथक्करण के बारे में जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थलों और पर्यटक केंद्रित समुद्र तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 1 अक्टूबर को एक दिन एक घंटा और एक साथ के अंतर्गत देश भर में स्वैच्छिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आज प्रदेश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने जयपुर विभागीय बैठक की अधिकारियों की बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी, युवक संघ, स्वयंसेवी संस्थाओं, महाविद्यालयों और स्थानीय ब्लड बैंकों के साथ मिलकर शिविर आयोजित करने को कहा। सभी जिलों में शिविरों में अधिक से अधिक युवाओं, स्वैच्छिक रक्तदाताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। रक्तदान के इच्छुक लोगों का ई रक्त कोष पोर्टल पर पंजीयन कराया जाएगा। हर शिविर की फोटो और वीडियो भी इस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर शिविरों में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों और आचार आदर्श संहिता की पालना सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए कुल 872 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार इन उम्मीदवारों की ओर से कुल 989 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इनमें 7 नगर निगमों में महापौर, नगर परिषदों में सभापति और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। कल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 21 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं उपाध्यक्ष पदों के लिए 22 सितंबर को मतदान और मतगणना होगी। इस बीच कल 4 नगर निकायों में हुए पुनर्मतदान के बाद वोटों की गिनती की जा रही है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका शामिल हैं। ताजा अपडेट के अनुसार जयपुर के चारों वार्ड में 5 मतदान केंद्रों पर कराए गए पुनर्मतदान के नतीजे मिल चुके हैं। चारों वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। प्रदेश में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत ई बसों के निर्बाध संचालन के लिए ढांचागत विकास के कार्य प्रगति पर हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक चार्जिंग ढांचे का निर्माण और स्थापना तय समय में पूरा करने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए ई बस सेवा को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत प्रदेश को 2 चरणों में 1150 बसें मिलनी हैं, जिनमें से अब तक 229 बसें प्राप्त हो चुकी हैं। अलवर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता सी जोसेफ विजय का एआई से डीप फेक वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने

0: एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के बुटोली निवासी साइबू खान के रूप में हुई है। अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि तमिलनाडु सीबीसीआईडी की साइबर क्राइम टीम ने डिजिटल ट्रेल के आधार पर आरोपी को राजस्थान में ट्रेस किया। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि अलवर पुलिस साइबर अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है।
1: अलवर जिले में साइबर क्राइम में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति साइबर क्राइम करेगा, चाहे इसे विक्टिम अलवर का रहने वाला हो और कहीं बाहर का रहने वाला हो या कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो, से पूर्व में भी कई बार कई वीआईपी व्यक्तियों के इंपर्सनेशन से, कई अधिकारियों के इंपर्सनेशन करके पैसे लेने के प्रकरण प्रकाश में आए। सभी प्रकरणों में एसपी ऑफिस के लेवल पे सुपरवाइज हुआ है और सभी प्रकरणों में हमने मुजरिम को गिरफ्तार करके कंसर्न अथॉरिटीज को दिया।
0: दौसा, बालोतरा और धौलपुर में करीब 552 एकड़ भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों के लिए ई बिड प्रक्रिया के बाद अब भूमि आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। पार्कों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत की जा रही है। ई बिड प्रक्रिया में दौसा के 3 भूखंडों के लिए 7, बालोतरा के वेदलाई में 5 और धौलपुर के बिजौली के लिए 2 उद्यमियों ने भाग लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 की शुरुआत आज से। इस बार की थीम है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत विकसित भारत। प्रदेश भर में आज विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और राज्य के 305 नगरीय निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए 872 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब समय हो चला है सुगम संगीत का। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रवींद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा, अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविन्द्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वाइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविन्द्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक

0: स्वरूप मिला। नाट्य से रविन्द्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविन्द्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविन्द्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविन्द्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविन्द्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल

0: तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट है, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

0: सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
2: एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो साहित्यकार हैं, कथक की नृत्यांगना और कथक पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और वायुसेना से भी उनका अच्छा खासा जुड़ाव रहा है और यायावरी उनकी विशेषता है। वो है जानी मानी साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्ते ममता, बहुत आभार आपका।
2: मनीषा जी, चलिए आपको हम बचपन के गलियारों में ले चलते हैं, जहां से आपने रेडियो में कदम रखा था और मेरे ख्याल से राजस्थान आकाशवाणी। तो किस जगह पर आपने पहली बार अपनी आवाज रेडियो पर सुनी दी और कैजुअल अनाउंसर के रूप में थी?
3: बिल्कुल बिल्कुल ममता, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और अगर मैं बचपन में कहूं तो बच्चों के कार्यक्रम आते थे तो हम स्कूल की तरफ से आकाशवाणी में जाते ही थे। और उदयपुर की बात है, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी, तब कैजुअल अनाउंसर्स के लिए एक विज्ञापन निकला था और हमारा कॉलेज और हॉस्टल और आकाशवाणी एकदम पास पास ही थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और मैंने ऑडिशन दिया और हो गया। उसके बाद मैं लंबे समय तक, जब तक मैंने अपनी पढ़ाई एमफिल नहीं कर लिया, तब तक मैं आकाशवाणी से जुड़ी रही। आकाशवाणी उदयपुर की बात है ये
2: जी। तो लेखन में कैसे आपने कदम रखा?
3: मजेदार बात बताऊं तो आकाशवाणी ही वो एक योजक रहा मेरे और साहित्य के बीच में। हुआ ये कि क्योंकि मैंने BSc किया था और आकाशवाणी में आने के लिए और वहां पे अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको अच्छी हिंदी की जरूरत होती है और अच्छी किताबें, वहां की लाइब्रेरी बहुत रिच थी, तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी आके मुझे लगा कि मुझे हिंदी में MA करना चाहिए और मुझे अपनी हिंदी पे काम करना चाहिए।
2: क्या बात है?
3: तो मैंने BSc के बाद सीधे हिंदी में MA किया और साहित्य से जुड़ाव मेरा वहीं से शुरू हुआ। और MA कर रही थी तभी साहित्य अकादमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी युवा का।
2: क्या बात है?
3: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: तो पहली बार आपने कविता लिखी या कहानी लिखी?
3: पहली मैंने कविताएं लिखी। कविताएं तो मैंने बचपन से लिख ली, जब मैं

0: किशोरावस्था में थी तब माँ कहती थी कुछ लिखो, क्योंकि मेरी माँ को भी साहित्य में बहुत रुचि थी और वो कविताएं लिखती थी, तो मैं माँ की डायरी देखती थी तो मुझे लगता था मैं भी कविताएं लिखूं। तो मैंने किशोरावस्था में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम में जो मछली है उसको और एक किशोरी लड़की की जो मानसिकता है उसको कंपेयर करते हुए बचपन में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम।
1: जी जी
0: हाँ, बस ये कि मेरा मन इस एक्वेरियम में मचलती हुई मछली जैसा है, उसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी। और तब मैं 12 साल की थी तो मैंने कविताएं पहले लिखना शुरू किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे कविताओं में ज्यादा जगह नहीं मिल पाती अपने आप को अभिव्यक्त करने की, तो मैं कहानी की तरफ आई।
1: जी, तो पहली कहानी छपने की बड़ी लोगों को खुशी होती है और इंतजार भी होता है, तो पहली कहानी छपने का वो इंतजार और वो खुशी साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के
0: बिल्कुल
1: साथ।
0: ममता, मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी और मैं भेजा करती थी, साक्षात्कार एक पत्रिका होती थी, भैरव जी उसके संपादक थे, हंस में मैं बहुत सारी कहानियां भेजती थी, और तुम हैरत में पड़ जाओगी कि तब संपादक बड़े कड़क होते थे और मेरी बहुत सारी कहानियां वापस आ जाती थी, और उस निराशा को मेरे जो सहयात्री हैं अंशु वो देखते थे, तो कई बार वो जो खेत सहित पत्र आता था ना उसको ऑफिस में ही फाड़ देते थे, आके बता देते थे कि कहानी लौट आई है। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसको स्वीकार किया, मतलब 5-6 कहानियों के खेत सहित वापस आने के बाद एक कहानी प्रेत कामना राजेंद्र यादव जी ने स्वीकार की, और जब वो छपी तो मेरी खुशी का पारावार नहीं था। और सच पूछो तो मैं साहित्य की दुनिया में बस एक कहानी के लिए आई थी, वो अलग बात है कि साहित्य की दुनिया ने मुझे रोक लिया, क्योंकि वो कहानी छपी उसके बाद मेरे पास फोन आया कि अगली कहानी कब। तो मुझे लगता है कि आपकी जो नियति होती है वो निश्चित कर लेती है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने तो कथक भी चुना था अपने लिए, मैंने उसके अलावा बहुत सारी रेडियो में भी जाने का सोचा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ क्योंकि वायुसेना अधिकारी की पत्नी थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि हर 3 साल बाद सामान बांधो और चल पड़ो
1: जी।
0: तो मुझे लगा कि लिखना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
1: क्या बात है,
0: तो मैंने कहानी लिखी और वो छपी।
1: आपने जिक्र किया अंशु जी का जो आपके पति हैं, और वायुसेना का जिक्र किया कि वायुसेना अधिकारी, तो वायुसेना में पति होना बहुत ही कड़क मिजाज होता है और माहौल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो कैसे आपने साधा, अपने जीवन को कैसे जोड़ा?
0: मैं सच बताऊं ना तो मैं जितने सैन्य अधिकारियों से मिली हूं उनसे नरम मिजाज कोई नहीं होता, वो होते होंगे अपनी कार्यशैली में डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन होता है, समय की एक सीमा रेखा को वो समझते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत औपचारिकताएं भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेना में पत्नियों का सम्मान बहुत है, और क्योंकि हम बहुत सारे समय अकेले रहती हैं तो आपस में एक परिवार की तरह रहता है। तो अंशु से तो मतलब अगर मैं बात कहूं तो उनसे बड़ा मेरे लिए सपोर्टर कोई नहीं रहा, उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया कि मैं लिखूं, और तुम्हें याद होगा कि मैं एक हिंदी नेस्ट नाम से एक साहित्यिक पत्रिका वेब पोर्टल जो कि हिंदी का पहला वेब पोर्टल है वो हमने शुरू किया था, वो अंशु ने ही चाहा था कि मैं साहित्य में इस तरह से इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने उनकी सहायता से उसे आरंभ किया था
1: जी।
0: तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, कड़क वो नहीं है बिल्कुल भी, और अनुशासित है।
1: वैसे तो बहुत नरम दिल लगते हैं बातचीत में, क्योंकि हमारी भी मुलाकात हो चुकी है, और आपकी जो एक कार्यशाला है उस कार्यशाला में बाकायदा वो सहयात्री से नजर आते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पति का साथ आपकी निजी जिंदगी में तो होता ही है, लेकिन आपकी व्यावसायिक जिंदगी में जहां पे आपका लेखन है वहां पर अगर पति पूरी तरह समर्पित हो तो ये बड़ी बात है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और अब बात चल रही है अंशु जी की, आपके जीवन साथी की, तो मुझे लगता है यहां पर एक गाना होना चाहिए उनके नाम।
0: बिल्कुल, मुझे याद है कि जब हमारी सगाई हुई थी तो मुझसे कहा गया कि कोई गाना सुनाइए, तो मुझे उनकी आंखें देखकर एक ही गाना याद आया, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं।
1: तो सुनते हैं घर फिल्म का ये गाना।

0: गाने के बाद मनीषा जी हम आपकी साहित्यिक दुनिया पर दस्तक देते हैं। आपके 7 उपन्यास पूरे हो चुके हैं और अपने साहित्य की दुनिया में उपन्यास लिखना बहुत चुनौती की बात होती है, तो कहां से शुरू करें हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी लेखन यात्रा बहुत लंबी है। हम शिगाफ से शुरुआत करते हैं, कैसे आपके जहन में ये विचार आया? विस्थापन की बातें हैं इसमें।
1: बिल्कुल ममता, अगर मैं कहूं तो कश्मीर हम लोग रहे हैं तो,
0: और कश्मीर का पूरा परिदृश्य है।
1: हाँ, कश्मीर मेरा रहना हुआ और वहां के अनुभवों को देखना हुआ, तो मैं हमेशा ये कहा करती हूं कि जब भी कोई एक पेड़ गिरता है तो दूसरा पेड़ भी उस विस्थापन को झेलता है। तो जब वहां से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने ही उस आतंकवाद का सारा दुख झेला है, जो लोग रह गए थे और उन लोगों ने भी अपनी खुली जड़ों के साथ उस विस्थापन को झेला है वहीं रहकर। तो कश्मीर शिगाफ जब मैंने लिखा तो वो एक दरार की बात है, एक जमीन के भीतर पड़ जाने वाली दरार की बात है जिसका भरना मुश्किल होता है
0: जी।
1: तो मैंने उसको आंखों से देखा था तो मुझे लगा कि मेरे को इस पे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पूरी घटनाएं देखी, काफी घटनाएं देखी। वो एक ऐसा समय था जब आपकी अगर श्रीनगर या अनंतनाग या अवंतीपुर पोस्टिंग होती है तो आपको सशस्त्र गाड़ियों में स्टेशन से सिर्फ वहां जाते थे, और मैंने कोई कश्मीर नहीं देखा था तब। पोस्टिंग हुई 1-1.5 साल और बस वहां रहे और आ गए, ऐसा मतलब कोई कश्मीर देखने की जो उत्साह था वो देख नहीं पाए। लेकिन उसके बहुत सालों बाद जब मैं लेखक बन गई, तो जब मैं युवा लेखक थी तो साहित्य अकेडमी की एक कार्यशाला हुई।
0: अभी भी युवा लेखक हैं आप कोई कह नहीं सकता कि आप
1: तो उस कार्यशाला में दोबारा से पहलगाम जाना हुआ, तब मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे जहन में आई कि मैं उनको लिखूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और वो

0: की बात भी है उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो कैसे आपने तो लिखा, क्या किसी डॉक्टर से सलाह ली, क्या आपके जहन में कहां से आया किरदार ये?
1: दरअसल सिज़ोफ्रेनिया शब्द पहले शिगाफ में आया था
0: जी।
1: तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, पर मुझसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वायुसेना में ही थे, डॉक्टर दीक्षित, उन्होंने

0: ने पूछा क्या तुम जानती हो सिज़ोफ्रेनिया एग्जैक्टली होता कैसे है. मैंने कहा नहीं. तो उन्होंने मुझे कुछ केसेस पढ़ने के लिए दिए
1: जी.
0: तो मैं चौंक गई कि ऐसे भ्रम होते हैं लोगों को कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनके सामने कोई बैठा है जो कि है ही नहीं. एक काल्पनिक पात्र उनके जीवन में हमेशा या कई कई काल्पनिक पात्र हमेशा साथ चलते हैं. तो ऐसा होना, जब मैंने वैसे केस हिस्ट्रीज पढ़े तो मुझे लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में मनोविदलन या मानसिक जो विक्षेप है उन पे बहुत कम किताबें हैं. तो क्योंकि मैं फिर यहां विज्ञान काम आया, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा ही हूं, तो मेरी उत्सुकता थी इस मनोविकारों के बारे में जानने की. तो मैंने काफी रिसर्च किया, मैंने कुछ पात्रों से मिली. मैं
1: जी
0: एक ऐसे पात्र से मिली जो बिल्कुल ही देसी एक आदमी था. उसके बारे में मैंने जाना कि

0: जो बिल्कुल ही देसी एक आदमी था, उसके बारे में मैंने जाना कि वो रास्ते में चल रहा था और रास्ते भर बात करता जाता था, सामने से हट जाओ नहीं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे। तो वो अपने आप से बात करता था। हम पहले कहा करते थे ना कि ये लोग पागल हैं या ये लोग उनके ऊपर कोई साया है, तो वो सब नहीं होता था। तो मैंने बहुत गहरे से पढ़ा, तो जो सिज़ोफ्रेनिक होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनको वो सब चीजें दिखाई देती हैं। तो जैसे होता ना कि हमारी कोई अखबार छप के आया, उसमें डबल छपाई आ जाती है, तो ऐसे ही केमिकल लोचा है जिससे दिमाग में भ्रम पैदा होते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे भ्रमों के साथ जीना कितना मुश्किल होता होगा, तो मैंने गुलनाज फरीबा नाम के एक कलाकार को लिया
1: जी जी।
0: क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बहुत ब्रिलियंट, बहुत प्रतिभाशाली लोगों में सिज़ोफ्रेनिया होता है। अगर हम देखें तो

0: किसी बहाने स्पर्श करते हैं तो वो बड़ा त्रासद होता है, तो
1: अवांछित स्पर्श।
0: हाँ, और वो समाज को एक संदेश भी देता है उपन्यास। ऐसे ही एक उपन्यास है पंचकन्या, जिसे आपने लिखा है, जिसमें स्त्री पात्र हैं, तो क्या स्त्री पात्रों के जरिए कुछ समाज को संदेश भी देना चाहती हैं?
1: बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती थी कि जो हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, जिसको हम आयात कर लेते हैं, हम इसको पाश्चात्य दुनिया से लाते हैं कि हम सिमोन द बोवार और वर्जीनिया वुल्फ और बहुत सारी जो फेमिनिस्ट जो पाश्चात्य उसमें हुई हैं दार्शनिक, तो हम उसको हूबहू भारत पे लाके लागू कर देते हैं। वहीं मैंने एलिस वॉकर को देखा, उन्होंने कहा कि हम लैटिन अमेरिकन औरतों का फेमिनिज्म पाश्चात्य आधुनिक स्त्रियों से अलग है, क्योंकि हम नाचना पसंद करती हैं, हम श्रृंगार करना पसंद करती हैं,
0: और गहने पहनना,
1: गहने पहनना, और वहां पे अगर पाश्चात्य बिल्कुल यूरोपियन अगर हम फेमिनिज्म की तरफ देखें, तो वहां तो वो सजने को पुरुष के लिए मान लेती हैं।

0: जी जी
1: कि मतलब उनका पुरुष की छायाएं उनके ऊपर नहीं थी सतियों की तरह, वो अपने आप में आजाद स्त्रियां थी। और पुराणों में कहा जाता है इन पांचों स्त्रियों के स्मरण मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं। ये स्त्रियां कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी।
0: क्या बात है।
1: हाँ, तो इन सब के पैरेलल मैंने आधुनिक स्त्रियों को गढ़ा और इस उपन्यास को लिखा। तो ये मेरा शिगाफ के बाद दूसरा उपन्यास था जिसे लिख के मुझे संतुष्टि हुई।
0: जी, और आगे भी उपन्यास की यात्रा जारी है। यहाँ पर हम एक विराम देते हैं और एक गाना सुनते हैं। कौन सा?
1: बिल्कुल, एक गाना मुझे गृह प्रवेश फिल्म का बड़ा पसंद था।
0: हाँ।
1: आप अगर आप न होते तो भला क्या होते, लोग कहते हैं कि पत्थर के खुदा होते।
0: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना।

0: आप अगर आप न होते तो क्या होते, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक साहित्यकार न होती तो क्या होती, क्योंकि आपने कथक की दुनिया में भी कदम रखा था और विशारद किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए।
1: मैं बहुत कुछ होना चाहती थी ममता, मैं यकीन नहीं करूंगी मैं मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहती
0: क्या
1: थी।
0: बात है
1: लेकिन पापा के एक थप्पड़ ने और डांट ने कहा नहीं वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय नैतिकताओं का जमाना था, लड़कियों को बहुत सुरक्षित रख के चलने का जमाना था। और मैं एक बहुत छोटे शहर राजस्थान के एक बहुत छोटे कस्बे से आती हूँ, चित्तौड़गढ़ से
0: जी,
1: तो जहां पे सोच पाना भी मुश्किल था कि आप मुंबई जाओगे और मॉडलिंग करोगे। उसके बाद फिर मेरे को डांस मेरा दूसरा पैशन था, तो कथक मैंने सीखा। तो आधा कथक मैंने शादी से पहले कॉलेज टाइम में सीखा और आधा शादी के बाद बच्चों को थोड़ा स्कूल भेज के दोबारा सीखा
0: जी, जी।
1: तो मैंने अपना विशारद पूरा किया
0: जी।
1: तो बहुत सारे ऐसे सपने थे, लेकिन अंततः मेरे हिस्से में एक डेस्क आई और पेन आया और कलम आई कि मुझे लिखना है। तो कथक की ये बातें कि मुझे संयोग से ग्वालियर में रायपुर घराने के एक टीचर मिल गए थे
0: जी,
1: तो मणिका जी थी, और तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया और मैंने अपना विशारद पूरा किया
0: जी। तो बात कथक की चली है तो यहां पर हम जानना चाहेंगे कि कथक में जब कोई इस तरह मतलब विशारद किया है तो बड़ी बात है, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्टेज परफॉर्म करूं और कोई बड़े आयोजन में भाग लूं हिस्सा लूं?
1: वही बात फिर आयावरी की आ जाती है ना कि जैसे ही ऐसा अवसर आया कि तीन साल मतलब मेरे को सीखते हुए छह साल हो गए तो ट्रांसफर का फरमान आ गया। और होता यह कि आप अपने गुरुजी के साथ ही आप सामूहिक कथक

0: एकल तो होता ही है और आरंभ में आपको सामूहिक प्रस्तुतियां देनी होती है, तो ट्रांसफर हो गया और हमारा जो समूह था उससे मेरी दूरी हो गई, तो वो कथक वहीं छूट गया। लेकिन मैंने छोटे बच्चों की क्लासेस ली और छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ कोरियोग्राफीज की।
1: क्या बात है।
0: हाँ, मुझे याद है कि मैं अपने जो मनिका मैम थी उनके यहाँ जाती थी, तो मैं कथक पे भी किताबें पढ़ना पसंद करती थी। वो कहती हम लड़कियों को कहते रहते हैं किताबें पढ़ो, जो कथक का इतिहास है, तुम ही एक हो जो ढेर ढेर सारी किताबें ले जाती हो। तो तब तक मैंने, जब तक विशारद किया, मैं ना बहुत सारा कथक का इतिहास, बहुत सारा विश्लेषण वो पढ़ चुकी थी। और अगर मैं कहूं कि उस इतिहास और विश्लेषण के चलते फिर मैंने बिरजू महाराज पे एक किताब लिखी, बिरजू लय।
1: जी जी।
0: तो मेरा सारा फिर वो रिव्यू समीक्षा और कलात्मक समीक्षा, कलात्मक वैचारिक की तरफ ध्यान चला गया
1: जी।
0: फिर मैंने प्रेरणा श्रीमाली जी का लंबा इंटरव्यू किया, बिरजू महाराज पे किताब लिखी, तो मेरा जो कथक करने का और मंच का जो शौक था
1: पूरा
0: वो लेखन की तरफ चला आया। और आज भी मैं अगर कला वैचारिकी पे कथक पे लिखूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
1: बिल्कुल। और ये जो आपने कहा ना कि मेरे हिस्से में लेखन आया, मेरे ख्याल से कि अगर ये ना आता तो हम सब लोग वंचित रहते। और आपने लेखन की दुनिया में अपना नाम दर्ज किया विशिष्ट तरीके से, और महिलाओं के लिए खासतौर से ये प्रेरणा की बात है। यहां पर हम एक गाना सुनना चाहेंगे, क्योंकि बात कथक की चली है और कोई गाना ना हो जिसमें नृत्य वाली बात ना हो तो फिर अधूरा सा लगे।
0: आम्रपाली फिल्म बहुत पसंद थी और मैं उसमें वैजयंती माला के डांसेस देखती रह जाती थी और मुझे जो बहुत पसंद था, और मैंने कॉलेज में इस गाने को एक प्रतियोगिता में किया भी था और प्रथम पुरस्कार मिला था मुझे, नील गगन की छाओ में दिल रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
1: क्या बात है। वैसे कथक सीखा है आपने तो निश्चित रूप से डांस के साथ थोड़ा थोड़ा तो गुनगुनाती होंगी, और हमने सुना है, अगर ये गुनगुना के आप सुनाए तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: ये तो बहुत ऐसा क्लासिकल गाना है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ।

0: मनीषा जी, आपकी कौन सी कृति आपके सबसे दिल के करीब है?
1: निश्चित तौर पे मल्लिका।
0: मल्लिका हाँ, हम जानते थे क्योंकि साहित्य की दुनिया में, अपने श्रोताओं को बता दें जो साहित्य में दखल नहीं रखते, कि मनीषा कुलश्रेष्ठ को इन दिनों साहित्य की मल्लिका कहा जाता है।
1: अरे
0: तो आप मल्लिका के बारे में बताइए, कहाँ से इंस्पायर हुए, क्योंकि ये एक

0: यथार्थवादी उपन्यास है।
1: बिल्कुल, हुआ ये कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में बहुत पहले मल्लिका पे एक आलेख आया था जिसे मैंने पढ़ा था। उसके बाद कथादेश पत्रिका आती है, उसमें मल्लिका पर एक अंक निकला था, मल्लिका और भारती हरिश्चंद्र जी पे। तो मैं बहुत उत्सुक हो गई थी कि मल्लिका पत्नी तो नहीं थी, अगर हम उनको कहें कि वो उनकी प्रेरणा थी, तो उनका भारतेंदु जी पे असर और मल्लिका पे जो जितने आलेख मैंने पढ़े, तो मुझे उसने बड़ा आकर्षित किया कि ये मल्लिका कैसी रही होंगी जिन्होंने भारतेंदु जी के लिए पहले अनुवाद किए बंगला से हिंदी में, और फिर हिंदी में खुद उपन्यास लिखे और कुछ पत्रिकाएं संपादित की, और लगातार भारतेंदु जी के साथ में वे बनी रही। तो उनका एक फोटो भी उसमें छपा करता था, बड़ी बड़ी आंखों वाली एक हल्की सी उदास स्त्री जो बाल विधवा रही थी। तो मुझे मल्लिका के इस चरित्र ने सालों सालों सालों हॉन्ट किया, मेरे अंदर रही और हमेशा मुझे कुरेदती रही। तो एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने बहुत सारी किताबें मंगाई, बहुत सारी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनकी जीवनियां, आत्मकथा तो वो नहीं लिख सके थे, जीवनियां जो थी वो मंगवाई मैंने, श्याम सुंदर दास जी की और ब्रजरतन दास जी की। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उन किताबों में ये हुई कि जहां मल्लिका का जिक्र था उन अध्यायों का नाम था चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा। तो ये बात मुझे आहत कर गई। तब मैंने मल्लिका का लिखा हुआ पढ़ा, जितने भी उनके आधे अधूरे कुछ पूरे उपन्यास हैं वो मैंने पढ़े, और जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि मल्लिका के अंदर एक कमाल का पोटेंशियल था लिखने का, और उनकी दृष्टि उस समय में स्वतंत्रता से पहले उस समय में इतनी सुलझी हुई और खुली हुई थी कि वो बहुत अच्छे से स्त्री अधिकारों पे लिख सकती थी। तब मैंने सोचा कि मैं मल्लिका के जीवन पे लिखूं, लेकिन सबसे मुश्किल ये थी कि मल्लिका का बचपन, मल्लिका के बनारस आने से पहले का जीवन किसी को कुछ नहीं मालूम था, वो सब मुझे कल्पनाओं से और थोड़े तथ्यों से बुनना पड़ा। मैंने कहीं पढ़ा कि वो बंकिम जी के ही कुल से कहीं दूर से संबंधित थी, तो मैंने उसमें बंकिम जी को भी एक पात्र के तौर पर रखा, और मल्लिका काफी करीब उनको बताया कि मल्लिका उनसे प्रेरणा लेती थी। और मजेदार ये बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बंकिम के उपन्यासों का मल्लिका की सहायता से अनुवाद भी। और एक और जो बात है, उपन्यास शब्द हिंदी साहित्य में प्रेमिका के जरिए आया उपन्यास, क्योंकि अपने यहां बंगला में नॉवल को उपन्यास कहते थे, बाकी गुजराती और मराठी में नवल कथा, हिंदी में आख्यान ही कहा जाता था। तो जब मल्लिका आई तो ये इस पूरी विधा का नाम अपने साथ लाई।
0: क्या बात है, ये जो सूक्ष्म बातें बताई हैं, लेखन के साथ जो लेखन की जो परतें होती हैं वो लेखक ही बता सकता है, पाठक उसे पढ़ता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो एक लेखक ही बता सकता है।
1: मल्लिका लिखने के दौरान ना मुझे बड़े अजीब अजीब अनुभव हुए, जैसे कि मैंने उसमें एक सीढ़ियां रची, क्योंकि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर कभी पहले नहीं देखा था, तो मैंने ऐसी सीढ़ियां रची जिनसे होके मल्लिका सीधे भारतेंदु जी के कमरे में जाती थी बिना उनकी पत्नी को पता चले, और भी लेखक उसी से जाते होंगे, मैंने ऐसी कल्पना की। और जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जब मल्लिका का वहां पर विमोचन हुआ और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो सीढ़ियां वहां थी।
0: गजब, क्या बात है।
1: तो ऐसे ऐसे अगर मैं कहूं कि इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: और वो उपन्यास खूब चर्चित भी हुआ, सराहा भी गया, निश्चित रूप से जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें पढ़ना चाहिए, तो जो आपकी बातें हैं उन बातों से तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे और एक खास बात पता चलेगी कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में उपन्यास के माध्यम से जानना एक अलग तरह का अनुभव होता है। आपकी अन्य कहानियों में भी मनीषा जी सूक्ष्म परिदृश्य होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं तो शब्दों के माध्यम से दृश्य देखते हुए चलते हैं, और स्त्री पुरुष संबंधों को भी बहुत गहराई से आपने छुआ है। आप अपने शब्दों में बताइए कि कौन सी वो कहानियां हैं जिनमें ये सूक्ष्म दृष्टांत हम देख सकते हैं।
1: सबसे पहले तो कठपुतलियां ही, जिसे मेरी प्रतिनिधि कहानी कहा जाता है
0: जी।
1: तो कैसे एक ग्रामीण लड़की की शादी एक कठपुतली वाले से हो जाती है, और वो अपने आप को महसूस करती है कि उसके तो धागे बांध दिए हैं, और उसके विवाह से पहले का एक प्रेमी होता है वो उसे मिलती है। ऐसी कहानी है जिसमें कोई विलन नहीं था, उसमें समय विलन है। तो वो लिखने में मुझे आनंद आया क्योंकि मैं मरुस्थल के उन दृश्यों से वाकिफ हूँ।

0: मैंने वो आंधियां देखी हैं, पीली आंधियां जिनमें घिर के मटके से पानी भर के लाने वाली स्त्रियां घिर जाती हैं और खो जाती हैं।
1: क्या बात
0: तो
1: है? राजस्थान में
0: राजस्थान तो मैं मरुस्थल रचना चाहती थी, मैं वो दृश्य रचना चाहती थी जो हिंदी के पाठक ने नहीं पढ़े थे, तो मैंने इसलिए भी कठपुतलियां लिखा। और खाप पंचायतों का दौर था तो वहां पर क्योंकि वो अनचाहा गर्भ है उसे सुगना को, तो उसके पर इल्जाम लगता है और उसकी हथेलियों पे गर्म ईंट रखने का एक दृश्य है, तो वो मैंने रचा, एक आंधी का दृश्य रचा। तो कठपुतलियां मेरी आरंभिक कहानियों में से है। तब मुझे पता चला कि कहानी में दृश्यात्मकता की कितनी आवश्यकता और कितना महत्व होता है, क्योंकि वो दृश्य आपको उनमें एक छोटी सी खिड़की खोलते हैं और कहानी में प्रवेश देते हैं। तो बतौर पाठक भी मुझे वो कहानियां पसंद आती हैं जिनमें सूक्ष्म दृश्यात्मकता हो, जैसे उसमें एक सांप है जो टेढ़ा चलने वाला सांप है जिसको साइड वाइंडर कहते हैं, तो वो सांप क्योंकि वो मरुस्थल में ही मिलता है वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है।
1: क्या बात है।
0: तो आप सूक्ष्म प्रकृति को भी वहां पे पात्र बनाएं और कोई भी दृश्य रचे, तो हमेशा कहा जाता है ना कहानी लिखिए नहीं दिखाइए, तो मैं इस बात में बहुत गहरा यकीन करती हूँ कि कहानी को दिखाया जाए।
1: क्या बात है। तो आपकी बातों को सुनते हुए हमें खुद लग रहा है कि मैं एक खुद पाठक बन गई हूं और आपकी कहानियों को याद कर रही हूं, वो दृश्य मेरे सामने चल रहे हैं कि सचमुच लिखते समय ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। जो हमारे लेखन की दुनिया में साहित्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक मास्टरपीस है ये बातें, और पाठशाला की तरह ये, और रेडियो सुन सुन के तो बहुत कुछ सीखा जाता है। तो आपकी ये बातें सुनकर हमें लगता है साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने वाले लोग सीखेंगे। यहां अब हम आपके इस पर आते हैं, शाल भंजिका। तो शाल भंजिका के बारे में भी बताइए कि कैसे आपके मन में विचार आया, कहां से प्रेरणा मिली आपको लिखने की।
0: शाल भंजिका की प्रेरणा, क्योंकि शाल भंजिका तो एक प्रेम कथा है, तो कोई इसके लिए एक खास किस्म की ऐसे प्रेरणा या इस किताब ने मुझे लंबा अपने भीतर रखा और उसके बाद मैंने रचा, ऐसी बात इसके साथ नहीं थी। इसको मैं सीधे ही लिखती चली गई क्योंकि मेरे पास
1: मुश्किल होता है प्रेम कहानी लिखना।
0: जब रविन्द्र कालिया जी का फोन आया था कि मुझे तुम्हारा एक लघु उपन्यास चाहिए जो मुझे ज्ञानोदय में छापना है पूरा का पूरा, तो उस दबाव के तहत तब मैं देखती थी कि फिल्म मेकर्स, तब नए नए फिल्म मेकर्स आए थे और उनकी हिंदी फिल्म में ही और विदेशी फिल्मों में भी वो अलग तरह से स्त्रियों को अपनी कहानियों में ला रहे थे। तो मैंने एक फिल्म मेकर और उसकी पूर्व प्रेमिका जिसको वो रचना चाहता है, वो अपनी फिल्म में लाना चाहता है, उसके लिए वो जीवन भर भटकता है ढूंढता है वैसी ही कोई पात्र, तो मुझे लगा कि ये जो तलाश है इसको मैं लिखूं। और ये अनायास ही ऐसे ही लिखी गई छोटी सी किताब है और सब इसको पढ़ते हैं तो पूछते हैं शाल भंजिका नाम क्यों, क्योंकि शाल भंजिकाएं वो होती हैं जो एक डाल को पकड़ के खड़ी होती हैं, बौद्ध काल की मूर्तियों को कहा जाता है जो उर्वरता का प्रतीक है। इसमें जो मेरी नायिका पद्मा है हमेशा एक पेड़ की डाल पकड़ के फोटो खिंचाती है।
1: अच्छा।
0: तो वो जो फिल्म मेकर है वो हमेशा कहते हैं तो हमेशा फोटो खिंचाते हुए शाल भंजिका क्यों बन जाती हो। तो एक सिंबॉलिक तरीके से इसका शीर्षक आया है
1: जी। और कितनी सारी परतें खुल रही हैं आपके आपके लेखन की, क्योंकि पढ़ते समय ये बातें हमारे जहन में नहीं आती हैं। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती।
1: क्या बात है। हम सबका पसंदीदा गाना फिल्म तुम्हारे लिए, लता दीदी की आवाज, सुनते हैं यही गाना।

0: मनीषा जी, एक साहित्य के अलावा आप में जो गुण हमें दिखाई देता है बतौर एक पाठक और सोशल मीडिया के जरिए भी हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आपके भीतर एक यायावरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है, मुझे लगता है सच होगी। और आप विदेशों की यात्रा बहुत की है, वहां से भी कुछ उपन्यास आपने जहन में लाया है। त्रिमाया और किनाया की हम बात करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल ममता, मेरी देश में जो एक खास किस्म की यायावरी रही, तो हुआ ये कि मेरे लास्ट जो तीन पोस्टिंग्स थी संयोग से ऐसी हुई कि मुझे मात्र सत्तात्मक समाजों का पता चला।
0: अच्छा।
1: जल्दापारा हमारी पोस्टिंग थी, वहां पे हाथियों की मात्र सत्ताएं थी और मैंने हाथियों के रेस्क्यू सेंटर और हाथियों के झुंड के जरिए वहां जाकर पहली बार जाना कि इनके झुंड का मुखिया हाथी नहीं, हथिनी होती है। और बड़ी सूझबूझ से वो हथिनियां अपना परिवार बड़ा बड़ा 50-50, 60-60 हाथियों का लेकर चलती हैं। वो पोस्टिंग हुई। उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई शिलांग। शिलांग में खासी समाज था जहां पे मातृवंशी प्रणालियां होती हैं, वहां स्त्री मुखिया होती है और स्त्री की जितनी जायदाद है उस सबसे छोटी बेटी को मिलती है।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद हमारी तीसरी पोस्टिंग हुई त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में वहां नायर समाज था जहां पे लंबे समय तक मातृवंशी प्रणाली चली थी समाज की। तो मुझे लगा कि ये चीज कुछ मुझे कह रही है कि मैं मात्र सत्तात्मक समाजों और मातृवंशी समाजों के बारे में पढ़ूं और जानूं और लिखूं। तो मैंने हाथियों से शुरू किया पढ़ना और मैंने देखा कि हमारी मातृवंशी प्रणालियों को तो बहुत चुनौतियां हैं।
0: जी जी।
1: जैसे नायर जो मातृवंशी प्रणाली थी उसे तो समाप्त कर दिया गया था पुरुषों के इंटरवेंशन से, क्योंकि उनको शर्म आती थी कि उनके पिता कौन है उन्हें नहीं पता।
0: बिल्कुल।
1: तो जब वो ब्रिटिश राज्य आया और बरतानवी नैतिकता जो जिसे हम विक्टोरियन नैतिकता कहते हैं वो आई, तो नायर समाज ने अपने आप को बदलने का ठाना और रानी सेतुलक्ष्मी के हस्ताक्षर से मातृसत्ता समाप्त कर दी गई।
0: जी जी।
1: तो यही खासी समाज भी एक आजकल झेल रहा है कि इनकी जो मातृवंशी प्रणाली है इसको समाप्त करने की बार बार आंदोलन होते हैं। लेकिन हाथियों में सदियों सदियों सदियों से अभी तक कुल माताएं हैं, उनको कोई नर हाथी आके चुनौती नहीं देते कि तुम अपना ये कुल खत्म कर दो।
0: जी।
1: तो इसके बरक्स मैंने मनुष्यों और हाथियों के व्यवहार को और मात्र सत्तात्मक समाजों के अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को त्रिमाया उपन्यास में लिखा। तो एक तो यायावरी मुझे यहां काम आई।
0: और यहां पर हम आपको रोक रहे हैं, मुझे बताइए कि त्रिमाया जो हाथियों की ये जो बातें आप बता रही इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें, तो ये आपको कहां से पता चली, किस तरह का रिसर्च किया आपने और कहां से?

0: दूसरी बात कि ये कितना चुनौतीपूर्ण था ये?
1: बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले तो शौकिया मैंने रिसर्च किया क्योंकि मैं जल्दापारा में थी, वहां रेस्क्यू सेंटर था हाथियों का। तो वहां पे एक लैला नाम की हथिनी थी और ढेर सारे अनाथ हाथियों के बच्चे थे। उन सबको लैला ने बड़ा किया और लैला ने अपना एक झुंड बना लिया और वो जंगल में विचरने लगी। और कई बार रेस्क्यू सेंटर आती थी और जंगल में चली जाती थी, उसका अपना झुंड था। तब मैंने जानना शुरू किया, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े हाथियों के कॉरिडोर्स के बारे में। मैंने रिसर्च किया कि कैसे हम मनुष्यों ने हाथियों के कॉरिडोर चाय बागानों में और खेतों में बदल डाले हैं और वो आज भी वहीं से गुजरना चाहते हैं क्योंकि वो सदियों से उनकी जो स्मृति में संचित है। तो वो बड़ा संघर्ष है जिसको हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको भी मैं इस किताब में लाई हूं। तो रिसर्च की, लेकिन ये बड़ी आनंदी रिसर्च थी और लिखते समय बड़ा आनंद आया क्योंकि मुझे अपने अंदर एक हाथी को उतारना पड़ा, मुझे महसूस करना पड़ा मेरे एक सूंड है।
0: जी जी जी,
1: जो प्रेम में कैसे काम आती है, भूख में कैसे काम आती है,
0: क्या बात है।
1: तो मुझे हाथी वाला चैप्टर लिखने में, जो माया है, माया द एलिफेंट, उसको लिखने में सबसे ज्यादा आनंद आया। हालांकि माया मार्गरेटा और माया को लिखने में भी आनंद आया, लेकिन ये सबसे तो पूरा रिसर्च बेस्ड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोधात्मक उपन्यास लिखते हैं, उसको बर्फ के नीचे जैसे झील होती है ना, तो वो जो झील का पानी है वो शोध हो, ऊपर बर्फ रहे, तो ऊपर रचनात्मकता रहे, कहानी रहे, शोध अंदर से झांकता रहे।
0: क्या बात है।
1: तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोध, मेरे ज्यादातर उपन्यास शोध परक है, स्वप्नपाश भी, मल्लिका भी और पंचकन्या भी और अब त्रिमाया, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि शोध कहानी पे हावी ना हो।
0: बिल्कुल, तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं और जो मर्म है वो बचा रहे, और ये तो बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। और आपने बताया भी कि सूंड के जरिए प्रेम करना, कैसे ये कल्पना भी करना कितना मुश्किल होता है कि आप उस हाथी के भीतर उसके मन में घुस के
1: परकाया प्रवेश।
0: और शोध परक मुझे लगता है एक और उपन्यास है आपका, जो यायावरी पर ही किनाया
1: जी,
0: और विदेशों की यात्रा के दौरान, उसमें तो बहुत सारे राइटर्स भी हैं जो
1: नहीं, वो घुमक्कड़ी वो अलग है, वो घुमक्कड़ी अंग्रेजी साहित्य के गलियारों से वो तो यात्रा वृत्तांत थी है। लेकिन किनाया में तुर्की गई थी, तो तुर्की की यात्रा के दौरान मैंने ये महसूस किया कि वहां पर जितनी आजादी है उतना ही अपनी परंपराओं से एक जुड़ाव है, खास किस्म का स्त्रियों का। तो मैंने वहां स्त्रियों को बहुत उन्मुक्त भी देखा और उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े हुए भी देखा। दरअसल मैं गई थी अपनी बहन के साथ जो कि एक पर्यावरणविद है, वो सॉल्ट लेक पे काम करती है, वो सॉल्ट लेक सोसाइटी की एनुअल मीट थी। तो मेरी दीदी मुझे एक अपने साथी की तरह ले गई थी। तो वहां पे सारे साइंटिस्ट थे जो पर्यावरण की चिंता करते थे और सुबह वो बोलते थे कि एक दिन पानी सिर्फ आंख में रह जाएगा, और शाम को जम के डांस करते थे, मस्ती करते थे। तो मैं यही कहती थी, आप लोग सुबह तो इतना डरा देते हो और शाम को आप लोग पार्टी करते हो। तो उनमें से किसी ने मुझे पूछा कि तुम्हें हम में से कोई नायक नायिका मिला क्या, क्या तुम कुछ लिखोगी क्या? तो मैंने कहा आप सब तो मिडिल एज्ड हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, मिडिल एज्ड रोमांस नहीं करते? तो इस कथा में, क्योंकि मैं तुर्की की जो यात्रा थी,
0: हिस्सा आपकी किताब में भी है
1: बिल्कुल, तो मैं इस तुर्की की यात्रा थी, मैं इसको केवल यात्रा वृत्तांत में नहीं ढालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मध्य वयस्य स्त्री पुरुषों के बीच के प्रेम की जो एक गहनता है, एक अनुभव है, और वो जो मनोविज्ञान है, उसको मैं इस उपन्यास में यात्रा के साथ लेके आऊं। तो इसमें समूचे आपको तुर्की घूमने को भी मिलेगा और दो मध्य वयसीय, एक जो इतिहासकार है और एक पर्यावरणवादी स्त्री है, दोनों के बीच का प्रेम, एक परिपक्व प्रेम जिसको हम सच में जैसे मैच्योर प्रेम कहते हैं, वो इसमें मिलेगा।
0: उस प्रेम से मतलब वो देह से आगे है, वो प्रेम हमें लगता है
1: देह है उसमें, लेकिन देह से आगे वहां पर उस तरह की खींचतान नहीं है जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेम में हम बहुत खींचते हैं एक दूसरे को और अधिकार जमाते हैं, वहां वो अधिकार वाली भावनाएं नहीं है। एक दूसरे को उन्मुक्त छोड़ के, एक दूसरे के ऊपर बिना बोझ बने जो वो प्रेम है वो उसकी है कि तुम दोनों आजाद भी हैं, हमारी वो आजादी भी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये प्रेम से ज्यादा मित्रता और साथ और एक उन्मुक्तता की बात भी है।
0: बहुत बढ़िया लग रही है बातें आपकी, और ऐसे लग रहा है कि वो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये प्रेरक बातें हैं। किनाया हमारी भी अधूरी छूट गई है, तो इसलिए मुझे अब लग रहा है कि अब किसी तरह से ये किताब लेकर कहीं से पढ़ूंगी। और पर्यावरण की बात आप

0: कर रही थी मनीषा जी, और ये जो त्रिमाया है, हाथियों का पूरा समूह है, तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाती हैं, उसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल ममता, सबसे पहले तो मेरा पूरा परिवार बायोलॉजिस्टों का परिवार है, उनमें से मेरी बेटी तक चला आया है वो पूरा जीनोटाइप। मेरे ताऊजी बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, उन पूरी कॉन्फ्रेंसेस में पूरे विश्व भर में जाते थे। मेरी बहन जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके साथ मैं सॉल्ट लेक सोसाइटी में गई, मेरी बेटी, मेरे भाई हैं वो असद रहमानी जी के साथ काम करते हैं और वो पक्षी वैज्ञानिक हैं,
0: तो जो रेडियो से बहुत प्रेम करते हैं,
1: रेडियो से जो आपकी आवाज से ममता प्रेम करते हैं।
0: शुक्रिया
1: मनोज कुलश्रेष्ठ उनका नाम है, तो
0: सखी
1: सहेली उनका प्रिय कार्यक्रम है।
0: जी जी।
1: तो उन सबके सानिध्य में मैं रही बचपन से, पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम रही घर में, कोई ना कोई, कभी जयपुर में मेरे भाई का काम चल रहा होता था, कभी मेरी बहन सांभर लेक के पक्षियों पे काम कर रही होती थी, तो ये सारा माहौल घर में रहा। तो इस मुहिम को एक अपरोक्ष तौर पे मैं चलाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जमीनी काम तो नहीं कर पाती हूँ कि मैंने जमीनी काम किए हों और मैंने कहीं जमीन पे कोई आंदोलन किए हों, लेकिन मेरे लेखन में और लगातार जब मैं लिखती हूँ पर्यावरण पे, तो उसके बहाने मेरा एक काम चलता रहता है और सोशल मीडिया पे भी मेरी उपस्थिति रहती है। और कभी भी इस तरह जयपुर में अगर कोई जंगल कट रहा है तो मैं वहां जरूर जाके खड़ी होती हूँ, और मेरे लेखन में ये बड़ी शिद्दत से आता है। तो किनाया में भी आया है कि कैसे सॉल्ट लेक सिमट रहे हैं।
0: बात इसकी विदेशी जो लिखी आपने तुर्की के बारे में, तो वहां कुछ साहित्यकारों को आपने देखा, जैसे मैंने आपकी किताब में पढ़ा था घुमक्कड़ी, तो उसमें शेक्सपियर का नाम है, वर्ड्सवर्थ का,
1: तो वो एक अलग मुहिम थी। हुआ ये कि तीन बार मुझे इंग्लैंड जाना हुआ, एक बार अवार्ड फंक्शन था, उसके अलावा भी दो बार मुझे और जाना पड़ा इंग्लैंड। तो हुआ ये कि पहली बार में मैं फ्रॉयड के घर गई, कीट्स के घर गई, तो मुझे लगा कि मैं पूरा यूनाइटेड किंगडम घूम के, उसमें आयरलैंड जो इंग्लैंड का हिस्सा है वो वाला हिस्सा भी घूम के, इस पूरे देश के लेखकों को जिनको हम सब बहुत क्लासिक की तरह पढ़ते आए हैं, उसमें वर्ड्सवर्थ भी है, तो जेम्स जॉयस भी है, तो इन सबको पढ़ा जाए, मतलब इन सबके घरों में जाया जाए। और मजेदार बात यह कि उन सबके घरों को बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम्स में बदला हुआ है और उनको ट्रस्ट चला रही है, और वो जो पूरे शहर है, जैसे अगर मैं बात कहूं तो जेन ऑस्टन का म्यूजियम है वहां पे, बिल्कुल माहौल बनाया जाता है कि आप जाएंगे तो मिस्टर डार्सी आपको मिलेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के, वो वस्त्र पहने हुए,
0: अच्छा,
1: और जेन ऑस्टन के चीजें मिलेंगी। तो जब एक यात्रा में ऐसा हो गया तो फिर तो मुझे जुनून आ गया। मैंने कहा अब मैं स्कॉटलैंड भी जाऊंगी और मैं नदर्न आयरलैंड भी जाऊंगी और हो सका तो डबलिन भी जाऊंगी। तो मैंने ऐसे करके पूरी यात्रा की तीन बार में, और मैंने सारे जितने भी इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम के लेखक थे उन सबके, जितने संभव हो सकते थे थॉमस हार्डी तक, सबके घर जा जाके वहां उस माहौल को महसूस किया और उस पे किताब लिखी घुमक्कड़ी साहित्य के गलियारों से।
0: क्या बात है। तो लिखने के मकसद से आप गई थी या घूमने गई थी?
1: पहली बार तो मैं घूमने गई थी, और संयोग से मैं, जैसे अब मैं कोलकाता भी जाती हूँ तो मैं ठाकुरबाड़ी जरूर जाती हूँ, तो ऐसे ही मैं गई थी। तो मैंने कहा कीट्स हाउस तो जाएंगे, कीट्स को इतना पढ़ा है हमने, तो कीट्स के घर गए, तो मुझे लगा कि यार ये जुनून है, इस जुनून को तो पूरा किया जाए, फिर वो जुनून बन गया। शुरुआत में तो मैं ऐसे घूमने ही गई थी।
0: तो लिखने को इतना तवज्जो देती हैं, इसलिए आपका लेखन संसार इतना विराट है। आप मनीषा जी अपने श्रोताओं को बता दें कि राजस्थान की रहने वाली हैं, जहां पर लोक संस्कृति लोक कला बेशुमार है, आपके लेखन में क्या आप इस्तेमाल करती हैं आप अपने लेखन में?
1: बिल्कुल, शुरुआत में तो मेरी जितनी अगर कहें कि सारी जो कहानियां जिनको लोग याद करते हैं, कठपुतलियां, कुर्जा, स्वांग, ठगिनी, सब में राजस्थान आया है। किरदार कहानी है जिसमें जयपुर के अंदरूनी इलाके आए हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं राजस्थान के माहौल को एक अलग ढंग से, सब अलग अलग तरीके से अपने जमीन को याद करते हैं, सब अलग अलग ढंग से उसके दृश्य गढ़ते हैं, तो मैंने अपने ढंग से अपने राजस्थान को अपनी कहानियों में रखा है।
0: क्या बात है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: राजस्थान को याद करते हुए सुनाएंगे या कोई और?
1: हाँ, तो राजस्थान को याद करते हुए वो जो सात
0: हिंदुस्तानी,
1: हाँ बिल्कुल, पीतल की मोरी गागरी। चलो
0: तो चलते हैं राजस्थान की ओर और सुनते हैं यही गाना।

0: इस गाने के बाद मनीषा जी कुछ कहानियों का जिक्र छूट गया है, तो वो कौन सी कहानियां हैं जो आपकी बहुत पसंदीदा कहानियां हैं? वैसे मुझे लगता है 60-70 कहानियां होंगी,
1: ज्यादा ही है ममता, 100 से ज्यादा कहानियां लिख ली है।
0: तो कुछ पसंदीदा कहानियों का जिक्र कीजिए आप।
1: मेरा अभी अभी एक कहानी संग्रह आया वन्या, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले और बहुत उसको प्रशंसा मिली, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट को हम भूल जाते हैं।
0: जी जी,
1: हम जब आदिवासी समाजों की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कहानियां हैं उसमें हैं। तो चाय बागानों में मैं बहुत रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरा रहना हुआ, तो वहां से जो चुन के मैं कहानियां लाई थी, तो वन्या में वो कहानियां हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं।
0: और दो चार कहानियों का जिक्र कीजिए जो आपके दिल के करीब।
1: जैसे उसमें वन्या में एक कहानी है नीला घर, वो मेरे दिल के करीब है, और एक कहानी है नर्सरी, वो एक गेंद कहानी कह रही है कि गेंद है तो कैसे बच्चों की नर्सरी से निकल के चाय बागान में घूमती है, और उससे पूरा का पूरा चाय बागानों का आपको जो एक सामाजिक ढांचा है वो समझ में आ जाता है, आर्थिक ढांचा भी।
0: जी, और अपने श्रोताओं को बता दें कि तकरीबन 100 कहानियां हैं, मनीषा जी के 7 उपन्यास हो चुके हैं, यात्रा वृत्तांत, कथक पर कुछ किताबें, ये सब अनगिनत है। तो एक हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक इतने विशाल विराट साहित्यकार से हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बचपन के संसार में ले चलते हैं। बचपन में कैसी थी, पढ़ाई के दिनों में शरारती या फिर सीधी सादी, क्या वहीं से बीज पड़ गया था?
1: बहुत शरारती, मुझे लगता है कि हर वो बच्चा कहानीकार जरूर बनता है जिसे बहाने बनाने आते हैं। तो मैंने बहुत कहानियां सुनाई हैं अपनी मम्मी को होमवर्क नहीं करने की, और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी कि मैंने ना पढ़ाई में बहुत झंडे गाड़े हों।
0: अच्छा,
1: क्योंकि विज्ञान वैसे भी एक कठिन विषय होता है, तो लेकिन हिंदी में मुझे गोल्ड मेडल मिला
0: जी।
1: तो मैं शैतान बच्ची थी लेकिन बहुत जिज्ञासु थी, और साहित्य से मेरा प्रेम था, और बचपन से मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था।
0: जी, मनीषा जी विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें हो रही है कि हमें लग रहा है कि अभी और आपसे गुफ्तगू की जाए। मुझे लगता है जो लोग लिखना चाहते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिला। तो लेकिन अब बातचीत को विराम देना पड़ेगा, फिर कभी एक लंबी बातचीत करेंगे आपसे। इस वादे के साथ आज यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी बातचीत को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले

आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 11 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

मेरा सब कुछ तुम अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

0: हेलो
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्मी संगीत।

फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी 2 से। गीत को आवाज दी थी तुलसी कुमार और केके ने। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आयशा से। गीत को अपनी आवाज दी है तोशी रैना ने।

फिल्म संगीत की प्रस्तुति आप सुन रहे थे फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आतिफ असलम की आवाज और अलीशा ने दिया था उनके साथ। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवा रहे हैं बॉडीगार्ड से। गीत को अपनी आवाज दी है राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल ने।

फिल्म संगीत की प्रस्तुति आप सुन रहे थे फिल्म बॉस से। गीत को गाया था अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने। फिल्म संगीत की आखिरी प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रही है फिल्म एक्शन रिप्ले से। श्रेया घोषाल की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत निर्देशन।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
2: सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन के 6 स्तंभों के बारे में जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 विल बिल्ड द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवर 6 पिलर्स। पिलर नंबर 1 इज डिजाइन, द पिलर नंबर 2 इज मशीन्स एंड मटेरियल्स, पिलर 3 विल बी मोर डिस्प्ले मेमोरी सिलिकॉन कंपाउंड एंड लॉजिक फैब्स, पिलर 4 विल बी मोर एडवांस्ड पैकेजिंग यूनिट्स, पिलर 5 विल बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द पिलर 6 इज अबाउट टैलेंट।
2: 3 दिन का ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक, इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एस सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: मन्ना डे की आवाज में आनंद फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। योगेश ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आज है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसलिए हमने कुछ ऐसे गीत यादों की महफिल कार्यक्रम में चुने हैं जिन फिल्मों में डॉक्टर्स हमें नजर आते हैं। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म से गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: मुकेश की आवाज में डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, इसलिए कुछ ऐसी फिल्मों के गीत हमने चुने हैं जिनमें डॉक्टर और मरीज नजर आते हैं।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे सफर फिल्म के इस गीत में। इंदिवर ने से लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गुलशन बावरा के बोल आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में परिवार फिल्म के इस गीत में संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, परिवार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर।

0: बेमिसाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आज है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसलिए हमने कुछ ऐसी फिल्मों के गीत लिए हैं जिनमें डॉक्टर्स नजर आते हैं।

आ गले लग जा। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। साहिल उदयनवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में खामोशी फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर,

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है तो ऐसी फिल्मों से गीत लाए हैं जिनमें डॉक्टर्स नजर आते हैं।

मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शान की आवाज में अब्बास टायरवाला ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिन फिल्मों में डॉक्टर के रूप में नजर आते हैं कलाकार। कबीर सिंह फिल्म का ये गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, सचेत परम्परा का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट या इबारत पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर और उस पर ही छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे। और आज की इबारत और टेक्स्ट जो है वो हम आपको बता देते हैं। इस दुनिया में हम

अकेले ही आते हैं, लेकिन आते ही हमें मिल जाता है पूरा परिवार। फिर भी कभी हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें, तो कभी चाहते हैं यार दोस्तों का साथ। यारों की तो बात निराली है, उनके साथ हर गम की शाम भी बन जाती दिवाली है। लेकिन हम सफर के आते ही हम भूल जाते हैं सारा जहान। दोस्त यार भी देते हैं लानत और करते हैं प्यार से तौबा, लेकिन किसी अजनबी हसीना से मुलाकात होते ही वो भी हो जाते हैं प्यार के शिकार। तो आपका इस बारे में क्या है विचार? क्या आप हैं यारों के यार, या आप भी हैं प्यार के शिकार? ये हमारी आज की इबारत है, और इसमें से बहुत से शब्द हमारे साथियों ने चुन भी लिए हैं, गीत भी हमें बता दिए हैं। तो कौन कौन से गीत आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट में से मैच होने वाले हैं, ये तो आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे ही। साथ ही आज यारों दोस्तों की बातें होंगी, हम सफर जीवन साथी की बातें भी होंगी, और क्या दोस्तों ने कभी आपको ताने उल्हाने दिए हैं, और दिए हैं तो क्यों दिए हैं, ये आप हमें बताइएगा। और ये भी बताइए कि दोस्तों के दोस्त आप हैं, या हैं आप सिर्फ अपने ही दोस्त? और स्कूल के दोस्तों से संपर्क है, कॉलेज के दोस्तों से संपर्क है, या हर बार आप नए दोस्त बनाते चलते हैं? तो ये सारी बातें करते हुए चलेंगे आज के इस कार्यक्रम में आगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि दुनिया में इंसान अकेला आता है, लेकिन परिवार, यार और दोस्त उसके जीवन को रिश्तों और अपनेपन से भर देते हैं। दोस्ती में गम भी हल्का हो जाता है और हर पल खुशनुमा बन जाता है। वहीं हमसफर की मुलाकात जीवन में प्यार और मोहब्बत के नए रंग भर देती है। अजनबी से हुई एक मुलाकात कब दिल को प्यार का शिकार बना दे, पता ही नहीं चलता। यही दोस्ती, यारी, मुलाकात और मोहब्बत के खूबसूरत एहसास आज के इस कार्यक्रम में भावनाओं से भर देंगे। और हमारे साथी कह रहे हैं, प्यार और यार बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं अपितु मार्मिक, सहज और सरल विषय है जिससे सभी अनुस्यूत हैं, लेकिन समुचित निर्णय तक पहुंचते पहुंचते रह जा रहे हैं, क्योंकि प्यार जहां प्रकृति और पुरुष के बीच अनुस्यूत होते हुए भी अपने सृजनशीलता में सच्चिदानंद युक्त है, वहीं यार अपने यारानेपन से इस योजना को चरितार्थ करते रहने की भावना है। तो अक्सर लोग सृजन को समझ नहीं पाते और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप सृजनता को ही अपना मानकर मोहपाश में बनते हैं, फिर वो विनाश के प्रति अग्रसर होते हैं। तभी तो कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, प्यार में आकर्षण तो है किंतु आकर्षण यार के रूप लावण्य पर स्वयं के निछावर कर त्याग और समर्पण की मिसाल बनने में ही निहित है, फिर ये परिस्थिति किसी प्रेयसी के प्रति हो या मित्रता के प्रति, ऐसा इन्होंने कहा है। तो चलिए कार्यक्रम में और बातें पढ़ें और कमेंट्स आपके पढ़ें, उससे पहले कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और क्या ये गीत आपके लिस्ट में शामिल है।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आपने सुना और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बता रहे हैं अलग अलग बातें। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज की भारत रिश्तों के बदलते रंगों की कहानी है। इंसान परिवार के बीच पलता है, दोस्तों की महफिल में खुशियां बांटता है और जब प्यार दस्तक देता है तो वही दिल किसी खास हमसफर का हो जाता है। दोस्ती में बेफिक्री है, प्यार में अपनापन और परिवार में सुरक्षा। जिंदगी की खूबसूरती इन्हीं रिश्तों के सुरों से मिलकर बनती है। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि इंसान बुनियादी तौर पर यारों का यार भी बना रहता है और वक्त आने पर खुशी खुशी प्यार का शिकार भी हो जाता है। जिंदगी का असली मजा यही है कि यार महफिल को जिंदा रखें और हम सफर खामोशियों को भी हसीन बना दे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अकेले आना हमारी मजबूरी है पर अकेले रह ना पाना हमारी खूबसूरती है। परिवार हमें पहचान देता है तो यार हमें उस पहचान पर हंसना सिखाते हैं। उनके साथ चाय की प्याली भी महफिल बन जाती है और गम की शाम भी दिवाली। और वो अजनबी हसीना वाला जादू भी कुछ अलग से नहीं होता। दिल अगर जिंदा है तो किसी न किसी का शिकार तो होता ही है। इसलिए मेरा विचार है कि मैं यारों का यार रहकर ही प्यार का सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि यारी हमें इंसान बनाती है और प्यार हमें किसी एक पर स्वयं को समर्पित रहना सिखाता है। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी। और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको, जैसे इस गीत में कहा गया था कि बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं, तो आपको किस तरह से दोस्त मिले? क्या काफी मुश्किलें हुई या बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं दोस्ती? ये तो हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उसमें संगीत किसका है? फिल्म का नाम भी बता सकते हैं।

0: बात एक रात की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सवाल का सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि दोस्ती वो रिश्ता है जहां बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे का होना ही दिल को सुकून दे जाता है। और जब दोस्ती में प्यार की मिठास घुल जाए तो रिश्ता और भी अपना सा लगने लगता है। कुछ रिश्ते नाम से नहीं दिल से बनते हैं और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने कही, दोस्ती का रिश्ता कुछ इसी तरह का होता है। हमारी एक साथी और हैं, वो कह रही हैं, दुनिया में हम अकेले आते हैं, परिवार मिलता है, फिर नाते रिश्तेदार मिलते हैं, दोस्ती यारी बनती है, मिलने वाले कुछ अजनबी हमारे सबसे करीबी और परिवार जैसे बन जाते हैं। सच्चा दोस्त सुख दुख में साथ निभाता है और जीवन को खुशियों से भर देता है। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए हम सफर बन जाते हैं तो कुछ प्रेम और स्मृतियों के रूप में हमेशा दिल में रहते हैं। बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि दोस्ती के बारे में कह रहे हैं कि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो तन्हाई और महफिल के बीच ताउम्र झूलता रहता है। जन्म के साथ जो परिवार मिलता है वो बुनियाद बनता है, लेकिन इंसान की असली पहचान और आजादी उसके दोस्तों के बीच खुलकर सामने आती है। दोस्त वाकई हर गम की शाम को दिवाली बनाने का हुनर रखते हैं। वहां औपचारिकताएं नहीं, बेतकल्लुफी और सच्चा सहारा होता है। लेकिन दोस्त अगर आपको छेड़ने पर आ जाए या उलाहने देने लगे तो कुछ अलग ही हाल होता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें बताइए, क्या कभी आपको दोस्तों से ऐसे ताने उलाहने मिले हैं? कौन सी फिल्म का गीत है ये भी बताइएगा।
1: फिरते थे जो बड़े ही सिकंदर बने हुए, बैठे हैं उनके दर पे कबूतर बने हुए। जिस प्यार में ये हाल हो, जिस प्यार में ये हाल हो,

0: तौबा।
1: फिर सुबह होगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज में। और इस तरह के ताने उलाने क्या आपको आपके दोस्त देते हैं, कभी मिला है ऐसा ताना हमें भी बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मानव जीवन की यात्रा एक कोरे कागज की तरह शुरू होती है, हर इंसान इस दुनिया में अकेले आता है, नितांत निश्चल और शांत जन्म लेते ही परिवार मिलता है, जहां निस्वार्थ और सुरक्षात्मक प्रेम मिलता है। वो प्रेम की ऐसी बुनियाद है जो इस विश्वास को परिभाषित करती है कि इस अजनबी दुनिया में हम अकेले नहीं है। वक्त आगे बढ़ता है, बचपन से युवावस्था में कदम रखते ही यारी दोस्ती से जुड़कर प्रेम की पहचान होती है, फिर आजादी का दौर अल्हड़पन रहता है। यहाँ जिंदगी के सफर में कभी कभी हम अकेलेपन की जरूरत भी होती है, ये कोई सजा नहीं बल्कि स्वयं से प्रेम को समझने के लिए आवश्यक है। और जब हम थोड़े थोड़े परिपक्व होते हैं तो जिंदगी में हम सफर का आना, प्रेम और जिंदगी को नए रिश्तों से जोड़ना एक ऐसी भावना को जागृत कर देता है जिससे जिंदगी करीब करीब मुकम्मल हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वास्तविकता तो यही है कि आदमी दुनिया में अकेला आता है और रिश्तों में रहता है, फिर सच्चाई समझ लेता है, उसके बाद देखा है अकेले में जो सुकून है या यारों के साथ जो सुकून है कुछ भी ऐसा ही, और अंत में अकेला चला जाता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी है वो कह रहे हैं कि ना हम किसी प्यार के शिकार है ना किसी राह में लाचार है, हम तो बस दिलदार तरानों और खूबसूरत नगमों के यार हैं। जिंदगी के हर मोड़ को मुस्कुराहट से जीना और गीतों की महफिल से खुशियां बांटना ही अपना अंदाज है, शिकारी हो या शिकार हम तो बस दोस्ती और मोहब्बत के इस हसीन सफर के हमराही हैं। क्या कहने आपकी बात के। हमारे एक और साथी हैं वो कहते हैं कि आज जीवन के सफर में रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, हर मोड़ पर बदलते हैं। इस इबारत में भी बदलते रिश्तों की ओर इशारा है, शुरू में परिवार से जुड़ते हैं, फिर यार दोस्त हमारे साथी बन जाते हैं, फिर कभी कभी हमारा मन अकेले रहने की जिद करता है, कोई हसीना अचानक हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देती है और हम रिश्तेदार दोस्त सबको भूल कर उस हसीना के दीवाने हो जाते हैं, दुनियादारी तक भूल जाते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। हमारे और एक साथी कह रहे हैं कि बात ऐसी है कि दोस्त अपनी जगह होती है दोस्ती, और प्यार अपनी जगह होता है, और परिवार एक तरफ होता है, लेकिन आज के दौर में अपने प्यार को ज्यादा अहमियत देते हैं, ऐसा इनका कहना है। वही हमारे कवर साथी का कहना है क्या, ये हम बताते हैं आपको। हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत है सच्चाई परिवार, सबसे बड़ी दौलत और सच्चाई है परिवार, एक खुशहाल जीवन, और इस जीवन में कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सब रिश्ते अपनी अहमियत रखते हैं, अकेले आने के बाद हर रिश्ता हमारे जीवन में अपने आप ही बनने लगता है। बात महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और विश्वास से निभाया जाए, न कि झूठ धोखा लालच बेईमानी से निभाते जाए, क्योंकि इसका परिणाम ही जिंदगी में जहर घोलने लगता है और जिंदगी को नरक कर देता है, ऐसा इनका कहना है। तो बड़े ही गंभीर भी बातें आ रही है, थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी हो जाए तो हमें बताइए कुछ कि क्या आप और आपके दोस्त जब मिलते हैं तो कुछ ताने उलाने का दौर चलता है या नहीं, और दोस्ती पर कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें ये बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आपके हमसफर के आने के बाद आप वाकई दोस्तों से दूर हो गए या ऐसा सिर्फ कहा जाता है। ये सारी बातें तो आप बताएंगे ही, साथ ही हमें ये भी बताइए कि जो अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है, संगीत किसका है।

दोस्ताना फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत इस गीत में था और यही हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने भी सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं रोज फेसबुक पेज पर टेक्स्ट पढ़ने आता हूं और सोचता हूं कि आज यूनुस जी आएंगे, मगर अफसोस मैं निराश हो जाता हूं। ऐसा नहीं कि आप सब लोग कार्यक्रम अच्छा नहीं करते, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार इंतजार बहुत लंबा हो गया है। भाई आपकी ये इंतजार जो है जल्द ही खत्म होगा, ऐसे हमारा मानना है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दोस्ती में आदमी बेतकल्लुफ रहता है, हर बंधन से मुक्त, जिसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब की दीवार नहीं होती, होता है तो बस आपसी प्यार और इतना सा लिहाज कि जब ये दोस्त कभी रूठ ना जाए। पुरुष के मामले में यही दोस्त हम सफर की एडिटिंग का शिकार हो जाते हैं, ये बहुत फोन करता है, इसे और काम नहीं क्या, ये तुम्हारे ऑफिस में है क्या, वगैरह वगैरह। इतने पर भी अच्छे दोस्त बुरा नहीं मानते और दोस्ती बनी रहती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संसार के सफर पर मानव आने के बाद पहली बार परिवार से मिलता है, फिर सहपाठी, स्कूल कॉलेज के दोस्त होते हैं, अच्छे, हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं, जीवन भर याद रहते हैं, जिंदा दिली से जीते हैं।

अचानक जीवन में अजनबी के आने से उनके साथ फिर एक नया परिवार बना लेते हैं। परिवार और दोस्तों दोनों का साथ सामाजिक दायित्व निभाने के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों का साथ हमें कुछ पलों के लिए खिलखिलाने और मुस्कुराने का अवसर प्रदान करता है। परिवार दोस्तों के साथ मिलकर भरपूर जिएं और खूबसूरत पल बिताएं, तनाव मुक्त रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत यारी दोस्ती की ज्यादा बातें करती नजर आ रही है। कभी समुन्दर तो कभी आसमान है दोस्ती, जैसे आजाद परिंदों की जान है दोस्ती। कभी मुसीबत में फंसे दोस्त को भी बचा लेती है दोस्ती, खुशियों का पिटारा है दोस्ती, प्यार भरे रिश्तों का नाम है दोस्ती। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रिश्तों की दुनिया में दोस्ती और प्यार दोनों ही जिंदगी के खूबसूरत रंग है। यारों के साथ हंसी बेफिक्री होती है और प्यार के साथ दिल कुछ ज्यादा ही खामोश होकर धड़कने लगता है। दोस्त चाहे जितना छेड़ें, हम सफर आए तो दुनिया सिमट जाती है और कभी किसी अजनबी की एक मुस्कान उस सिमटी दुनिया में फिर से हलचल मचा देती है। शायद जिंदगी भी इसी उलझन का नाम है, कभी यारी के नाम, कभी प्यार के नाम। तो बस इस बात पर एक गीत याद आ गया जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। ये बताइएगा कि ये गीत किसकी आवाज में है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजें। बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे साथियों ने, और हमारे साथी बहुत सी बातें तो लिख रहे हैं। उदित जी, अनुराधा जी, हमारे एक और साथी ने ये जवाब दिया। हमारे साथी ने ये भी बताया कि अनु मलिक का संगीत इस फिल्म के गीत में। हमारे एक साथी का कहना है कि दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत तो सुरीला सफर है। यहाँ हम सभी कभी नहीं मिले, फिर एक दूसरे के विचारों को लाइक करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि नमक और दाल की दोस्ती अटूट, शक्कर और चाय की दोस्ती अटूट, नमक और दाल की दोस्ती अटूट, सुख और पानीपुरी की दोस्ती अटूट, सुखर गानों की दोस्ती भी अटूट, सुख का हजारों लाखों से दोस्ती अटूट। सोचो अगर सुख दोस्ती नहीं करे तो क्या होगा। ये भी सोचने की बात है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आते हैं अकेले, अकेले ही छोड़ जाते हैं संसार, बीच सफर

हमें मिलता है परिवार और यार दोस्तों का प्यार, फिर बनते हैं किसी मनचाहे हमसफर के प्यार के शिकार। देखते रहते हैं रिश्तों के बदलते रंगों का आकार, उलझनों में ही चलती रहती है ये जिंदगी निराकार। क्या बात कही आपने, हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम हैं यारों के यार, करते हैं धर्म पत्नी से प्यार, शिकार करते हैं अनीति का, निज धर्म पर चलना सिखलाते अपने माता पिता के संस्कार। इस दुनिया में हम अकेले ही आते हैं, लेकिन अपने अच्छे संस्कारों से बनाते हैं हम अपना अच्छा परिवार। हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें, तो कभी चाहते हैं यार दोस्तों का साथ, तो यारो दोस्तों के लिए मेरे दोस्तों दीजिए उन्हें भाई जैसा प्यार। हाँ, प्यार से तौबा मत करना, प्यार बढ़ाता भाईचारा, लेकिन किसी ने सच कहा है प्यार दिलों का मेला है, ऐसा इन्होंने गीतों के साथ और आगे अपनी बात कही है। तो जब बात यारो दोस्तों के साथ प्यार पर आ गई है, तो एक गीत आपको सुनवा ही देते हैं, और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। आवाज तो आप पहचान ही लेंगे, हमें बताइए लिखा किसने है।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: अजनबी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: स्टार्स के बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें आज बात हो रही है अकेलेपन की भी, साथ में यारी दोस्तों की भी और हम सफर की भी। हमारे साथी कहने की कल रात ही उन्होंने अपनी पत्नी को बताया अपने उन 3 दोस्तों के बारे में जो नॉन स्टॉप बातें किया करते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल के दिनों में ही सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त हुए, परंतु हायर एजुकेशन कॉलेज के समय मुझे स्वयं मेहनत करके कमाना और पढ़ाई के खर्चे निकालना पड़ा और इस वजह से समय के अभाव के कारण दोस्तों से मिलना नहीं होता था। फिर मेडिकल प्रमोशन ऑफिसर जॉब लगा, फिर शादी की और बच्चों की जिम्मेदारी में व्यस्त रहा और अभी भी हूं। हाँ, मेरे स्कूल के समय से आज तक और आगे भी मेरा सच्चा प्यारा दोस्त और साथी रहा है रेडियो और विविध भारती, विविध भारती परिवार और इन दिनों फेसबुक के विविध भारती के श्रोता साथी भी। हमारे एक और साथी ने भी कहा है कि उनके जो विविध भारती के जो श्रोता साथी हैं उनके दोस्त हैं और एक अलग तरह की दोस्ती पेज में हमें नजर भी आती है आप सभी के कमेंट्स के जरिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दोस्ती फिल्म उनकी दोस्ती पर आधारित जो फिल्में हैं उनमें सबसे पसंदीदा फिल्म है। ऐसे बहुत से लोगों ने दोस्ती फिल्म को ही चुना। हमारे एक साथी दोस्ताना फिल्म का नाम भी लिखते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि हम सीनियर लेडीज का एक ग्रुप है और हम रोज शाम को मिलते हैं 1 घंटे आधे घंटे के लिए और बहुत सारे जो भी उत्सव त्योहार जो भी होते हैं वो सब हम आपस में मिलके मनाते हैं और कभी कभी नाश्ते वगैरह के लिए भी वो बाहर जाते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं। लेकिन कोविड आने के बाद से ये दौर थोड़ा खत्म हो गया उनका और वो उस वक्त को अब भी मिस करती हैं। हमारे और साथी हैं वो कह रहे कि दोस्ती पर आधारित सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्ती उन्हें अच्छी लगी, खुदगर्ज याराना और दोस्ती का नाम भी हमारे एक साथी ने लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि व्हाट्सएप में मेरे स्कूल के फ्रेंड्स का एक कॉलेज फ्रेंड का भी ग्रुप है, समय समय पर छोटी छोटी टूर्स भी हम करते रहते हैं, साथ में मिलते रहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिए जलते हैं तो अंधेरों में उजाला भर जाता है, मन में उम्मीद और जीवन में नई रोशनी आती है। एक छोटा सा दीपक भी हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए। एक साथी कह रही कि प्रेम ही ऐसी चीज है जो दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग थलग कर देता है। हम योजना तो बहुत बनाते हैं मगर अंत में वही होता है जो ईश्वर की मर्जी होती है। जन्म लेते ही हमें मिलता है प्यारा परिवार, फिर यार दोस्त, फिर एक प्यारा सा हमसफर। ये जीवन के क्रय हैं। एक दिन आपको समझ आ जाता है कि हम जो भी पात्र जी रहे हैं वो भी एक कहानी है और कहानी के लेखक हैं ईश्वर। तो इस जिंदगी में जो रिश्ता मिले उसका शुक्राना कीजिए और जो ना मिला उसके लिए उदास मत होइए। जो हो रहा है एक पटकथा का हिस्सा है और आप एक छोटे से रोल में हैं, तो बस उस रोल को निभाते रहिए और खुश रहिए। नमक हराम फिल्म का जो गीत हमने सुनाया दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बहुत से साथियों ने कहा कि उनकी लिस्ट में वो गीत शामिल था। और भी हमारे साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि उनकी लिस्ट के 90 नंबर का जो गीत था वो चल चुका है। एक और साथी कह रहे हैं कि प्यार यार और परिवार में छुपा है सारे संसार का सार। संबंधों की सामंजस्यता के अभाव में इंसान एकाकी और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। अभिरुचि के समानांतर भाव की तलाश में इंसान कभी यार कभी प्यार तो कभी परिवार में जीवन गुजार देता है। अंततो गत्वा उत्तरार्ध में परिवार से ही संपूर्ण संतुष्टि मिलती है। ये हमारे साथी का कहना है। और एक साथी कह रहे हैं कि स्कूल टाइम

इनसे आज तक दोस्ती चल रही है। 60 साल से मोबाइल पर लगातार हम बातें कर रहे हैं। भाई इतना समय तो शायद मोबाइल को आए हुए भी नहीं हुआ, लेकिन इनकी दोस्ती बरकरार है, ये सबसे अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय, संजोग और स्थल के बदलाव से नए दोस्त तो बनने स्वाभाविक हैं, और उनमें से कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, पर मैं पुराने और संयोगों के कारण छूटे पुराने दोस्तों को भूला नहीं हूं। कल की मन में और कभी कभी सपनों में भी याद आते हैं। कुछ इस दुनिया से चले गए, पर मेरे सपनों में तो कभी कभी आते जाते रहते हैं। ये आपका लगाव ही है अपने दोस्तों के साथ, जो आपको वो नजर आते रहते हैं, और इस तरह की दोस्ती तो बिल्कुल बनी रहे तो अच्छा है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कुछ बात, लेकिन ये बात हम आपको बताएंगे एक गीत के बाद। तो ये गीत हमने चुना है एक ऐसी फिल्म से जिसका नाम आपको हमें बताना है, और ये भी बताइएगा कि इस गीत को लिखा किसने।

चलते चलते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत। हमारे साथियों ने कुछ जवाब दिया हो तो हम तक पहुंचा नहीं अब तक। हमारे एक साथ

कहते कहने की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कॉकटेल, कॉकटेल टू, इन फिल्मों में मौज मस्ती, फ्रेंडशिप, लव, सब कुछ है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी दोस्ती तो बड़ी अच्छी है और उनके जो गेट टुगेदर होते हैं उसके बारे में बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है कि 100 से 150 लोग मिलते हैं, 1978 का उनका बैच है और बड़ा ही आनंद उन्हें आता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि संसार में यदि आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होती है, हर दुख सुख में वो बिना बुलाए हाजिर रहेगा, बस एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। लेकिन हमारे एक साथी का कहना है कि यारों के साथ दिमाग फ्रेश होता है और प्यार के साथ दिमाग का दही होता है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल आसानी से मित्रता हो गई मेरी सबसे अच्छी मित्र से, बस कक्षा में आते ही हम दोनों तुरंत ही बातें करने लगी, यूं तो आगे पीछे की सीट थी फिर भी दिन भर बातें करती थी, अगली कक्षा में हम दोनों एक ही सीट पर बैठने लगे, फिर हम अलग हो गए क्योंकि हम नए घर में आ गए। तो अब भी आपकी उनसे बातें होती हैं या नहीं ये हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज भी एक कॉलेज मित्र के यहाँ हम चार मित्र जा रहे हैं, वो उद्योगपति है और विश्वकर्मा पूजा पर हमें आमंत्रित किया है, तो यारी दोस्ती का मूल्य उत्तरार्ध में ही महसूस होता है। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि प्रेम सिर्फ इंसान से नहीं पशु पक्षी से करो, वो आपको दोगुना देंगे, यानी कि दोगुना प्रेम देंगे। हमारे एक और साथी कहने कि दोस्त कम बनाते हैं पर जिसे बना लेते हैं उसे कभी नहीं भूलते, हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, बात सबसे करते हैं पर दोस्ती सबसे नहीं, पर जो दोस्त हैं वो बड़े ही प्यारे हैं, इतने कि अभी जब हमारे घर का काम चल रहा था तो उन्होंने कई बार हमारे लिए खाना भी बनाया और साथ आकर भी खाया। हम बहुत किस्मत वाले हैं जिसे परिवार के साथ इतने अच्छे और सच्चे दोस्त मिले हैं, और तो और स्कूल के भी कुछ दोस्त फिर से मिल गए हैं, पर हाँ बस दुख उस बात का है कि जिसका सबसे ज्यादा जरूरी वही साथ छोड़कर चले गए, ये तो खुद नहीं भगवान ने बुला लिया, शायद उन्हें कुछ अच्छे इंसानों की जरूरत होती है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये भाई अब जीवन की रीत है यही हम कह सकते हैं, लेकिन आपके पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। वही हमारे साथी ने जो अपनी दोस्त से पहली पहली मुलाकात याद की उस पर एक गीत आपको सुनवाते हैं, आपको बताना है कि इस गीत में संगीत किसका, फिल्म का नाम भी।

ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं, मैं कभी अकेली नहीं रह पाई, पैदा होने के बाद हमेशा बहुत बड़े परिवार में रही, माता पिता दोनों का परिवार बड़ा और संयुक्त था, शादी भी बड़े घर में हुई, 3 बच्चे उनकी शादी के बाद परिवार, अकेले रहने का मौका ही नहीं मिला। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भी तौबा तुम्हारे ये इशारे, इस गीत में से कौन सा शब्द इबारत में है कृपया बताएं। तो हम आपको बता दें कि तौबा शब्द ही हमने इबारत में शामिल किया हुआ है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अकेले हैं तो क्या गम है, ये गीत उन्होंने बताया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अकेले आए हैं तो अकेले जाएंगे तय है, मगर मोबाइल ने तो हमें अभी से अकेला कर दिया। वही हमने एक साथी को कहा था, जो वो कह रही थी कि 60 साल से वो बातें कर रही है फोन पर, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल पर बातें होती है, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल नहीं आया था, और उन्होंने कहा कि वे लैंडलाइन तो आ गया था। तो बिल्कुल सही बात, हम अपनी बात लेते हैं वापस, और अच्छा है आप अपने दोस्तों से इसी तरह से जुड़े रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए दोस्तों का जीवन में आना एक नई ताजगी और नए दृष्टिकोण लेकर आता है, लेकिन पुराने दोस्तों के साथ जो दिल का जुड़ाव होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नए रिश्ते जहां जिंदगी को नया रंग देते हैं, पुराने रिश्ते हमारी जड़ों और पहचान को संभाले रखते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि अगर सच्ची भावना तो कभी भी दोस्ती टूटती नहीं है न रिश्ते, तो इसलिए मन में कभी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे सारे दोस्त स्कूल कॉलेज के मोबाइल नहीं थे, इसलिए आज वो दोस्त गुम है। हजारों बार फोन फेसबुक पर तलाश करते पर निराशा हाथ लगती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में बिछड़े हुए दोस्त से मिलना यादगार होता है, ऐसा इनके साथ हुआ। 8वीं में सांची में थे, पिता का ट्रांसफर भोपाल हो गया, लेकिन 2025 में जब सांची गए तो कई दोस्तों को ढूंढने का प्रयास किया, उसमें से एक मिला और पुरानी बातें हुई, बड़ा आनंद आया। और अब आपको आनंद आएगा जब हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

والا ہم سفر ہمراد ہوں تا قیامت

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी पैसे पर। पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें सुरक्षा देता है और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन जब पैसे को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाने लगता है, तब जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। आज अनेक लोग सफलता का मापदंड केवल धन संपत्ति को मानने लगे हैं। किसी व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र, ज्ञान या संस्कारों से नहीं, बल्कि उसके बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ी और आलीशान घर से आंका जाने लगा है। इस सोच ने समाज में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। पैसे के पीछे अंधी दौड़ में कई लोग अपने परिवार, स्वास्थ्य और अपने रिश्तों की उपेक्षा कर देते हैं। दिन रात धन कमाने की चिंता में वे अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और मित्रों को भी महत्व नहीं देते। उनकी नजर में पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।

ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के कोठे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

खाली अगर तू मर गया मेरी जान, नादनी तुझको छुएगी न धरती ही देगी।

0: लीडर को देखो, he's looking so very grand. कोलकाता फिर का डिनर है इन द होटल सन एंड सैन. उसके लड़के की शादी देख जाइए न पूछ, कहां से आया ये हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन. आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया,
1: सबसे बड़ा रुपया.

अत्यधिक धन लालसा कभी कभी व्यक्ति को अनैतिक रास्तों की ओर भी ले जाती है। गलत काम के पीछे अक्सर अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाह ही होती है। ऐसा धन क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति और आत्मसम्मान नहीं दे सकता। ये भी सत्य है कि पैसा आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। इसलिए धन कमाना गलत नहीं है, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम से कमाया गया धन सम्मान का विषय है। समस्या तब शुरू होती है जब पैसा जीवन का उद्देश्य बन जाता है, साधन नहीं। वास्तविक समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, प्रेम पूर्ण रिश्तों, संतोष, नैतिक मूल्यों और मानवता में भी होती है। पैसा जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन खुशियों, विश्वास और अपनत्व का स्थान नहीं ले सकता। पैसे को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना वह वास्तव में योग्य है। पैसा जीवन का आवश्यक साधन है, परंतु जीवन का सर्वोच्च मूल्य नहीं। धन का सम्मान करें, उसका सदुपयोग करें, लेकिन अपने संस्कारों, रिश्तों और मानवीय मूल्यों को उससे कभी कम न आंके। पैसे से हम भले ही दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, पर पैसे से प्यार, अपनापन, स्नेह नहीं खरीदा जा सकता, और पैसे का हमें गुरूर भी नहीं करना चाहिए।

0: कर है।
1: जब पैसे का दुरुपयोग होने लगता है तब वही पैसा अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। इसलिए धन कमाना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक है उसका सही और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करना। आज के समय में अनेक लोग अपने आय का बड़ा हिस्सा दिखावे, फैशन, अनावश्यक खरीदारी, महंगे गैजेट्स, पार्टियों और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं। कई बार लोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आर्थिक असंतुलन और मानसिक तनाव को जन्म देती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने भी पैसे के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है। दूसरों की जीवन शैली देखकर लोग बिना आवश्यकता के नई नई वस्तुएं खरीदने लगते हैं। कई बार वस्तुएं केवल इसलिए खरीदी जाती है कि वे प्रचलन में हैं, जबकि उनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की, सबकी सहमति

0: गति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इसे

0: जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चीप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमीकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
0: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
5: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति, खुशहाली, समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खा वो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
4: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए।

0: आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
2: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
1: प्रधानमंत्री के जन्मदिन

0: मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में पतिता फिल्म का गीत आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत और बोल हसरत जयपुरी के। आज गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम उनकी कलम से निकले गीतों से सजा है। कार्यक्रम में मुकेश की हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।

0: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो?
1: बेशर्म,
0: शेखर,
1: मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
2: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है, बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अभिशगन होता है भैया।
0: होता है तो होने दो।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर उनकी कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं।

हसरत जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गीत में ओपी नैयर का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी की ये रचना मोहम्मद रफी की आवाज में, झुक गया आसमान फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का। कौन है जो

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: खेत नहीं।
1: राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आज गीतकार हसरत जयपुरी की कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में चोरी चोरी फिल्म का ये गीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी की कलम, शंकर जयकिशन का संगीत।

चोरी चोरी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज पगला कहीं का फिल्म से ये गीत सुनिए, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत। इस गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: ममता जी आपको और हमारी सारी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: हेल्दी नमस्कार, बिल्कुल, मतलब ये कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं,
1: हेल्दी और है, चाहती हैं जी, चाहते हैं कि हमारे जितने भी सुनने वाले, ये जो हमारा सखी सहेली का परिवार है और साथ में विविध भारती का परिवार, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छा खूब ध्यान रखे,
0: हेल्दी रहे। उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत थोड़े बहुत उपाय भी तो करना चाहिए
1: जी।
0: ये कहा जाता है कि रोग आए उससे पहले आप उसका इंतजाम कर लो ताकि आपको बीमारी ना आए, क्योंकि एक बार बीमारी लग जाती है तो आप ना हक दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, डॉक्टर के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए ये अपना एहतियात इस तरह से बरतें कि आपके ऊपर रोग आक्रमण ही न कर पाए।
1: बिल्कुल, 5 मिनट का से ही शुरुआत कर सकते हैं हम ममता जी, छोटे में बताते हैं कि 5 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं आप। सैर कर लीजिए, घर से निकल जाइए बिल्कुल बाहर, और न संभव है तो घर में भी हम कदम ताल के तरफ तौर पर चल सकते हैं, हल्का फुल्का सा प्राणायाम भी कर सकते हैं। और आप देखिएगा, ये सच में ऐसा होता है कि 5 मिनट के लिए हम शुरुआत करते हैं और वो कब 15-20 मिनट में तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता।
0: और एक बार आदत पड़ जाती है ना कि एक्सरसाइज करना, अपना ख्याल रखना, तो फिर जब आपका ये सब छूटता है तो आपको लगता है कि हाँ कुछ छूटा हुआ है और आप उसे नियमित दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अगर छूट जाता है कई दिनों तक तो फिर छूटता चला जाता है, तो इसलिए लंबा गैप नहीं देना चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है इसलिए हम आपका खास ख्याल रख रहे हैं और अपनी वो साझा कर सकते हैं।

0: उन्होंने लिखा है, सखी सहेली की महफिल सजी ममता जी और दीपा जी के साथ, ज्ञान संवेदना और मुस्कान लेकर बढ़ते जीवन के साथ। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का संदेश हमें समझाता है, हर रोगी की सुरक्षा और सम्मान सबसे पहले आता है।
1: क्या बात है।
0: पद्मश्री रोशन कुमारी की कथक कला की सुंदर कहानी, नृत्य की हर थिरकन में बसी मेहनत और प्रतिभा पुरानी। सोशल मीडिया भी जीवन का अब अहम हिस्सा बन गया है, सोच समझकर व्यवहार करें, यही संदेश मन में रह गया है। त्योहार की खुशियां में पर्यावरण का भी रखिए ध्यान, कम कचरा स्वस्थ वातावरण, यही हो उत्सव की पहचान।
1: क्या बात है भाई, इन्होंने तो
0: आखिरी में दो लाइन और बस कि ममता जी की बातों में अपनापन, दीपा जी की आवाज में मिठास, सखी सहेली यूं ही सजाते रहें हर दिन जीवन में खुशियों की आस।
1: क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस तुकबंदी के लिए और कविता के रूप में ढालने के लिए हमारे बताए गए विषयों को। और सबसे जो अहम मुद्दा है वो है सोशल मीडिया और हमारा व्यवहार कैसा हो। भाई सोशल मीडिया पर हम गाहे बगाहे चर्चा तो करते ही रहते हैं लेकिन फिर भी कम पड़ता है, लगता है कि इसके बारे में और क्या क्या बोल दें कि सोशल मीडिया को एक जरूरी तौर पर उसका उपयोग किया जाए,
0: वो ऐसा होता है ना लत के रूप में कि एक चैप्टर का रिवीजन कर लेना चाहिए, बस उस तरह की कुछ बात हो जाती है कि दोबारा याद कर ले तो अच्छा रहता है।
1: तो सोशल मीडिया को का प्रकोप इतना ज्यादा ना हो कि वो कलह का कारण बन जाए घर में।

0: अपने ही घर में थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो हर जगह समाज और देश का भला हो सके।
1: बिल्कुल। और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत रोशन कुमारी जो कथक नृत्यांगना है इनके बारे में हम जानकारी देंगे और अब सुनेंगे ये गाना श्रोताओं के साथ।

0: जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर प्रसन्नता हमेशा होती है, और जब प्रसन्नता रहती है मैडम तो ममता जी तो मन कहीं कुछ ऐसा थिरकने को लगता है ना, नहीं भी आता हो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को नृत्य करना है, लेकिन पैर की थिरकन एक अपने आप चल
1: थिरकने से कहा जाता है कि डांस एक स्ट्रेस बस्टर होता है
0: जी।
1: आपके बहुत सारे तनाव मन के घुल जाते हैं कहीं, तो अगर आपको नृत्य आता है किसी भी प्रकार का तो आप हमें लगता है कि बहुत खुशहाल प्राणी कहलाएंगे
0: जी,
1: क्योंकि जरा भी मन उदास होता है दुखी होता है तो आप नृत्य करने लगे देखिए आप सब कुछ भूल जाते हैं,
0: बात बिल्कुल सही
1: या
0: है।
1: फिर गाना गाने लगे तो संगीत में ताकत है, लेकिन नृत्य तो ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप सब कुछ भूल सकते हैं
0: जी, और उसमें जब रियाज, समर्पण

0: और अनुशासन जुड़ जाता है और कई बरसों की शिक्षा अगर उसमें जुड़ जाती है तो वो बड़े बड़े पुरस्कारों तक और सम्मानित भी हो जाती है वो व्यक्तित्व। जैसे आज हम जिनकी बात कर रहे हैं रोशन कुमारी जी, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विशेषकर कथक के इतिहास में सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं और उन्हें जयपुर घराने की अग्रणी नृत्यंगना माना गया है। और रोशन कुमारी का जन्म अम्बाला में हुआ था। उनका परिवार कला से गहराई से जुड़ा था। पिता चौधरी फकीर मोहम्मद और वे थे प्रसिद्ध तबला और पखावज के वादक और उनकी माता जी थी जोहराबाई अम्बाले वाली। 1940 का जो दशक था उस वक्त ये प्रसिद्ध शास्त्रीय और पार्श्व गायिका रही हैं
1: और उनकी मां चाहती थी कि वे एक गायिका बने, लेकिन रोशन का मन नृत्य में लगा रहता था तो वो अपने पिता के बेहद करीब थी। पिता पखावज बजाते और वो घंटों अपने पैरों में घुंघरू बांधकर रियाज करती। उन्होंने 5 बरस की उम्र से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था
0: जी। और जो शुरुआती नृत्य शिक्षा जो उन्होंने ली है वो ली है के एस मोरे जी से। 40-50 के दशक में फिल्मों में डांस डायरेक्टर थे वे। उनके प्रमुख गुरु सुंदर प्रसाद जी लखनऊ घराने के दिग्गज बिंदादीन महाराज के शिष्य थे। बाद में उन्होंने उस्ताद गुलाम हुसैन खान और गुरु हनुमान प्रसाद जी से जयपुर घराने की नृत्य की बारीकियां सीखी। गोविंद राज पिल्लई और महालिंगम पिल्लई से उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा। वो कभी स्कूल नहीं गई, घर पर ही ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई करती थी
1: और उन्हें हमारे देश के और विदेश के नेताओं के सामने भी नृत्य प्रस्तुति का अवसर मिला। 1971 में उन्होंने मुंबई में नृत्य कला केंद्र की स्थापना की। इस नृत्य संस्था से उन्होंने अपने कई शिष्य तैयार किए। उनकी प्रमुख शिष्याओं में मुक्ता जोशी, अदिति भागवत, नंदिता पुरी, अनुना गुहा, ये बहुत सारे नाम शामिल हैं
0: जी। और रोशन कुमारी ने फिल्मों में भी कथक को जीवित रखा। एक अभिनेत्री के रूप में बिमल रॉय की फिल्म परिणीता, फिर सोहराब मोदी की मिर्जा गालिब, बसंत बहार जो बंगाली फिल्म बनी थी उसमें, और सत्यजीत रे की जलसागर
1: और उनके उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन और नृत्य कला के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें बहुत सारे सम्मानित पुरस्कार से भी सम्मानित करवाया। 1963 में उन्हें मिला नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1977 में नृत्य विलास सम्मान उन्हें मिला, 1984 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, 2005 में अखिल भारतीय भूलिका पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया
0: जी। और रोशन कुमारी की नृत्य शैली की ये विशेषता थी कि इसमें जयपुर घराने की तेज लयकारी, चक्कर पखवाज की थाप के साथ भरतनाट्यम जैसे अभिनय की गहराई का संगम, ये दोनों दिखते हैं। उस दौर में उनका कृष्ण लीला पर नृत्य करना लोगों को अटपटा सा लगता था ममता जी, लेकिन उसके बावजूद तब उनके पिता ने हर रूढ़ी को तोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया।
1: और उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि कला में पहचान केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, प्रतिभा को साधना, अनुशासन और समर्पण से निखारना पड़ता है। जब घुंघरुओं की आवाज के साथ ताल मिलती है, जब एक कदम से लय जन्म लेती है और एक भाव पूरी कहानी कह देता है, तब समझ में आता है कि कथक सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की धड़कन है। तो ये थी कथक नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में जानकारी। हमारे बहुत सारे श्रोता भी टिप्पणी में कुछ लिख रहे हैं, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं जिसमें नृत्य का ही एक स्वरूप देखने को हमें मिलेगा, उसके बाद उनकी टिप्पणियां भी शामिल करते हैं
0: जी। बिल्कुल।

0: दीपा जी, ये लेकिन फिल्म का गाना था आशा भोसले की आवाज में और बहुत ही खूबसूरती से हेमा मालिनी नृत्य करती नजर आ रही है। हम बात कर रहे थे नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में, जानकारी दी थी इस गाने से पहले और उन्हीं के बातचीत के बाद खास तौर से हमने ये गाना चुना था। और गुलजार साहब के बोल थे सत्यशील देश पांडे का इसमें संगीत था और हेमा मालिनी ने ये नृत्य किया और ये तो सभी को पता ही होगा कि हेमा मालिनी तो नृत्य में कितनी पारंगत हैं और कितने तरह के नृत्य उन्हें आते हैं और कुशलता से पर्दे पर वो दिखाती हैं और अलग से वो क्लासेस भी लेती रही हैं
1: जी।
0: और बहुत सारी जानकारियां उनके बारे में हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल
1: अब हम चलेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर और एक बात और कहना चाहेंगे बस यहाँ पे कि अगर नृत्य करते रहेंगे तो हमें शायद इस तरह के रोग से मुक्ति बहुत बहुत हमें मिलती रहेगी। फिलहाल ये बात
0: क्योंकि एक तरह की एक्सरसाइज भी हो जाती है नृत्य से।
1: जी, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा के एक प्रस्ताव के तहत शुरू किया था। इसका मुख्य सिद्धांत था फर्स्ट डू नो हार्म, यानी चिकित्सा का पहला नियम है कोई नुकसान न पहुंचाना। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में हर 10 में से एक मरीज को स्वास्थ्य सेवा के दौरान किसी न किसी तरीके का जो भी नुकसान होता है उसमें से लगभग 50% नुकसान को रोका जा सकता है। और इस दिन का उद्देश्य है कि रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सरकारों में डॉक्टर, नर्सों और अस्पताल और मरीजों को एक साथ लाना और स्वास्थ्य प्रणाली में गलतियों को कम करना। इस साल यानी 2026 में इस दिन की थीम रखी गई है सेफ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और स्लोगन दिया है सेफ केयर फॉर लाइफ, यानी जीवन भर के लिए सुरक्षित देखभाल। गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज या सांस फूलने वाले कोई पुराने रोग होते हैं, दुनिया में करीब 74% जो मृत्यु है इन्हीं बीमारियों से होती है।
0: डब्ल्यूएचओ ने इस थीम को इसलिए भी चुना है क्योंकि मरीजों को सालों साल लगातार इलाज, दवाइयां और जांच की जरूरत पड़ती है और बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनमें नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे कि कई बार गलत निदान या फिर देर से निदान होना, इलाज करवाना और दवाइयों में कई बार चूक हो जाती है, अस्पताल में जो संक्रमण की संभावना होती है वो बढ़ जाती है, कई बीमारियां एक साथ होने से इलाज में दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं।
1: जी,
0: तो इस वर्ष आज के दिन के मुख्य लक्ष्य को रखा गया है कि मरीजों को सिर्फ मरीज नहीं बल्कि साझेदार बनाना है ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा में हिस्सा ले सकें और सरकार भी स्वास्थ्य नीतियों में रोगी सुरक्षा के तहत शामिल किया है अपनी नीतियों को और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित निदान और सुरक्षित दवा उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है, ये आज इसका उद्देश्य है।
1: जी, और देश में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर ये भी जरूरी है कि डॉक्टर का पर्चा साफ साफ समझना सीखना चाहिए, दवा का नाम, खुराक, एक्सपायरी ये सब देखना बिल्कुल न भूलें और अपनी बीमारी का पूरा इतिहास डॉक्टर को बताना जरूरी है, तभी सही इलाज संभव है और इलाज के बाद फॉलोअप को कभी भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ममता जी सिर्फ डॉक्टरों का दिन नहीं है बल्कि ये सब हम सबका दिन है क्योंकि सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली तभी बनेगी जब मरीज जागरूक होंगे और स्वास्थ्य कर्मी भी समर्थ होंगे।
0: बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और जोड़ना है कि फॉलोअप के लिए तो सजगता जरूरी है ही, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो पुराने प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, कई बार एक बार आपकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख दी और उसको आपने रख लिया, प्रिजर्व कर लिया अपने पास और जब वापस मान लीजिए खांसी, बुखार और ये सब सिम्टम हो रहा है वही दवा आप रिपीट कर लेते हैं। जरा सोचिए कि साल भर पहले जो बीमारी जिस वजह से आपको फीवर बुखार आया था, जरूरी नहीं है कि इस बार भी वही कारण हो, कुछ और कारण हो सकता है, उसमें बहुत सारी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया और दुनिया भर की जो बीमारियां फैली हुई है वो डेंगू जैसी बीमारी, तो पता चला वही दवा आप रिपीट कर रहे हैं।

0: खा रहे हैं, बुखार की दवा खाए जा रहे हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, डॉक्टर से संपर्क कर लें पहले। और फिलहाल हम ये गाना सुनवा दें।
1: चलिए सुनते हैं।

0: तो देखिए स्वास्थ्य का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे रामा रामा हम ये गीत के तौर पे गाएं तो ठीक है, ऐसा नहीं हो कि तबीयत के कारण या किसी और वजह से हम इस तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ये हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। दरअसल अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना बस इतना ही है कि हम तो यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से टहलना अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, नियमित रूप से कसरत को शामिल कर लीजिए और राजनीति की बातें की थोड़ा बहुत मूवमेंट, कुछ आजकल तो इस तरह की एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं जिसमें नृत्य की भावभंगिमाएं शामिल है, जिसमें पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ की, पैर की, आंखों की और चेहरे की, बाकायदा ट्रेनर आपको सिखा देते हैं। और एक नया चलन ये भी चला है, हालांकि पुराना है लेकिन आजकल ज्यादा चलन में वो है कि जिम जाना नियमित रूप से। तो आप जिम जाके भी अपने को फिट फाट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल हम एक संदेश सुनवा रहे हैं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले,
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और दीपा जी कहाँ
1: जी,
0: सोशल मीडिया में उलझी हुई है ना?
1: सोशल मीडिया में उलझे नहीं है, हम तो ढूंढ रहे हैं हमारे सभी श्रोताओं के संदेश।
0: तो ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इसी में मिलता है सब।
1: देखिए हर चीज के लिए ममता जी ये बुरा नहीं है, कुछ कुछ काम की बातें भी तो होती है ना। देखिए और अपने जो श्रोताओं से है ये जुड़ने का, बिल्कुल जो सखी सहेली के वक्त जुड़ने का एकदम उस वक्त लगता है कि हम फोन न हटाएं, अपने तो, पास रखें, ज्यादा से ज्यादा संदेश।
0: तो वो सोशल मीडिया वाले ज्ञान के कौन कौन से मोती हैं जरा देख लेते हैं हम भी।
1: जी।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, ये हमें लोगों से जोड़ने और विचारों के आदान प्रदान का अवसर देता है, लेकिन इसके कारण हमारे व्यवहार में भी बदलाव आया है। हमें सोशल मीडिया का उपयोग संयम, शिष्टाचार और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी, अफवाह या गलत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। सही संतुलन के साथ सोशल मीडिया हमारे ज्ञान, संवाद और सकारात्मक सोच का माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखिए कि बदला तो है, दिनचर्या देखिए बदली तो है कि हमारी सुबह केवल सूरज की पहली किरण के साथ नहीं होती, हम मोबाइल की स्क्रीन से भी होती है। और आंख खुलते ही फोन देखना, संदेश पढ़ना, सोशल मीडिया पे आए नए पोस्ट देखना और फिर दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में फोन की तरफ लौटना, जैसे हमारी ये जिंदगी की रोजमर्रा की आदत नहीं बन गई, आपको नहीं लगता ममता जी?
0: बिल्कुल लगता है। एक और बदलाव हमारे व्यवहार में आ चुका है कि

0: किसी ने अपनी पोस्ट डाली है तो ये देखना कि वो लाइक मिले कि नहीं, कमेंट लिखे कि नहीं लिखे। आमने सामने शायद हम जिस बात को बड़ी ही शालीनता से कहें, वही स्क्रीन के पीछे बैठकर बहुत ही कठोर शब्दों में कह जाते हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है।
1: ऐसा
0: हम जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखते हैं तो कई बार बहुत सरलता से कोई बात लिखी जाती है, लेकिन पता चलता है कि उस बात का गलत मतलब निकाल लिया गया
1: और फिर उस पर बड़ी लंबी सी बातचीत होने लग जाती है। कोई एक सोशल मीडिया का फ्रेंड कुछ एक बात लिखता है, उस पर फिर जवाब आते हैं और वो बात बहुत लंबे आगे तक खींच के चली जाती है। लेकिन पहले देखिए ये है कि क्या हम सोशल मीडिया पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों, ये धीरे धीरे हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगा है?
0: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि हम फोन उठाते हैं, सोचते हैं कि बस 5 मिनट फोन देखेंगे। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी ओर से बोल रही हूँ।
1: चलिए किसी के भी ओर से हो भाई, एक बात उठना चाहिए।
0: हम तो श्रोताओं की ओर से भी ये बात कह रहे हैं
1: जी,
0: क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि सभी की ये लत है कि फोन उठाया और एक वीडियो देखा, एक फोटो देखा, उससे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अगर मोबाइल की गैलरी में चले गए तब तो तस्वीरों से जुड़ी हुई बातें जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो 5 मिनट कब आधे घंटे में तब्दील हो गया।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हम ख्याल रखते हैं क्योंकि हमें तो बिल्कुल समय के हिसाब से चलना होता है और समय का मिलान करते हैं हमारे श्रोता, लेकिन श्रोता बताएं कि वो कितना ख्याल रखते हैं। क्या वो कभी ऐसा करते हैं कि 5 मिनट के लिए बैठे और आधे घंटे बीत गए और कहीं जाना था और बैठे रह गए कि पता चला घर में बहन, पत्नी या मां ने कहा कि जरा सब्जी दूध ले आना और आप मोबाइल के स्क्रीन पे ही बैठे रह गए। या फिर उल्टा भी कर लीजिए इसको कि पति ने पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा या कोई और काम आपस में बंटवारा हुआ कि हम ये करना और बैठे रह गए। तो ये कोई एक वर्ग नहीं है, ये बच्चे, बुजुर्ग, घर में पति पत्नी, भाई बहन, सब लोग इसी में लगे हुए हैं,
1: सब शामिल हैं। और देखिए ना, ये चमकती सी जो दुनिया है इसमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसको भी जवाब दे दे, हम इन्हें भी जवाब दे दे, अरे हमारे इस मित्र का ये संदेश आया था हम उसे भी जवाब दे दे, या हमने जो डाला था पोस्ट उस पे कितने लाइक्स आए वो देख लें, और अब बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए हैं तो उसका जवाब अभी के अभी देना बहुत जरूरी है, फिर झगड़े हो जाते हैं।
0: और अभी आप जब सोशल मीडिया पे देख रही थी संदेश
1: जी,
0: तो मैंने 2-3 बार आपको आवाज दी है बैठे बैठे, तो आप डूबी हुई थी, लेकिन ठीक है, वो अच्छी बात है कि श्रोताओं की टिप्पणियों में आप डूबी हुई थी।
1: जी बिल्कुल, उसमें डूबे हुए थे।
0: कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सोशल मीडिया में आप उलझ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है उसमें बहुत कुछ है, आपके मोबाइल के अंतर में कंप्यूटर के स्क्रीन पर बहुत कुछ है, जानकारियां भी बहुत सारी हैं, किताबें हैं, बहुत सारे पन्ने हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, कहानी कविताएं भी पढ़ सकते हैं
1: जी,
0: लेकिन सिर्फ बैठ के एक दूसरे को जवाब देते रहे, चैट करते रहे, हंसते रहे, इमोजी भेजते रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। कई बार आप ऐसा होता है कि कोई जरूरी काम भूल जाते हैं। आपको बताऊं दीपा
1: जी
0: कि अभी कल ही एक जो फिल्म है हनुमान अंश, उसके उस फिल्म के डायरेक्टर आए थे और विशाल चतुर्वेदी
1: जी,
0: तो उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि वो कागज और कलम से लिखते हैं, तो मैंने ये सवाल पूछा कि आज डिजिटल युग में आप कागज कलम से ये इतनी बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख डाली, ऐसा उनके बारे में सुना था
1: जी,
0: तो उन्होंने बताया कि दरअसल हुआ ये कि मोबाइल साथ में रहता था और कंप्यूटर साथ में है, तो कितना भी हम मोबाइल को म्यूट कर लें लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे स्क्रीन पर कुछ न कुछ चमकता रहता है, कोई न कोई संदेश, फिर लगता है कि ये जरूरी तो नहीं होगा मोबाइल उठा के देखते रहना। तो मैंने क्या किया, मतलब ये उन्होंने कहा विशाल जी ने, कि मैंने क्या किया कि मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, बंद करके पैक करके रख दिया, और एक हमारे स्टूडियो में गुफानुमा एक बना हुआ है कमरा जैसा, वहां पे मैं चला गया और कागज कलम लेके, तो 15 दिन तक मैं स्क्रिप्ट लिखता रहा और 15 दिन तक मैं सोशल मीडिया से दूर रहा, मतलब मोबाइल से
1: जी।
0: तो ये बड़ी अचरज की बात है, आज के युग में आप 15 दिन तक, लोग 15 घंटे नहीं रह सकते, मुझे तो लगता है 15 मिनट भी नहीं रह सकते बिना मोबाइल के।
1: बिल्कुल। और आज के युग में अगर 15 दिन तक कोई दिखे नहीं, अगर कोई जैसे ये मीडिया से जुड़े कोई व्यक्तित्व है, अगर वो ना दिखाई दे और कुछ जवाब ना दे या कुछ प्रतिक्रिया ना दे, तो ऐसा लगता है इन्हें क्या हो गया या क्या बात है भाई, या तो ऐसा लगने लग जाता है अहंकार तो नहीं आ गया, या यूं लगता है हमसे नाराजगी तो नहीं है, और फिर वो पर्सनल मैसेज पे जाकर ऐसा क्यों ऐसा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कई बार कुछ अच्छी सी पोस्ट लिखते हैं ना तो या उन्हें लगता है कि हमने बहुत अच्छी सी बात लिखी है तो
0: जवाब नहीं दिया,
1: मैसेज पर

0: डालते हैं कि जवाब नहीं दिया, उस पर जवाब दो। देखो हमें ना कोई फला मतलब किसी तीसरे को हमें कुछ ये बताना है या सुनाना है, इसलिए तुम यहाँ पर जवाब दो, तो इस तरह की भी बातें होने लग जाती।
1: और तो और फेसबुक पर और इंस्टा पर कुछ लोग पोस्ट डालते हैं और टैग कर देते हैं, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर पर्सनल मैसेज भेजते हैं कि अरे मैंने तो ये लिखा, अच्छा उसका फिर लिंक भेजते हैं, लिंक पर भी आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर मैसेज करते हैं, मैसेज भी नहीं देखा तो फोन करते हैं कि अरे मैंने ये पोस्ट डाली थी आपने तो देखी ही नहीं।
0: तो इस तरह के व्यवहारों में हम बहुत सारे अंतर देखते हैं। अभी हम क्या देखें या सुने,
1: सुनते हैं ये गाना।

0: कोहरे ताल मिले नदी के जल में, अब आजकल तो शब्द मिले भाषा, भाषा मिले जाके मोबाइल के स्क्रीन पर, यही हाल हो रहा है। और हम बात कर रहे थे यही
1: जी,
0: मतलब सोशल मीडिया,
1: सोशल मीडिया तो ये इस्तेमाल करने के वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ममता जी। जैसे कि दूसरी तरफ भी एक इंसान ही बैठा हुआ है, तो उसकी भावनाएं और उसकी संवेदनाएं भी हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, या उन्होंने क्या किस तात्पर्य में ये बात कही है, ये भी हमें समझ के ही अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे देनी चाहिए।
0: दीपा जी, हम अभी तक तो सोशल मीडिया की नकारात्मक बातें ही कर रहे थे, कुछ इसके सकारात्मक पहलू भी हैं
1: जी।
0: कि एक समय था जब ये माध्यम नहीं था, तो बहुत सारी जानकारियों से हम अनभिज्ञ रह जाते थे, पता नहीं होता था। जैसे किसी फिल्म की चर्चा सिर्फ अखबार में हम पढ़ पाते थे। एक समय तो ऐसा था कि रिक्शे पर, आपको याद होगा, वो भोपू लगा के प्रचार होता था रिक्शे पर, फिर अखबार में आने लगा, तो हम अखबार के पन्ने पे ढूंढते थे कि कौन सी फिल्म लगी है कहां पर, किस टॉकीज में
1: जी।
0: फिर अब इतना आसान हो

0: गया है कि आपको फिल्मों की जानकारी मिल जाती है, थिएटर नाटकों की जानकारी मिल जाती है, किताबें जो आती हैं, हम पहले किताबें सिर्फ नाम से ही जानते थे कि फला साहित्यकार, फला लेखक, कवि, उनकी कोई किताब आई है, तो जब हम प्रकाशक से जुड़े होते थे तो हम वो किताबें मंगवा लेते थे
1: जी।
0: तो या फिर अखबार या पत्रिकाओं में उनका नाम, मतलब जो नए लेखक, उभरते हुए लेखक होते थे अनजान, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। अब ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम नवोदित कवियों को, नवोदित लेखकों को जान पाते हैं, उनकी किताबों की जानकारी मिलती है और उनकी किताबों की चर्चा होती है
1: जी,
0: और ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है जहां पर किताबों के बारे में चर्चा हो जाती है, फिल्मों के बारे में लोग चर्चाएं कर लेते हैं और बहुत सारे माध्यम है, विज्ञान है, मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें सोशल मीडिया पर उपलब्ध होती है, लेकिन उसके एवज में इतना सारा वक्त खा लेता है सोशल मीडिया, वो बहुत दुखद है।
1: वो हमें हमेशा एक अपने आप पर ही ये यूं कहना चाहिए कि थोड़ा सा खुद पर नियंत्रण चाहिए कि हमें कितनी देर बैठना है। अगर या तो समय हम इसके करने की, हाँ भाई आज हम आधा घंटा का वक्त है या एक घंटे का वक्त है या दोपहर में आराम का वक्त है, खासतौर पे महिलाओं के लिए, या जब सारे घर का काम हो जाता है या आपका दफ्तर से अगर लौट रहे हैं या व्यापार से वापस आ रहे हैं तो चलिए ठीक है, आपने थोड़ी सी देर आधा घंटा देख लिया वहां तक ठीक है, लेकिन हम उसी में डूबे रहे ऐसा ना हो। ज्ञान भी बेशक ये अच्छी बात है कि आज हमारे हाथों में ही है, हम चाहें जितना ज्ञान बटोर सकते हैं और चाहें तो वो कड़वे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर रहता है।
0: गानों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है इंस्टाग्राम पर, जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है इंस्टाग्राम पर रीलें बनने लगती
1: हैं,
0: तो बहुत सारे गाने, नए गाने हम नहीं जान पाते हैं तो वो देख के भी पता चल जाता है। एक तो माध्यम है रेडियो और विविध भारती से तो हर तरह के गाने प्रसारित ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया से भी मिल जाती है।
1: जी, ये एक संदेश आया है ममता जी, कह रहे हैं कि हमारा व्यवहार हमेशा सोशल मीडिया पर शिष्ट, जिम्मेदार और सकारात्मक होना चाहिए। किसी भी खबर या पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर कर लेनी चाहिए ताकि हम गलत जानकारी न फैला सकें। और साथ में ये भी लिखते हैं कि हमेशा ये अपमानजनक बात या कुछ ऐसी पोस्ट जिसमें एक घृणा बढ़े, इस तरह की बात बिल्कुल ना करें या किसी की व्यक्तिगत जानकारी, तस्वीरें या वीडियो उसके अनुमति के बिना हमें साझा नहीं करनी चाहिए और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से भी बचना चाहिए और इसे अपने वास्तविक जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
0: बिल्कुल, कई बार लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं और किसी की तस्वीर लेकर अपनी प्रोफाइल पे लगा लेते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो आप देखो तो पता चलता है कि, और उसे जब भी कोई संदेश कहीं भेजा तो पता चला कि तस्वीर तो आपकी है और वो व्यक्ति कोई अनजान है
1: जी।
0: तो ये भी गलत है, ये सब गलत आदतें हैं और इनसे बचना चाहिए। और जिंदगी उन पलों का नाम नहीं जिन्हें हम सिर्फ कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिंदगी तो उन पलों का भी नाम है जिन्हें हम बिना कैमरे के, बिना पोस्ट किए, बिना लाइक किए, उम्मीद के जीते रहते हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि आपके घर की हर बात सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाए, कुछ बातें निजी भी रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक संदेश ये कह रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सोशल मीडिया आज के युग में कई फायदे हमें दे रहा है, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजनेस हो या प्रसारण, परंतु कुछ लोगों की ये फितरत होती है कि हर अच्छी चीज को बुराई में परिवर्तित कर देते हैं, ये उन्हें गलत लगता है। एक और संदेश ये कहता है कि सोशल मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक मंच, इस मंच का उपयोग करते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जो हर वक्त एक उपभोक्ता की फर्ज बनता है कि इस मंच पर ऐसी कोई पोस्ट न डालें जो समाज के लिए हानिकारक हो, 100 बार सोच विचार कर सत्यता की जांच के बाद ही हमें पोस्ट करना चाहिए।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि बस थोड़ा देखते हैं और इतनी देर तक उसमें सोशल मीडिया में खो जाते हैं, पर लाइक नहीं देखते, बस कुछ अच्छी बातें ही देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर सोशल मीडिया के साथ तो उसकी व्यवहार कुशलता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहां हम अपने हिडन आय की निगाह में काम कर रहे होते हैं जिसे हम नहीं जानते, यही नहीं बल्कि हमारा व्यवहार भी छुप जाता है कि हम क्या कर रहे हैं।
1: एक चीज और थी जो कि हमें अब जरूर बात करनी चाहिए, जैसे हम लिख देते हैं सोशल मीडिया पर कि जो इंग्लिश में लिख दिया जाता है ना गोइंग फॉर अ वेकेशन, और हम उसमें तारीखें भी डाल देते हैं ममता जी कि हम इतने दिन से इतने दिन तक कहीं हम बाहर जा रहे हैं। अब अगर किसी का ध्येय ही कुछ अलग है, गलत है, तो उन्हें पता चल जाएगा।

0: कि आप इतने तारीख से इतने तारीख तक घर में नहीं है, तो शायद आपके अनुपस्थिति का वो
1: सुरक्षा की दृष्टि से,
0: सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने तारीख को जा रहे हैं, इस तरह की बात हमें कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर हम रोज न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ अपने होते हैं कुछ बिल्कुल अनजान। हमारी एक छोटी सी टिप्पणी, एक प्यारा सा शब्द किसी का हौसला बढ़ाती बात उसके दिन को खूबसूरत बना सकती है। इसलिए यहां भी कोशिश करें कि हमारे शब्दों में सम्मान हो, बातों में मिठास हो और दिल में किसी के लिए बुरे भाव न हो। बिल्कुल सही बात है कि ये जरूर है कि कोई उदास है, दुखी है, तो आपकी एक टिप्पणी, आपका एक संदेश उसके दिल को, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होठों पर ला सकता है।
0: जी। और एक हमारी सखी लिख रही हैं कि ये वरदान तो बन सकता है, लेकिन इसका जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल शायद हमें ये मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी के हिसाब से भारी हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
1: जी। और अब एक सुनते हैं गाना।
0: जी।

सजना सजना ओ सजना।

0: देखिए त्योहारों का जो वक्त ये चल रहा है इन दिनों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। और ये लोगों ने कई सारे संदेश भी भेजे हैं ममता जी। ये पहला संदेश कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आजकल गणेश उत्सव हर गांव हर शहर में मनाया जा रहा है। गणेश जी की मूर्ति पीओपी के बजाय मिट्टी से बननी चाहिए। विसर्जन के वक्त नदी तालाब जैसे खुले जल स्रोत की बजाय घर के बनाए कृत्रिम कुंड या टंकी में करें। होली के दिनों में रासायनिक रंगों की बजाय प्राकृतिक हर्बल रंगों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली पर बहुत प्रदूषण वाले फैलाने वाले फटाके से बचना चाहिए। रोशनी के लिए तेल के दिए या मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं।
1: और हमारी एक सखी है जिन्होंने ये बात लिखी है कि हम में से कितनों को ध्यान रहता है कि पूजा पंडाल में मिलने वाला प्लास्टिक की प्लेट में प्रसाद हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है।

0: एक एक प्लेट करके कितने लाख प्लेट हो जाते हैं, इसका अंदाजा लगाया है किसी ने? होली के एक दिन पहले पेड़ों को काटकर अग्निदाह करना कितना उचित है? गणेश जी के आगमन के बाद और दुर्गा उत्सव में कितने पंडाल में मिट्टी की मूर्ति बैठी है, इसका तो अनुमान लगाना ही बहुत कठिन है। काश इंसान सोच पाते, जब एक पेड़ कटता है तब सिर्फ एक लकड़ी का लट्ठा नहीं गिरता, तब छिन जाता है पक्षियों से उनके घोंसले और हरे पत्ते की ताजगी भी। कहा जाता है कि हमें तो याद है कि बचपन में नानी दादी कहती थी कि जो पेड़ कटता है तो पेड़ कटते वक्त छाल से जो लिक्विड निकलता है ना, रसायन निकलता है, जिसको कि बचपन में इसी नानी दादी यही भाषा बोलती थी, वो देखो दूध निकल रहा है, ये दूध नहीं उसके आंसू हैं, पेड़ के आंसू।
1: जी,
0: तो ये अब कहां तक ये ठीक है, एक मिथ के रूप में हम मानते हैं जो भी वैज्ञानिक कारण है, लेकिन पेड़ को जब काटते हुए हम देखते हैं तो सचमुच बहुत तकलीफ होती है।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और एक और ये संदेश कहता है कि हमें पटाखों, प्लास्टिक और अत्यधिक कचरे से बचते हुए प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने चाहिए। स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए त्योहारों को पर्यावरण से रक्षित इस तरह से बनाया जाए और हमारी खुशियों को और सार्थक इसी तरह से बन सकते हैं। एक और संदेश ये कह रहा है कि आजकल घरों पंडालों में प्लास्टिक के फूल और तरह तरह के सजावट के सामानों से अपने घर की और पूजा पंडालों की सजावट हम करते हैं और यह कचरा पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा है कि सजावट भी आप प्राकृतिक फूलों से करें, प्राकृतिक चीजों से करें, जैसे कि आम के या अशोक के पत्ते, प्राकृतिक बंधनवार, वो ही उसका ही इस्तेमाल करें और लाइटों की जगह छोटी छोटी मोमबत्तियां और दीयों से हम घर को सजा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और जो पूजा सामग्री होती है, फूल माला जैसी जैविक सामग्री से खाद बनाई जा सकती है और बाकी सामग्री को अलग करके उचित तरीके से उसे निस्तारित कर लें। त्योहारों में जो कचरा होता है उसे कम करें और खुशी का मंत्र ज्यादा अपनाएं, तो ये आपके लिए त्योहार उत्सव बना रहेगा, वरना फिर आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको दुख देने लगेगा।
1: जी बिल्कुल।
0: और अब बोलिए कि हमारे श्रोताओं को क्या खुशी दे सकता है
1: एक गीत।
2: मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो।

0: बड़े गजब की बात।
1: ममता जी देखिए, सोशल मीडिया का एक फायदा भी है, हम यहाँ पर बातें करते हैं और तुरंत हमारे जो श्रोता हैं
2: प्रतिक्रिया
1: देते हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, हमें भी पेड़ों को काटना बहुत

0: रिका नमस्कार। सखी सहरी कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आज पहले नंबर पर हमारे कौन श्रोता हैं जो बात करना चाह रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने आज गणेशोत्सव पर बात की है, कुछ श्रोताओं ने अभियंता दिवस के बारे में अपनी जानकारी दी है, अपनी बात साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला फोन कॉल्स का। ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, बुल्ढाणा महाराष्ट्र का।
0: जी बताइए दीपक जी, अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए और बुल्ढाणा कहाँ पर महाराष्ट्र के किस इलाके में पड़ता है?
1: जी बुल्ढाणा विदर्भ में पड़ता है मैडम, अकोला बुल्ढाणा जालना जिला के बाजू में।
0: जी जी, तो अपने उस गांव की कुछ खासियत बताइए ना।
1: जी हमारा खेड़ा गाँव है मैडम, छोटा सा, खेती किसानी करते हैं। साल किसान के बहुत हाल चल रहे, बारिश नहीं, इधर फसल आने के पहले बारिश गई है।
0: ओ, बारिश नहीं हो रही है और बहुत जगह पे तो बहुत ज्यादा असंतुलित बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है।
1: जी हमारे इधर नहीं मैडम, बारिश फसल नुकसान में इस साल।
0: ओ, तो कौन कौन सी फसल होती है आपके यहाँ?
1: या सोयाबीन होती है, मक्का, कपास होती है।
0: ओ, तो सबके लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है ना?
1: सबके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, साल पानी बहुत कम गिरा।
0: जी जी,
1: इस साल परेशान है बहुत हम किसान।
0: हम शुभकामनाएं कर सकते हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आपके तरफ क्या पूरे देश में संतुलित बारिश हो जाए ताकि फसलों को नुकसान ना पहुंचे। और क्या करते हैं फिर, खेती किसानी करते हैं, तो अभी बाग वाग भी है आपके यहाँ?
1: नहीं, बाग नहीं लगाते मैडम, हम यही पारंपरिक पीक लगाते हैं, सोयाबीन, कपास।
0: अच्छा,
1: बाद में गेहूं हरभरा लगाते हैं।
0: जी जी, तो वैसे हर साल कैसे पैदावार होती है, हर साल अच्छी पैदावार हो जाती है?
1: दो दो फसल आ जाती है हर साल, जो भी आता है वो पहले सोयाबीन भी आती है।
0: जी जी,
1: 19 से अच्छी बारिश रही इस साल तक।
0: तो बारिश अगर नहीं हुई है तो ट्यूबवेल वगैरह जो आधुनिक तकनीक है उससे पानी की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो है वो सब तकनीक आपका?
1: ट्यूबवेल है तरफ, कुएं भी है हमारी तरफ, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसमें पानी आ रहा है।
0: बिल्कुल, उतना इफरात में पानी तो नहीं मिल पाएगा।

0: हमसे बढ़कर कौन था, देवा हो देवा गणपति देवा।
1: जी जी, तो महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव की बड़ी धूम होती है, तो आपके घर में भी गणपति आते हैं या आपके घर के आसपास?
0: आते।
1: अच्छा,
0: नहीं आते, हमारे गांव में घर पर तो होता है गणपति, हर एक घर में होता है।
1: और इसी के बहाने लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं ना?
0: जी जी बिल्कुल
1: जी। तो चलिए फिर, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से?
1: मैम तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूं मैम।
0: जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपका क्या हाल है?
1: बस राम जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मैडम, बढ़िया है हालचाल। आज मैम हमारी बरसों बाद कॉल लगी है, कोरोना के बाद से आज कॉल लगाए मैम।
0: अच्छा, कोरोना के समय तो हेलो फरमाइश था ही नहीं, बंद हो गया था आज।
1: नहीं, और पहले भी आता था ना मैम अपना प्रोग्राम।
0: जी जी जी, तो चलिए आज लग गया है, तो बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: जी मैम हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने अभी गेहूं, मक्का और सोयाबीन लगाए और धान भी लगाई हुई है।
0: तो फसल अच्छी है?
1: जी जी बढ़िया है मैम, अभी तो अब आगे देखते हैं कैसे होगी, अभी तो फिलहाल में बढ़िया है, टॉप 10।
0: जी जी, तो बढ़िया। आपका गांव भरा पूरा गांव है, लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम। मैं थोड़ा हमारे अशोकनगर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल दीजिए।
1: हमारे अशोकनगर जिले में एक गांव है करीला धाम, वहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है जो कि अपने पूरे इंडिया में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जानकी माता जी का मंदिर है और मतलब एक ही दिन में मैम 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मांगी दुआ पूरी होती है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, अच्छी जानकारी दी है। जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात तो वहाँ जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे।
1: ठीक है।

0: वो मेले तो बहुत लगते हैं, लेकिन जो राई नृत्य का मेला होता है ना, वो हमारे अशोक नगर में लगता है, जो कि पूरे अपने इंडिया में फेमस है। मेले तो मैम एक से बड़े एक लगते हैं, लेकिन जो राई नृत्य के लिए जाना जाता है ना, वो सिर्फ अपने करीला धाम अशोक नगर MP में ही लगता है।
1: जी जी, तो मेले में और क्या क्या होता है? मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती है, खरीदारी के लिए लोग जाते हैं, मेल जोल के लिए जाते हैं, तो आप मेला देखने किस लिए जाते हैं?
0: जी मैम, हम भी जाते हैं, हमारे लोकल में तो हम कभी भी चले जाते हैं, लेकिन जो मेले के समय में जाते हैं वो एक अलग ही बात होती है। और वहाँ की मेन जो अपन पूरी निकालते हैं ना, कढ़ाई होती है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से हम कढ़ाई लेकर आते हैं तो अब तेल कम जलता है हमें।
1: अच्छा, ओके। और क्या क्या चीजें मिलती हैं कढ़ाई के अलावा? और क्या क्या चीजें मिलती हैं भाई? हमारे जो बचपन का मेला था ना, उसमें हमको तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, खिलौने मिलते थे, किताबें मिलती थी, गुड़िया गुड्डे मिलते थे, और सबसे बड़ी बात वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना, जिसको गुलाबी रंग का होता है, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो मिलता था, वो खाने हम जाया करते थे। तो आप बताइए अपने मेले का कुछ दिलचस्प अनुभव।
0: मेले का अनुभव ये होता है कि जैसे हम पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो किसी को टिक्की खानी होती है, किसी को चाट खाना होता है, किसी को कुछ गुड्डे गुड़िया खिलौने छोटे बच्चों के लिए लेना होता है।
1: तो टिक्की चाट
0: बचपन किया था।
1: हाँ, टिक्की और चाट अकेले खाते हैं कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, उनको भी खिलाते हैं, दोस्तों मित्रों को भी खिलाते हैं?
0: मित्रों को भी खिलाते हैं, दोस्तों को भी, सभी बैठकर मिलकर एक साथ में खाते हैं, तो वो आनंद ही कुछ अलग होता है। मैम ऐसे जब साथ में खाते हैं ना, तो बचपन की यादें और भी ताजा हो जाती हैं।
1: जी जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम, फिल्म का नाम है अग्निपथ, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम
0: जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम दोनों दोस्त है, परवन से। सतीश कावे मेरा नाम है और दोस्त का नाम पांडुरंग मोरे।
0: जी बताइए, कौन

0: अच्छा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है लावारिस।
0: जी जी
1: तो ऐसे वैसे।
0: अच्छा ये गाना सुनना चाहते हैं जी, अपने हाँ। बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए, कैसी है दोस्ती आपकी, कभी दोस्तों के बीच खटपट नहीं होती है?
1: हमारी पक्की है।
0: पक्की है?
1: हाँ।
0: अच्छा कैसे पक्की की दोस्ती, कुछ तकरार नहीं होती कभी?
1: हमारी दोस्ती हमारी 10 साल से है।
0: अच्छा
1: विविध भारती की दोस्ती वैसा हमारी दोस्ती है।
0: जी जी अच्छा,
1: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
0: जी और कुछ कहना चाहते हैं?
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने
1: गणपति बापा की शुभकामनाएं आपको सबको, जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
0: जी जी आपको
1: विसर्जन विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है उनके ध्यान दीजिए, क्योंकि आजू बाजू में गाड़े आते हैं।
0: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही है आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें, और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपनी भीड़ से निकाल देना चाहिए ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए, है ना?
1: ये बारिश तो नहीं गई गई लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, गणपति के साथ में ले जाओ मत, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
0: जी जी बिल्कुल, और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, आदाब मैडम
0: जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मेरा नाम नहीं है, मैं देखिए मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, आज जब से दोबारा हैदर फरमाइश स्टार्ट हुआ था, आपके साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है?
1: जी नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ।
0: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए, कश्मीर खूबसूरत वादियों की।

0: जगह है, जन्नत का सा नजारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है, कहाँ पर?
1: सेंटर कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंटर कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। हमारा जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा बड़गांव सूफी शायर के लिए सबसे

0: ये क्या
1: बिल्कुल
0: ओके
1: गिरते, जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहता हूँ। दूध पथरी एक मशहूर जगह है, उसी के आसपास रहते हैं। जंगल के किनारे है, बड़े बड़े पहाड़ हैं और बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरते हैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ।
0: जी जी आप क्या करते हैं वहाँ पर?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे दीवारों पर पेंट वेंट लगाते हैं, सिटी के जो आइटम होते हैं जैसे बीप कॉक शावर होते हैं, वही बिजनेस में करता हूँ। अपने ही गांव में दो चार शॉप है हमारे पास और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा जो कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं इस
1: इसके
0: बात
1: अलावा
0: के लिए।
1: क्रिकेट, और बचपन से लेकर अभी तक क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत अच्छा है, मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये
0: बहुत
1: मुझे
0: बढ़िया,
1: बचपन के शौक है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो शौक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपने मोबाइल के गेम में ही गुम रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वो खेलना नहीं चाहते, उनको बोला जाए तो भी नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये खेल वगैरह, इसकी कोई कोशिश करते हैं आप?
1: बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल पहले जमाने में नहीं होते, लेकिन आजकल स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर अलग मिलते हैं और सरकार ने भी कदम उठाया तो बहुत अच्छा, इसमें हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो आजकल जो नशीली दवा होते हैं, ड्रग्स वग्स होते हैं, इससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं।
0: जी, और दूसरी बात ये कि यहाँ आपके इलाके में तो खुली वादियां हैं, खुली जगह है, वहाँ खेलने के लिए जगह भी मिलती होगी,
1: बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा।
0: तो कभी बर्फ गिरी हो और आप क्रिकेट खेलते रहे हो, ऐसा कोई अनुभव है?
1: बचपन में हमने खेला है, तो दो चार बार हमने खेला है,
0: बारिश हो रही है,
1: बर्फ गिरी थी, हमने क्या किया, यहाँ बर्फ जमती है बहुत ज्यादा जमती है और उसके पिच लगाना बहुत आसान होते हैं, फिर हम टेनिस बॉल उससे सबसे ज्यादा खेलते हैं उस बर्फ पे। बस उसमें क्या करते हैं, बर्फ को छोटे छोटे बॉल बनाते हैं और एक दूसरे पर फेंकते हैं, बहुत ज्यादा होती है।
0: क्या बात है, ये तो आप बचपन की बात बता रहे हैं, जो टूरिस्ट होते हैं पर्यटक, वो तो अभी जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो बड़े भी खेलते हैं ऐसे बर्फ का गोले बना के एक दूसरे पर फेंकते, वही तो खेल का आनंद होता है बर्फीली वादियों में, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, दो चार बार मैंने देखा है।
0: और अब तो उसे वीडियो बनाने के लिए भी किया जाता है, खेले जाए ना खेले, लेकिन वीडियो जरूर बनाते हैं लोग। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने गाना भी वही चुना है, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, संजय कपूर वाली एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, उदित नारायण की खूबसूरत आवाज, यानी कि बोले पंचीश्वर में गाते हैं, बावरे गुनगुनाते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सुनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: भाईकन मुंडा?
1: जी मैम।
0: अच्छा, कौन सी जगह?
1: चौराहे डिस्ट्रिक्ट सुनारी असम।
0: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए आप जहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी मैम, यहाँ तो मौसम अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
0: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
1: हाँ हाँ, मैं चाय पत्ती का पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में उसको लेके जाता है, फिर इसको वो प्रोसेस रहता है मैम, वो चाय पत्ती बनाने का।
0: जी
1: तो
0: जी,
1: उसमें मशीन में डाला जाता है।
0: हाँ,
1: फिर इसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बनके रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है,
0: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं। और
1: जी जी मैम,
0: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
1: यहाँ तो बिहू। हाँ मैम, बिहू यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जातीय उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
0: जी, तो कौन से उत्सव पे ये नृत्य किया जाता है?
1: मैम देखिए, यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने भर चलता है।
0: जी जी, तो अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, लेकिन आज कॉल लगा है तो बहुत खुशी हो रही है।
0: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: जी बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन वादियाँ मतलब कैसी हैं? वहाँ पर क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
0: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है,
1: जी जी अच्छा
0: तो पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
1: बहुत बढ़िया। तो आप वहाँ के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
0: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है। और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते
1: अच्छा,
0: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं,
1: जी जी
0: लेकिन आनंद भी बहुत आता है।
1: छाया दिखती होगी और वो जो
0: जी
1: एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है लेकिन पता चला कि
0: जी
1: वहां से एक रास्ता खुल जाता है। तो
0: जी
1: जंगलों में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, वो बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं। एक
0: जी
1: वहाँ सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहां से
0: बहुत
1: जंगल?
0: दूर है हमारे यहाँ से।
1: अच्छा, सतपुड़ा के
0: हाँ
1: घने
0: जी
1: जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है जो बिल्कुल
0: जी
1: वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, याद है आपको ये
0: जी
1: कविता?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से तो कविताएं हमने पढ़ी भी हैं और अभी तो आज ये हिंदी दिवस भी मनाए हैं तो काफी अच्छा लगता है संगीत से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना।
1: आगे की पंक्तियां कुछ
0: जी
1: याद है भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के? झाड़
0: नहीं
1: ऊंचे
0: वैसे तो याद
1: इस
0: नहीं है।
1: तरह से
0: जी
1: कुछ है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख भींचे, घास चुप है, काश
0: जी
1: चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे पूरे लगता है कि हवा जंगल में आ रही है, हवा को भी आने की आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, मतलब पूरा जंगल का दृश्य उपस्थित किया है। तो
0: बिल्कुल
1: मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे
0: बिल्कुल
1: में बताना
0: बिल्कुल
1: चाहिए, जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना?
0: जी जी जी जी
1: एक बात और कहनी थी कि ये जो
0: जी
1: जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए
0: हाँ
1: रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
0: देखिए जंगल तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं मतलब जो हमारा पूरा पृथ्वी जगत कह सकते हैं जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीजें आती हैं, तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगलों के कटाव को रोके और जो बहुत ज्यादा हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों का जो काटने का काम कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इनको बचाना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप दादा ने जो लगा दिए हैं, जो पेड़ आम के पेड़ लगा दिए बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा रहे हैं, नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे, है ना?
0: बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं, लगभग 20 से 25 साल के।
1: जी बहुत बढ़िया। और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहे तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
0: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
1: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है?

0: वहाँ पर?
1: अभी तो धान बहुत आयत है और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
2: बिल्कुल, और वहाँ के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट और मिठास होती है उनमें। कौन कौन से चावल पैदा होते हैं?
1: बासमती, ये जो मिठास की अब बात की है वो है, और हमारे इलाके में सरना और महमाया ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
2: जी जी, तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए?
1: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
2: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप
1: जी
0: कौन बोल
1: बहुत,
0: रही।
1: मैं नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ,
0: जी बताइए
1: और
0: नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी
1: विविध
0: जी
1: भारती में।
0: जी बहुत शुक्रिया कि आपका फोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए, आप छतरपुर से बोल रही ना?
1: जी, छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से,
0: जी
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है, चंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है। और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
0: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान है इस जगह के बारे में। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, जिन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा। आप चूंकि पेशे से इंजीनियर हैं तो आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे।
1: हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए

0: दिन तय किया गया था।
1: जी जी।
0: और श्री विश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
1: जी जी।
0: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहें, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
1: नेहा जी, हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे कुछ?
0: जी, किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है। इसी तरह से तकनीक भी अभिशाप और वरदान इसी रूप में है।
1: अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि चूंकि आप इंजीनियर हैं, तो आपने और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है, मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
0: जी, जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देनी शुरू की थी, तब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके, और मैकेनिकल हुआ करती थी, जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है, और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
1: जी, बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल।
1: क्या
0: ये
1: बात है,
0: थ्री इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार। ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए आपका नाम क्या है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: जी अशोक प्रजापति जी, बताइए क्या हाल है, वाराणसी का क्या हाल है?
1: वाराणसी का हाल चाल दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
0: वो जो

0: बनारस में गंगा आरती होती है शाम को, उसके बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ, गंगा आरती के बारे में आपने कहा तो दशाश्वमेध घाट पर हमारे कनम्बे आरती कनम्बे होता है 7 बजे से।
0: हाँ
1: तो आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और देखने के लिए तो हम लोग जगह करते हैं मैम, और बहुत बढ़िया ढंग से होता है और हाथ जोड़ के सभी लोग खड़ा रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं।
0: भाई उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, और वहाँ बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है जब गंगा जी में जैसे सूरज बिल्कुल उगता है पानी में से, ऐसा दृश्य होता है। तो वो दृश्य हमने तो नहीं देखा लेकिन लोग बताते हैं, आपने देखा है कभी?
1: जी नहीं कन्नम ने देखा नहीं है, हम तो जाते हैं देखे हैं, ये बात नहीं है समय से।
0: हाँ
1: तो सच बात है कि हम लोग जब जाते हैं, जैसे विश्वनाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए, और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर त्योहार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गया, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।
0: सही बात है। बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है, अब हम ही सब बता देंगे, आपको कुछ बताएंगे।
1: जी बनारस के तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी, हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना, और जो पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
0: और वहां की गलियां पतली पतली सकरी सकरी गलियां।
1: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां हैं, जैसे कि कचौड़ी गली में है, और जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोआ मंडी में, जैसे एक अजीब सा महक आती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया,
0: अच्छा
1: चलो अपने
0: कचौड़ी गली के नाम
1: कचौड़ी।
0: लिए, सुनिए कचौड़ी गली के नाम लिए, कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है वो कचौड़ी गली, याद है क्या वो गनवा आपको?
1: मैडम जी जी जी
0: याद है तो सुनाइए जरा।
1: जी नहीं हम गा सकते,
0: नहीं गा सकते? हाँ
1: नहीं, गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि गाना आ गया है तो हमने सुना नहीं है दीदी, देखिए बात जो हकीकत है
0: हाँ
1: तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये
0: हाँ
1: है का नाम है, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली, हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाऊ जी से पूछने लगे पिताजी से कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है, कर कचौड़ी हुआ मशहूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनमरे जय संकट मोचन का भगवान श्री राम जी का जो भी है, सचमुच है कि कचौड़ी ऐसा नहीं बन
0: कहीं
1: पाता
0: नहीं मिल
1: है।
0: पाता वो स्वाद, नहीं मिल पाता, और जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो
1: हाँ
0: मनोयोग से बनाते होंगे वो एक अलग तरह का स्वाद होता है, और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है। तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है, और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। किसी
1: हाँ
0: व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहां के मशहूर हैं?
1: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से है, 80 घाट, इतना घाटे से सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि ये घाट तो हमने 10 मीटर चले, फिर 10 मीटर चले, फिर 20 मीटर, सब घाट ही घाट, घाट ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: 180 घाट सब जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल। अच्छा बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी गाना जरूर सुनना चाहते हैं,

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल शीतला नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या काम काज है?
1: हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी। हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं। हारमोनियम बजा के ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा लेते हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है।
1: मैं जन गाने का काम करता हूँ।
0: तो ये कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ, बस कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में, जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात।
1: हाँ
0: है
1: जी, हमारे गुरुजी है, वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं।
0: जी बड़ा बढ़िया लगता है भाई। अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है, कीर्तन वाला तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं। नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा।
1: और हर मंगलवार और ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर, जो भजन गाते
1: ज्यादातर
0: हैं?
1: तो हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन। और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं।
0: जी, प्रहलाद सिंह टिपानिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा आपने अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा गा कर सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी।

0: तारे तू जी। ममता जी
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे भाई, जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं। जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी हो, उदास हो, तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: कौन
0: ममता जी,
1: सा?
0: और बताना चाहूंगा मैं, उससे पहले बताना चाहूंगा मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ, और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनकर मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना, उन्हें नोट भी करता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी फिल्म का नाम है इतिहास, और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
1: धन्यवाद।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद फोन करें। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022, और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का STD कोड 022 जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण भंग, संपादन सहयोग सौरभ घारू, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश, विविध भारती की फोन।

FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आपका शाम 500 का यह चैनल है। शाम के 5 बजे है प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

थोड़ी देर में 5:05 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा यूवी वाणी। इसके अंतर्गत आज युवा श्रोता सुनेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर आज की बात, विश्व बांस दिवस पर चर्चा, विश्वकर्मा पूजा पर्व पर चर्चा और साथ ही आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम धीरे के बाद आकाशवाणी के क्षेत्र केंद्र से आप सुनेंगे 5:30 पर। 6:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और रात 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार से लेकर चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवा जाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:30 से 7 बजे तक हमारे जयपुर केंद्र से। ग्रामीण श्रोताओं के लिए किसान वाणी कार्यक्रम होगा 7 बजे हमारे जयपुर केंद्र से। यहीं से 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8 बजे आप सुनेंगे एशियन खेल 2026 के 20वें संस्करण पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। समाचार संख्या आप सुन सकते हैं 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। मुंबई में समाचार सुनाए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से 11:00। ये तो था हमारे आज के शीर्ष कार्यक्रम का विवरण और अब एक नजर हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केन्द्र से, चिंतन आप सुनेंगे हमारे जयपुर केन्द्र से सुबह 6:05 पर हमारे जयपुर केन्द्र से, यहीं से 6:10 पर आप सुनेंगे वंदना। हमारे स्टूडियो से सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान, 6:45 पर खेती में बात होगा। आदिवासी लोक संगीत का मजा आप ले सकते हैं 6:50 पर, 7:20 पर वातावरण आप सुनेंगे। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से आप सुनेंगे कल सुबह 7:30 पर, सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे मुंबई केन्द्र से। समाचार प्रभात आप सुनेंगे दिल्ली केन्द्र से सुबह 8 बजे, हमारे स्टूडियो से सुबह 8:15 पर कुछ देर से प्रोग्राम होगा। राजस्थानी लोक संगीत का मजा आप ले सकते हैं 8:45 पर, हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे हमारे जयपुर केन्द्र से 9 बजे, सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और सुबह 11 बजे हमारे स्टूडियो से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं 9:10

23 मई पर और 11:30 मई पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। नारी लोक का समारोह का कल शाम 5:05 पर इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा बातचीत और गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे शाम 5:30 मिनट पर और रात 9 बजे हमारे मुंबई केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे जयपुर केंद्र से शाम 6:30 से 7 बजे तक। 7 बजे का समारोह का चौपाल का 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से। जापान में होने वाले एशियाई खेल 2026 के 20 संस्करण की पूर्व झलक आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात 8 बजे। 8:30 पर जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे। समाचार संध्या आप सुन सकते हैं 8:45 पर। 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये तो था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के मही चैनल से बोल रहे हैं फिल्म बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 5:05 पर ही प्रस्तुत है कार्यक्रम इच्छा वो वाणी।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ जया चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर, इसी के साथ विश्वकर्मा पूजा पर्व पर और साथ ही विश्व मांस दिवस पर। आज का दिन 17 सितंबर का दिन विश्व स्तर पर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और भारत नेपाल सहित कई क्षेत्रों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी होती है। ये दोनों अवसर मिलकर स्वास्थ्य सुरक्षा कार्य कौशल और कर्तव्य, इसी के साथ साथ अधिकारों के विषयों को भी जोड़ते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की शुरुआत मई 2019 में हुई। विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्ताव WHA 72:6 के माध्यम से हुई, जब रोगी सुरक्षा को वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया गया। इस दिन का एक उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाली हानि, जिसे हम समय पर टाल सकते हैं, उसे भी कम करना है। यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी के साथ में सरकार द्वारा कई तरह के जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम और स्वास्थ्य कर्मियों, रोगियों और समुदायों को एकजुट करना भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने वाले लगभग 10 में से एक रोगी को किसी न किसी रूप से गंभीर बीमारी हो सकती है और समय पर सतर्क होकर आधे मामले रोके जा सकते हैं। वर्ष 2026 की थीम है गैर संचारी रोगों के लिए सुरक्षित देखभाल और इसका नारा है सेफ केयर ऑफ लाइफ। जैसे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी रोग, इस तरह की गैर संचारी जो बीमारियां होती है उन्हें दुनिया भर में फैली है और इन रोगों का इलाज लंबे समय तक चलता है, इसलिए इनमें बहुत अधिक खतरा रहता है और इसी के साथ में हमें उतनी ही सतर्कता भी बरतनी होती। इस वर्ष का अभियान प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल और इसी के साथ साथ हमारी

कम्युनिटी को मजबूत करने का और रोगियों की भागीदारी बढ़ाना, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना और नीति निर्माण में सुरक्षा सिद्धांतों को शामिल करने पर भी बहुत जोर देता है। बातें हम आगे भी जारी रखेंगे, आइए उससे पहले ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं प्यारा संगीत।

0: ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: जी, आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे विश्वकर्मा पूजा दिवस पर। आज के दिन 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। 17 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिन नहीं बल्कि कर्म, कौशल और निर्माण की महानता का प्रतीक है। भगवान विश्वकर्मा हिंदू धर्म के देवताओं के लिए स्वर्ग के महल, अस्त्र शस्त्र और अनेक दिव्य रचनाएं बनाई। ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख मिलता है। वे हमें सिखाते हैं कि सृजन और निर्माण बहुत पवित्र कार्य है। इस दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कारखानों, वर्कशॉप, गैराज और दुकानों में औजारों तथा मशीनों की पूजा की जाती है, उन्हें फूल माला पहनाई जाती है और इस दिन सभी अपने औजारों को साफ करके उन पर रोली, अक्षत और फूल चढ़ाकर भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनका काम निर्विघ्न चले, दुर्घटनाएं ना हो, आजीविका में उन्नति हो, इसी के साथ में सभी स्वस्थ रहें। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारे हाथों में जो औजार हैं वे केवल लोहे और धातु के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजी रोटी का साधन है। उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। विश्वकर्मा पूजा से हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। पहला ये कि कर्म का बहुत महत्व होता है। दूसरा, सुरक्षा का बहुत बड़ा संदेश मिलता है और इसी के साथ में कौशल का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आज के युग में जब तकनीकें और मशीनें हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है, तब यह पर्व और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने औजारों, अपनी मशीनों, अपने आवागमन के साधनों को और जो हमारा कार्यस्थल है उसे स्वच्छ रखें, सुरक्षा नियमों का पालन करें, इसी के साथ साथ अपने काम को बहुत ईमानदारी से करें। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज के दिन सिर्फ पूजा ही ना करें बल्कि अपने कार्य के प्रति नई निष्ठा भी जगाएं और जो भी कार्य करें उसे पूरे दिल से करें। बातें हम आगे भी जारी रखेंगे, उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।

0: ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: दोस्तों, विश्व बांस दिवस हर वर्ष 18 सितंबर को हम प्रकृति के एक अद्भुत उपहार बांस की याद दिलाता है और हम बांस को याद भी करते हैं और इसी के साथ में बांस की कई जगह पर पूजा भी होती है। बांस केवल एक पौधा नहीं बल्कि पर्यावरण का रक्षक, किसानों का सहारा और संस्कृति का प्रतीक है। यह तेजी से बढ़ने वाला मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल संसाधन है जो मिट्टी को रोकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और बांस से बहुत उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती है। घर बनाने से लेकर फर्नीचर, कागज, वस्त्र और यहाँ तक कि भोजन तक बांस हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। विश्व बांस दिवस हमें यह संदेश देता है कि हमें बांस के जंगलों का संरक्षण करना चाहिए, इनके उपयोग को बढ़ाना चाहिए और इनसे बनने वाली चीजों को यूज करना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए। इसी के साथ में आइए आज हम

सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम बांस को अपनाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और प्रकृति के इस अनमोल उपहार का सम्मान करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा संगीत।

दोस्तों, अब समय हो चला है कार्यक्रम युववाणी से इजाजत लेने का और कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो आज्ञा दीजिए जया चतुर्वेदी को कार्यक्रम युववाणी से। नमस्कार।

कार्यक्रम सुन रहे थे एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी पांचवाड़ा का यह चैनल है। 5:30 होने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम धीरे धीरे बात आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
2: काई करू धाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी कार्यक्रम धीनेरी बातें। काकी साहब, ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन से जुड़ी हुई सबरी समस्या का समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातें कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: बंशी भाईरा भी
4: मोकला मोकला
5: राम राम
4: राम राम बंशी भाई राम राम
5: राम राम हरखू भाई राम राम।
4: कई बात है, पगा में घूगरिया बांधो डर माथे में साफोर ए चकाचक कपड़ा पहरियो डर गोथड़िया हाथ मायने कितने रवाना हो रिया हो।
5: बार तो भाई देखो सा आखो राजस्थानी नहीं गुजरात भी और भी जगह अपना राजस्थान जगह आसपास जगह राज्य उन्हर मायने एक ही धूम है बा है मेले री धूम।
4: हाँ देखो और जो महीना है नी सा और मेले मगरिया रो महीना है और लोग खूब भक्ति भाव सु पैदल भी जावे और आप जगह जगह साधन बने भी साधना सु भी लोग जाया करे और पूरे भक्ति रे मायने रम जाया करे।
5: हाँ भाई हर आदमी राम जी नाम लेते हुए राम में हो जावे।
4: हाँ
5: भक्ति रे मायने हो जावे एकदम
4: बिल्कुल सा और लोग देखो जिके जतन कर जाया करे प्रेम सु जाए और कह करे के कोई बाबा रामदेव रो नाम ले रहे कोई पूर्णेश्वर रो नाम ले रहे जयकारा लगातार लगातार जा रहा
5: है। भाई राम सा पीरो मेलो है और अठीने सा आपा देखा तो पूर्णेश्वर बाबे रो मेलो है और सियारा धरू रो भी मेलो सा देखो सा बार हुई ही है
4: बिल्कुल सा। और मोटी बात है कि लोग देखो गुजरात सु भी की पैदल आवे और गणकरा आसाम खानी सु भी सुनी रहे मैं
5: कलकत्ते सु भी आवे
4: है नी पर मेरे चेहरे मैंने जिका भी पैदल जातरू है जाऊंगा मेरा चेहरे मायने कठी थकान को दिखे ना कई बात है सा।
5: आ है देखो सा भक्ति री कृपा।
4: हाँ
5: भगत तो जो को भक्ति करे भगवान सु तो फिर उन्हें शक्ति देवे भगवान
4: बिल्कुल। तो मोटी बात आ है बंसी भाई मन में कोई चीज ठान लेओ नहीं कोई भी काम नहीं पर वो काम बोझ कौन लगे सा जे थे काम सु प्यार करो मोहब्बत करो तो वो काम कदे भी दर्द को देवे नहीं वो एक चेहरे पर चमक देवे एक तेज देवे।
5: हाँ
4: पर एक छोटी सी शिकायत है बंसी भाई।
5: बाबा कहीं भाई
4: देखो भाई ये जात्रों खातर सेवा खूब लगे
5: लगे
4: गणकरी सेवा लगे पर साथ साथ क्या है कि जाए डिस्पोजल बोलिया करेंगे इनो जिको निस्तान पर भी आपने थोड़ा ध्यान देना चाहिए थोड़ी सी सजगता रखो कचरे की जी व्यवस्था है पर थोड़ी सांतरी होनी चाहिए और आपा जी कोई काम में ले दिया तो मैंने अठे बठे नहीं फेंक पर जी की कोई जगह निश्चित करूरी है
5: कचरा पात्र हुए
4: और जिका भी सेवा वाला जगह भाई है बीएनबी भी निवेदन है कि इसे कचरा पात्र रखे ताकि वो कचरे वो एक स्थान पर डाल सके।
5: बिल्कुल सा
4: तो मैं तो वही कहूँ सा की इन बातें ध्यान रखो और जयकारा बोलाओ तो आगे बढ़ता रहो और दर्शन करो और भक्तिभाव और सुनपुरो नाम ले सा। पर देखो बा कागज में कई विषय आए आता देखो
5: विषय आ जाओ आप।
4: हाँ
5: देखो सर कुछ लोग तो लिखे हैं कि भाई खुरपका रोग है उन बाबत जानकारी दो और कई जना लिखे हैं मुंह पका रोग है बीमे बारे में जानकारी दो और कई जना कहे कि बाढ़ जो को मौसम है
4: मत
5: टीकाकरण
4: बारे में देखो कागज के टीकाकरण कद कराना चाहिए
5: पहिया करा नहीं रखू भाई के भाई इन सगला विषय ने एक साथ ही कर ले तो जने फिर विषय वो बने खुरपका मुंह पका रोग पहचान और देखभाल।
4: अब सार आ गयो
5: सार आ गयो
4: बिल्कुल सा तो इन विषय पर जानकारी दे अनुसार मैं आपसे न बता दूं कि आज पधारे हैं राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से डॉक्टर अमित कुमार पांडे। डॉक्टर अमित जी आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है और आपने

0: द्वारा।
1: राम राम पशुपालक भाइयों।
0: राम राम साहब, अब देखो आज डॉक्टर साहब ने बातचीत कर खुरपका मुंहपका रोग पहचान और देखभाल विषय पर
2: जी।
0: तो देखो हमेशा हुई है नहीं सवाल क्रिया करो पहले।
2: हाँ
0: तो करो
2: तो डॉक्टर साहब खुरपका मुंहपका जो को रोग है उन बारे में मायने किसान भाई पशुपालक सगला जाने पर आप महाराज का पशुपालक भाई है उन्होंने फिर सु आ बताओ कि खुरपका मुंहपका जो को रोग है वो असल में हुए कही है और किसा कसा पशु है वे इनकी चपेट में मायने आया करे क्या उन्होंने मतलब उनसे प्रभावित हुआ करे।
1: देखो पशुपालक भाइयों ये खुरपका मुंहपका जिसको अंग्रेजी में फुट एंड माउथ डिजीज या FMD भी कहते हैं पशुओं में होने वाले एक अत्यंत संक्रामक वायरल विषाणु जनित रोग है। सरल भाषा में कहें कि यह बीमारी पशु के मुंह खुरों में दर्दनाक छाले और घाव पैदा करती है इसलिए पशु खाना छोड़ देते हैं और मुंह से अत्यधिक लार गिरती है। चलने में दर्द होता है और दूध उत्पादन भी गिर जाता है। यह रोग मुख्यतः दो खुर वाले जानवरों में होता है जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी बैल सुअर और हमारे क्षेत्र में गाय भैंस और छोटे बछड़ों पर इसका आर्थिक असर बहुत अधिक पड़ता है। बड़े पशु प्राय उचित देखभाल से ठीक हो जाते हैं लेकिन छोटे बछड़ों में रोग गंभीर हो सकता है इसलिए लक्षण देखते ही इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब क्यों कभी लापरवाही नहीं बा नहीं करनी चाहिए।
0: भाई जे पशु लार गिर रही है खाना पीना छोड़ दे उत्पादन में कमी आएगी है थोड़ा अनमनो सा रहे है तो थोड़ा अपने जागरूक हो जाना चाहिए और डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। पर अब एक अगला प्रश्न डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि बीमारी का शुरुआती लक्षण कहीं हुआ करे और पशुपालक इंजीनियर की पहचान है बाकी बात करें।
1: देखो हरकू भाई इस रोग में शुरुआत में पशु को बुखार आता है एक सुस्ती सी बनी रहती है भूख कम लगती है ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद पशु के मुंह से धागे जैसी लार गिरने लग जाती है पशु बार बार मुंह चलाता है चारा चबाने में परेशानी दिखाता है और जुगाली भी कम देता है। ध्यान से देखने पर जीभ मसूड़ों होठों मुंह के अंदर नाक में नाक के आसपास पानी भरे छाले दिखाई देते हैं ये छाले फूटकर लाल और दर्दनाक घाव बन जाते हैं। इसी प्रकार खुरों के बीच या खुर के ऊपर छाले और घाव हो सकते हैं। पशु लंगड़ाकर चलता है उठने बैठने से बचता है दूध देने वाली गाय और भैंस का दूध तेजी से गिर जाता है और पशु के थनों पर भी घाव हो सकता है। यदि एक समय में कई पशुओं में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत खुरपका मुंहपका के संदेह कर पशु चिकित्सक को सूचना देनी चाहिए ताकि नमूना लेके जांच कराई जा सके।
2: जी थोड़ी देर पहले आप बात करें कि भाई सजगता जी की बात जरूरी है इंसान ही प्रगति खाते तो भाई देखो साहब और ऊपर आ मैंने जी को वो कागज में लिखकर भेजे कि भाई डॉक्टर साहब से पूछो कि भाई बीमारी अजी की है डॉक्टर साहब अजी की आके तेजी से फैलिया करे है कहीं एक तो और मैं साथ ही साथ और भी पूछे कि एक बीमार जो को पशु है उनसे स्वस्थ पशु ने आज की बीमारी है आ वायरस के कारण से जल्दी चपेट में ले लेवे कहीं और किसा किसा माध्यम हुआ करे जी के शू आ बीमारी है जी की फैलिया करे।
1: देखो बंशी भाई ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है जिस बारे में एक पशु बीमार हो जाए थोड़ी लापरवाही से कई सारे पशु संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के बाद 2 से 14 दिन के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं उसके बाद विषाणु बीमार पशु की लार नाक और के स्राव छालों से पानी गोबर दूध में अन्य स्रावों से हो सकता है या दूषित चारा पानी नान रस्सी दूने के बर्तन वाहन और उपकरणों से भी दूसरे पशुओं तक पहुंच जाता है। मनुष्य में यह रोग सामान्यतः नहीं होता है लेकिन व्यक्ति के जूते कपड़े हाथ उपकरण वायरस को एक बाड़े से दूसरे बाड़े तक ले जा सकते हैं इसलिए बीमार पशु की सेवा के बाद हाथ धोना जूते साफ करना कपड़े बदलना जरूरी है। पशु मेले खरीद बिक्री या फिर सामूहिक चारागाह या पानी की खेड़ी और बिना सफाई के आने जाने वाहन भी संक्रमण फैलाने में भूमिका निभा सकते हैं।
0: देखियो बंशी भाई अच्छा जी का काम करने वाला मिनक है वो और आपा कोई जो वाहन काम में ले रिया तो बीसू भी रोग अठिनी सु बठिने जा सके तो आपा जगह हाथ है बे साफ रखा कपड़ा है बे बदलता रेवा साफ सफाई पूरी रखा और जो कोई आपा वाहन काम में ले रिया तो बीनू भी साफ करना चाहिए अपने अच्छे पानी से साफ कर पच्चे अठिनी सु बठिन ले जाओ आप तो रोग है एक दूसरे में फैले को नहीं।
2: तो रूपाराम भाई सवाल तो थे पूछियो और साथ साथ डॉक्टर साहब जवाब भी दियो पर चिंता नहीं करो भाई चिंता करियो शरीर घटे चिंतन जरूर कर लो
0: बिल्कुल। पर अब डॉक्टर साहब एक प्रश्न और के जे कोई पशुपालक ने आपके पशु में इन रोग लक्षण दिखे तो उन्हें तुरंत किसा कदम उठाना चाहिए ताकि बाकी पशुओं में वो रोग नहीं फैले।
1: हरकू भाई सबसे पहले बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग

0: करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और उसे अलग छायादार सूखे साफ स्थान पर रखना चाहिए और उसका अलग नांद, पानी की बाल्टी, रस्सी, दूने के बर्तन अलग रखने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कदम, पास के चिकित्सालय और या पास के पशु चिकित्सक, पशुपालन विभाग को तुरंत सूचना देना चाहिए। बीमारी को छुपाना या बीमार पशु को बेचना या दूसरे गांव में भेजना नुकसानदायक हो सकता है। तीसरा, पशुओं की अनावश्यक खरीद बिक्री, मेले में जाना, सामूहिक चराई और एक बाड़े से दूसरे बाड़े में पशु भेजना रोक देना चाहिए। बीमार पशु की देखभाल हमेशा अंत में करें, पहले स्वस्थ पशु का काम निपटाएं। देखभाल के बाद जूते और उपकरणों को अच्छे तरह से साफ कर लेना चाहिए। बाड़े में गोबर, गंदा बिछावन और बचे हुए चारे को हटाकर साफ रखें और डिसइंफेक्टेंट या विसंक्रमक का प्रयोग केवल पशु चिकित्सा अथवा विभाग की सलाह से ही करना चाहिए।
2: बहुत बढ़िया जानकारी दी। और डॉक्टर साहब से बात करा कि भी वो बीमारी से जब कोई पशु ने तो बीमार पशु रे मुंह और खुरा में जिका घाव या छाला होया करे तो उनकी घर में सुरक्षित देखभाल और सफाई किन बात करनी चाहिए, इन बाबत महाराज का पशुपालक भाई है उन्होंने आप जानकारी दे सर।
0: बंशी भाई, सबसे पहले तो याद रखें कि घरेलू देखभाल केवल पशु को आराम दे सकता है। घाव को गंदा होने से बचाना चाहिए, यह रोग का पूर्ण इलाज या टीकाकरण का विकल्प नहीं है। मुंह के बाहर और खुरों के आसपास की गंदगी साफ पानी से धीरे धीरे साफ कर लेना चाहिए। पशु को जबरदस्ती मुंह खोलकर कोई तरल पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि वह सांस की नली में जा सकता है। मुंह के घाव की सफाई के लिए कोई औषधि, घोल या दवा केवल पशु चिकित्सक की सलाह से ही प्रयोग करें। खुरों को साफ रखना है और सूखा रखना है। पशु को कीचड़, गंदे पानी, कंकड़ पत्थर या लंबी दूरी चलने से बचाना चाहिए। उसके नीचे सूखा मुलायम बिछावन रखना चाहिए ताकि घावों पर दबाव कम पड़े। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, चूना, राख, मिर्ची, तंबाकू, इस तरीके के अज्ञात देशी लेप घाव पर नहीं लगाना चाहिए। इससे घाव जल सकता है और दर्द बढ़ सकता है, संक्रमण गंभीर हो सकता है। यदि खुर में पस आए, दुर्गंध आए, पशु उठ ना सके, घाव गहरे हों तो तुरंत चिकित्सक से ड्रेसिंग कराएं।
2: जी बहुत बढ़िया जानकारी दी सर। और हमें जो वक्त है नी वो है भीतर ले रो
1: वो क्यों वाली हो था
2: हूँ समझ गयो था ना चेहरा देख रो समझ गयो था सामने जिका बैठा है यहाँ पर पशु वालक भाई बे क्या मैं गीतर नो सुना दो सा।
1: तो भाई आज तो गीतर नो नहीं आज हरजस सुनाओ सा।
2: तो आप से सुनो सा एक मीठो मीठो हरजस।

0: तो भैया अबार आप सुनियो वो एक हरजस।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूँ।

0: हूँ कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीमेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुनें, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
1: बेड़ा आपसे सुन रहा हूँ आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीनेरी बातिया। और आज चौपाल में जानकारी दिन सारो पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु डॉक्टर अमित कुमार पांडे। और आज आप बातचीत करिया खुरपका मुंहपका रोग पहचान और देखभाल विषय पर।
2: डॉक्टर साहब, हर जस पहले आप खुरपका मुंहपका रोग रे बाबत जानकारी दी थी, तो एक सवाल अब दिमाग रे मायने ओ आवे डॉक्टर साहब कि इन खुरपका मुंहपका बीमारी रे माय पशु भोजन और पानी पीनो छोड़ दिया करे और कमजोर हो जाया करे, तो उन बेला पशु ने किसो पौष्टिक आहार देवनो चाहिए इन बाबत मारा पशुपालक है मैं जानना चाहे सर।
3: बंशी भाई, मुंह में छाले होने से पशु सूखा खुरदरा या कांटेदार चारा नहीं खा सकता, इसलिए उसे नरम साफ और आसानी से निगल जाने वाला आहार देना चाहिए। हरा चारा बारीक काट कर दिया जाना चाहिए। सामान्यतः दाने को जरूरत अनुसार भिगोकर या नरम करके दिया जाना चाहिए। पशु की पुरानी आहार व्यवस्था को एकदम नहीं बदलना चाहिए। पशु के पास हर समय साफ पानी रखें, क्योंकि पैरों में घाव के कारण वो पानी तक जाना नहीं चाहता है। पानी और आहार उसके पास ही रखें। बहुत ठंडा या बहुत गर्म, सड़ा गला, फफूंद लगा, तीखा चारा नहीं देना चाहिए। यदि पशु पानी बिल्कुल नहीं पी रहा है और लेटा रह रहा है और कमजोर हो जाए, निगलने में कठिनाई हो, तो उसे तुरंत वेटनरी डॉक्टर या पशु चिकित्सक को दिखाएं। ऐसे पशु को शरीर में पानी और लवण की कमी करने से चिकित्सकीय तरल उपचार में आवश्यकता हो सकती है।
2: क्यों, मतलब वही है कि भाई देखो साहब, चेती जी की है नहीं, वहां हर जगह पर हर घर में पल पल जरूरी हुए।
1: बिल्कुल सर। और पशु धनजदा पर रखा नहीं, तो एक गांठ बांध लो बाड़ो जी को है नहीं, वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। साखा आप जी को भी ने चारों खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मेरे पर भी आपने ध्यान देना चाहिए कि चारों कठी खराब तो कोनी, पानी दूषित तो कोनी, कचरो तो कोनी। तो ये छोटी छोटी जी की बातें हैं नी, इन रोग से दूर करे।
2: बिल्कुल करे।
1: बाड़े के मायने सफाई नहीं हुई तो भी खुरपका मुंहपका जैसा रोग है वे भी होने की संभावना रह गए, या जो जो तो मन बढ़ावनी संभावना दे, चारों जिको भी आप डाला वो भी अच्छो होना चाहिए। पर जी थोड़ो कोई संशय है तो अपन डॉक्टर साहब से परामर्श ले लेना चाहिए कि आपने किसो चारो किन बेड़ा देना चाहिए।
2: सलाह लेने के मायने शर्म नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ, और अब डॉक्टर साहब क्या करे कि इलाज सुन बेहतर बचाव यहाँ करे है, तो इन रोग सु पशुओं ने बचाव सरु टीकाकरण है वो कितो कारगर है।
3: हरकू भाई, बात बिल्कुल सही है। खुरपका मुंहपका से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय नियमित टीकाकरण है। टीका पशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और रोग होने की संभावना, उसकी गंभीरता और झुंड में फैलाव को कम करता है। टीकाकरण के साथ साथ जैव सुरक्षा भी आवश्यक है, जैसे नए पशु को तुरंत झुंड में नहीं मिलाना, बाड़े की साफ सफाई रखना, पशुओं की आवाजाही नियंत्रित करना और बीमारी की तुरंत सूचना देना। एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए कि टीका बीमारी का उपचार नहीं है। यदि पशु पहले से बीमार है तो उसका उपचार पशु चिकित्सक की सलाह से ही करवाना चाहिए। टीकाकरण स्वस्थ और पात्र पशुओं को निर्धारित अभियान में लगवाना चाहिए।
2: और डॉक्टर साहब, इन सर्व देखो सर जागरूकता सर्व पशुपालक है जिसका आपने सवाल पूछे लिख लिखकर, एक पर्ची आ और आई है कि भाई डॉक्टर साहब ने पूछो कि भाई पशुओं ने साल भर में माए कितनी बार और कितनी उम्र रहा जिसका पशु है उन्होंने टीको लगावनो चाहिए, इन बाबत जानकारी दो कि भाई कोई जे कोई कह करे भाई 6 महीने रो हुए तो टीको लगाओ या साल भर रो हुए तो टीको लगाओ, इन बाबत जानकारी दो सर।
3: देखो बंशी भाई, वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार खुरपका मुंहपका के लिए पात्र पशुओं का टीकाकरण सामान्यतः हर 6 महीने के अंतराल पर कराया जाता है। अपने जानवर जैसे संवेदनशील पशुओं को स्थानीय पशुपालन विभाग के अभियान के अनुसार टीका अवश्य लगवाना चाहिए। गाय और भैंस के बछड़ों को प्राथमिक टीकाकरण सामान्यतः 4 से 5 महीने की आयु से कराया जाता है। पहली बार टीका लगे बछड़ों

0: लगभग एक महीने बाद बूस्टर खुराक देने का भी प्रावधान है। इसके बाद नियमित 6 मासिक टीकाकरण जरूरी है। हर पशुपालक को अपने पशु का टीकाकरण कार्ड और स्वास्थ्य रिकॉर्ड संभाल कर रखना चाहिए। गांव में विभागीय टीकाकरण अभियान आए तो कोई भी पात्र पशु छूटना नहीं चाहिए।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दी सा। और अब डॉक्टर साहब, चलते चलते बोला आप हमारा पशुपालक ने इन खुरपका मुंहपका रोग से बचाव स्वरूप कई संदेश दिया, भोड़ावन देना चाहो।
0: देखो हरकू भाई, मैं सभी पशुपालक भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूंगा कि खुरपका मुंहपका या FMD रोग को छिपाए नहीं। यदि पशु के मुंह से लार गिरे या मुंह या छालों खुरों में छाले दिखें, पशु लंगड़ाए या अचानक दूध कम हो जाए तो उसे तुरंत अलग कर देना चाहिए और अपने पास के पशु चिकित्सक को सूचना देनी चाहिए। बीमार पशु को बाजार, मेले, सामूहिक चारागाह या दूसरे गांव में नहीं भेजना चाहिए। उसके लिए अलग चारा, पानी, अलग साफ बर्तन रखें। साफ सफाई, सूखा बिछावन और नरम आहार, इससे पशु को राहत देना चाहिए। लेकिन बिना सलाह के कोई तेज रसायन या घरेलू लेप नहीं लगाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हर पात्र पशु को 6-6 महीने से टीका जरूर लगवाना चाहिए। समय पर पहचान, रोग की सूचना, सही देखभाल और नियमित टीकाकरण ही पशुधन तथा पशुपालक परिवार की आय की सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है।
1: बहुत ही बढ़िया संदेश दिया सा। देखो वंशी भाई, आज आप पशुपालक ने खुरपका मुंहपका रोग कहीं हुए, इरा लक्षण कहीं हुए और इरा रख रखाव किया कर सके, बचाव किया कर सके, टीकाकरण कद करवाना है और पशुधन जो उत्पादन है मीर पर कई प्रभाव पड़ा करे और मीर सु उत्पादन किया ले सका। इन पर बहुत ही मोकड़ी और अच्छी जानकारी आज अपने डॉक्टर साहब दी। मैं उम्मीद करूं कि महाराज जी का पशुपालक भी ने इन विषय पर अच्छी जानकारी मिली हो सी।
2: बिल्कुल, उम्मीद क्या हो तो पूरा भरोसा है।
1: हाँ
2: ये देखो सर, सामने देखो सर, कागज मैं लिख रहा था जी, डॉक्टर साहब बता रहा था भैया।
1: बिल्कुल सर, तो हमें देखो वक्त हो रही है तो भाई आपने बता दू, आज चौपाल में जानकारी देव सर पधारिया, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारिया डॉक्टर अमित कुमार पांडे और आज आप बातचीत करी खुरपका मुंहपका रोग पहचान और देखभाल विषय पर। और डॉक्टर साहब आप हमारे चौपाल में पधारिया, हमारे पशुपालक ने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, मेरे सारे मैं आपने देवा धन्यवाद और करा
2: राम राम सर।
0: राम राम सर।
3: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीनेरी बातिया। कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती पुनीत बिस्नोईरी, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशीरी। तो सा हमें महने आज्ञा दिराव सा घणान घणा राम राम सा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
5: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना काम किया बैठा हो।
6: काई कर दो हूँ बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दिया और बिलो जीसो रो बिको।
5: आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे भी बातिया। काकी सा, ई कार्यक्रम सुनन से मिलसी पशुपालन से जुड़ी होरी सबड़ी समस्या नो समाधान।
7: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे भी बातिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धीने दी बात्या।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी पांचवाड़ा का ये नहीं चैनल है। 6 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी ग्राम जी योजना विकसित गांव के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इससे शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों को और उपहारों की नई नीलामी प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अब सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम की शेष कहानी। ये गीत है जब तक है जा फिल्म से। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने, गायिका

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नरब दसा पड़ बेचा।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: भाई वाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला किस्म को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: कार्यक्रम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का।

0: जाए।
1: लीजिए सुनिए भूमि त्रिवेदी को फिल्म रामलीला में, संगीत संजय लीला बंसाली का बोल सिद्धार्थ गरिमा के।

0: ये नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
3: तराने नए पुराने
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
4: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के तेज विस्तार ने नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर खोले। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के आरक्षण की लॉटरी 23 और 24 सितंबर को निकाली जाएगी। जयपुर में आज से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन।

0: और राज्य के कई हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात, कल 6 संभागों में बारिश का अनुमान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। भारत पर दुनिया भर का भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार होने से नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि सेमीकंडक्टर डिजाइन के बाद अब दूसरे चरण में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। चिप डिजाइन के लिए देश में 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन को आज सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, साथ ही रक्तदान संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में रक्तदान शिविरों में बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने रक्तदान किया। इन शिविरों में स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की भी सक्रिय भागीदारी रही। शिविरों में नए रक्तदाताओं का पंजीकरण भी किया गया, लोगों को अपना ब्लड ग्रुप जानने के लिए प्रेरित किया गया और रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर की गई। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान और स्वच्छता पखवाड़े की भी आज से शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई होगी और श्रमदान के कार्यक्रम होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अजमेर मंडल पर स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया। अभियान के पहले दिन विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी 23 और 24 सितंबर को निकाली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी 23 सितंबर और सरपंच तथा वार्ड पंच की लॉटरी 24 सितंबर को निकाली जाएगी। आयोग की ओर से इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपखंड अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। वहीं जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका के अध्यक्षीय पदों के लिए लोक सूचना कल जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कल से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र 19 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच सोमवार को की जाएगी, वहीं मंगलवार दोपहर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव 26 सितंबर को होगा। गौरतलब है कि इन निकायों के कुछ वार्डो में पुनर्मतदान के कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। इससे पहले 305 नगरीय निकायों के प्रमुखों के लिए 872 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र भरे हैं। इस बीच भीलवाड़ा नगर निगम में जसवंत कंवर महापौर पद के लिए निर्विरोध चुनी गयी। जयपुर नगर निगम में पुनर्मतदान वाले चारों वार्डो के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे, वहीं जोधपुर नगर निगम की वार्ड नंबर 50 का परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान

0: स्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन आज से जयपुर में किया जा रहा है। पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान FHTR की ओर से हो रहे इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू पर्यटन और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: RTDM के छठे संस्करण का उद्घाटन समारोह जयपुर में आमेर किले पर आयोजित किया जा रहा है। इस साल मार्ट की थीम कहानियां, यात्राएं, मुस्कान रखी गई है। RTDM के सत्र BM बिरला कन्वेंशन सेंटर में होंगे। इस दौरान B2B बैठकें होंगी, साथ ही पर्यटन के नए अवसर तलाश करने और बदलते कारोबारी परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी। मार्ट में पर्यटन सेवाओं से जुड़े प्रतिनिधि खरीददारों से संवाद करेंगे। वहीं 19 सितंबर दोपहर बाद RTDM प्रदर्शनी आम लोगों के लिए भी खुली रहेगी। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और प्रभावी पुलिसिंग पर जोर दिया है। DGP आज बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सिंहगढ़ी पुलिस थाने का निरीक्षण किया और जिले की कानून व्यवस्था का फीडबैक लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राजस्थान पुलिस की छवि को देश में अव्वल बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस की ओर से नशा मुक्ति और साइबर क्राइम रोकथाम के लिए किए जा रहे कामों के बारे में भी बताया। श्री शर्मा ने कहा कि थानों में जनता के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
2: हमारी जनता को हम अधिक से अधिक बेहतर सुविधा दे सकें और हमारे थानों में इस तरह का आचरण हो, इस तरह का व्यवहार हो कि जनता को, हमारे हर नागरिक को, महिलाओं को, बच्चियों को थाना जाने में कोई हिचकिचाहट ना हो, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नए आपराधिक कानून आए उसके बाद से जो न्याय की गति में तेजी आनी चाहिए, जल्दी डिस्पोजल हो केस का, इन्वेस्टिगेशन से ट्रायल जल्दी शुरू हो, डिजिटल साक्ष्य का इस्तेमाल हो, उस पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है।
0: जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का 14वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इसे नशा मुक्त भारत अभियान के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए कृषि मौसम पोर्टल का शुभारंभ किया। उधर जोधपुर के एम्स का 15वां स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया गया। देश में रियल एस्टेट क्षेत्र की निगरानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा करता है। घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए रेरा अधिनियम लाया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में।
3: रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 रेरा एक ऐसा कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना है। ये अधिनियम 2016 में पारित हुआ और इसके कई प्रावधान इसी साल लागू किए गए। मई 2017 में इसे पूरी तरह प्रभावी किया गया। इसके तहत 500 वर्ग मीटर से ज्यादा और 8 से ज्यादा अपार्टमेंट वाले सभी नए और निर्माणाधीन व्यावसायिक और आवासीय प्रोजेक्ट्स का रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिल्डरों को तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर खरीदार को देना होता है। वहीं देरी होने पर खरीदार को ब्याज और मुआवजा देने का प्रावधान है। समाचार कक्ष से सालिहा गाजी।
0: राज्य के ऊपर आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके असर से कई हिस्सों में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के समाचार हैं। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में तथा राज्य के पश्चिमी हिस्से में भी कहीं कहीं हल्की बरसात हो रही है। कोटपूतली बहरोड में दोपहर बाद मौसम बदला और विराटनगर तथा पावटा में रुक रुक कर बरसात हो रही है। चूरू और आसपास के क्षेत्र और सवाईमाधोपुर में हल्की बरसात हुई। इसी इसी तरह हनुमानगढ़ में भी कई स्थानों पर हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राजधानी जयपुर में भी सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही और दोपहर बाद कुछ देर तेज बारिश हुई जो कई स्थानों पर अभी तक जारी है। कई इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियां कल भी जारी रह सकती हैं।

0: बीकानेर को छोड़कर बाकी सभी संभागों में कल बरसात दर्ज होने की संभावना है। इस बीच पश्चिमी राजस्थान में 19 सितंबर के आसपास बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। मॉनसून की विदाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज नई दिल्ली में खेला जाएगा। श्रृंखला का ये अंतिम मुकाबला शाम 7:30 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारत पहले 2 मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के तेज विस्तार ने नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर खोले। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के आरक्षण की लॉटरी 23 और 24 सितंबर को निकाली जाएगी। जयपुर में आज से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन। और राज्य के कई हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात, कल 6 संभागों में बारिश का अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। नगर निकाय चुनाव के तहत जिले में 11 निकायों में 345 पार्षद पदों पर मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इसके बाद मतगणना हुई और नतीजे सामने आए। जिले के 11 निकायों में 5-5 भाजपा और कांग्रेस के सबसे अधिक उम्मीदवार जीते, तो वहीं सादुलपुर नगर पालिका में 25 में से 22 निर्दलीय विजयी रहे। यहां भाजपा 2 और कांग्रेस 1 सीट पर ही सिमटकर रह गई। भाजपा को सबसे अधिक सीटें श्रीगंगानगर नगर परिषद में मिली। सूरतगढ़ के 45 वार्डों में भाजपा 16 और कांग्रेस को 13 सीट मिली, जबकि 13 निर्दलीय विजयी रहे। इसी प्रकार केसरी सिंहपुर में कांग्रेस को 13, भाजपा को 5 और 2 पर निर्दलीय विजयी रहे। श्रीकरणपुर में भाजपा को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य को 2 सीटें मिली। अनूपगढ़ में कांग्रेस को 16, भाजपा को 7 और अन्य को 12 मिली। रायसिंह नगर में भाजपा को 13, कांग्रेस को 11 और निर्दलीय तथा अन्य को 11 सीटें मिली। पद्मपुर में भाजपा को 13, कांग्रेस को 11 और 1 पर अन्य प्रत्याशी को विजय मिली। श्री विजयनगर में कांग्रेस को 11, भाजपा को 10 और 4 सीट निर्दलीय को मिली। पार्षद पद निर्वाचन के बाद सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इन पदों के लिए नाम वापसी की कल आखिरी तारीख है। मतदान 21 सितंबर को होगा और नतीजा उसी दिन मतगणना के बाद घोषित किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिले में जगह जगह गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गयी और उनकी पूजा अर्चना की गयी। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड स्थित मनोकामना सिद्धि गणेश मंदिर में 251 किलो के गज मोदक चढ़ाए गए। मंदिर में गणेश जी का दूध से अभिषेक किया गया। विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर वन शाखा और सीमा सुरक्षा बल की 48वीं बटालियन की ओर से पौधरोपण किया गया। बीएसएफ परिसर में मियावाकी पद्धति से 2100 फल और छायादार पौधे लगाए गए। सीमा चौकियों में खाका, कोठा, हिंदुमल कोट, कंचनपुरा, मदनलाल, रेणुका, क्यूहेड और सुंदरपुरा में करीब 3100 पौधे लगाए गए। जिले में राजस्थान तीरंदाजी संघ की 4 दिवसीय सब जूनियर और जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें करीब 950 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। सब जूनियर वर्ग के 500 खिलाड़ियों में से 192 का चयन राष्ट्रीय शिविर के लिए किया गया। शिविर के बाद राजस्थान की 24 खिलाड़ियों की टीम बनाई जाएगी। सब जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर और जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता जयपुर में होगी। रामदेवरा मेले के लिए श्रीगंगानगर से पोकरण के बीच मेला स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन 25 सितंबर तक चलेगी। ट्रेन में 15 सामान्य और 2 गार्ड कोच सहित कुल 17 कोच हैं। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए ये रेलगाड़ी चलाई जा रही है। जिले में इस बार बारिश सामान्य से कम रही है। कम बारिश के कारण सिंचाई पानी को लेकर भी चिंता बनी हुई है। पोंग और भाखड़ा बांधों में पिछले वर्ष की तुलना में पानी का भंडारण कम बताया गया है। कृषि विभाग ने रबी की फसल के तौर पर कम सिंचाई पानी में होने वाली फसलों की किस्मों की बुआई करने की सलाह दी है। गेहूं में WH 1142 और राज 3077, सरसों में RH

0: 1424, RH725 और RGN298 तथा चने में CNG2461 किस्म की बुवाई की सलाह दी गई है। श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन के लिए 174 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके लिए करीब 2,61,750 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। परियोजना के तहत कोच अनुरक्षण डिपो और अन्य दूसरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें 600-600 मीटर की दो वॉशिंग लाइन, 650-650 मीटर की तीन स्टेबलिंग लाइन और दो पिट लाइन बनाई जाएंगी। जिले में नशा तस्करी को रोकने के लिए नई रणनीति पर काम किया जाएगा। जिले के बॉर्डर के रास्तों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। नशे की सप्लाई चेन को जिले में आने से रोका जाएगा। इस संबंध में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तंत्र की जिला स्तरीय बैठक हुई। श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय वन महोत्सव और माँ यशोदा के नाम पर विशेष पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम रे तेजी विकसित रेवणु नवाचार निवेश और विकास रा नुआ मौका बनिया। प्रदेश में पंचायताना चुनाव री आरक्षण लॉटरी 23 और 24 सितंबर ने निकाली जावेला। जयपुर में आज राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट शुरू हुयो और प्रदेश रा कई हलका में गरज और तेज बायरा सागे बरसात काल 6 संभाग में बिखा फेवण रा आसार। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग सारू पसंदीदा ठोड़ बनवारी दिशा में हर संभव कोशिश कर रियो है। वे आज नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया रा उद्घाटन जलसा में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि भारत में बनी सेमीकंडक्टर चिप अब देश दुनिया में मिलन लगी है। वे कहो कि दुनिया में मौजूदा मुश्किल माहौल रे बावजूद भारत 7.8% री विकास दर हासिल की नी है। प्रधानमंत्री कहो कि भारत रो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी बदमाऊ नवाचार निवेश और विकास रा नुआ मौका बन रहा है।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इमोके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो कि सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन पाछे अब दूजा दौर में इन्हें बनावण माथे खास ध्यान दियो चावेला। चिप डिजाइन सारू देश में 200 स्टार्टअप और कंपनियां ने मदद देवनो तय करीचियो है। आखा देश में आज सेवा संकल्प अभियान शुरू हुयो। 17 अक्टूबर तक चालन वाला ई अभियान रा पहला दिन ने सेवा दिवस रा तौर मनायो जा रियो है। इन तेत न्यारी न्यारी ठोणा खून दान शिविर लगाईचिया और खून दान करणो जुड़ी जाग जगावन रे बारा में कार्यक्रम राखीचिया। इस आगे खून दान करन वाला नुआ लोगा ना नाम मंडी जिया और ब्लड ग्रुप री जानकारी हासिल करन री सीख दी री जी। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा री आज शुरुआत करी जी। 2 अक्टूबर संचालन वाला स्वच्छता ही सेवा अभियान रा तेत जनता री आवन जावन री ठोणा नी सफाई करन सागे श्रमदान रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे री ओर अजमेर मंडल में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाई चियो। इन पहला दिन रेलवे स्टेशना माथे साफ सफाई रखण री शपथ दिराई ची। प्रदेश में पंचायताना चुनाव सारू लॉटरी 23 और 24 सितंबर ने निकाली चावेला। राज्य निर्वाचन आयोग रे मुजब प्रधान और पंचायत समिति सदस्य सारू आरक्षण री लॉटरी 23 सितंबर ने और सरपंच और वार्ड पंच री लॉटरी 24 सितंबर ने निकाली जावेला। आयोग री ओर इबारा में जिला निर्वाचन अधिकारियां और उपखंड अधिकारियां ने हुक्म दे

0: किया गया है। बिजकानी जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका रा अध्यक्ष ओहदा माथा चुनाव सारू लोक सूचना काल जारी करी जावेला। राज्य निर्वाचन आयोग रा मुजब काल पर्चा दाखिल करन रो सिलसिलो शुरू है जावेला। नाम पाना 19 सितंबर तय दाखिल करया जा सकेला। पर्चा री जांच सोमवार ने करी जावेला जतके मंगलवार दोपहर तय नाम पाछा लिया जा सकेला। 25 सितंबर ने समारा 10 हूं दोपहर पाछा 2 बजे तय वोट पड़ेला। वोट पड़वारो काम पूरो हुए तय गिनती शुरू करती जावेला। उपाध्यक्ष ओहदा सारू 26 सितंबर ने वोट पड़ेला। ध्यान जोग है कि आम निकायां रा कुछ वार्डा माए उजू वोट पड़वारे कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ओहदा सारू चुनाव टाल दिया चिया है। इनु पहली 305 नगरीय निकायां रा प्रमुख ओहदा सारू 872 उम्मीदवार पर्चा भरिया। इबीचे भीलवाड़ा नगर निगम माए जसवंत कंवर बिना विरोध महापौर चुनी ची है। जयपुर नगर निगम माए पाछा वोट पड़बा वाला 4 ही वार्ड माए कांग्रेस रा उम्मीदवार जीत्या जदके जोधपुर नगर निगम रा वार्ड नंबर 50 माए भाजपा रा उम्मीदवार जीत हासिल की नी। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2026 आज जयपुर माए शुरू हो है। पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान FHTR रियो नु रख्या जा रहा ई आयोजन रो मकसद देशी सैर सपाटा और नेटवर्किंग ने बढ़ावो देवनो है। पेश है एक रपट। RTDM के 6th संस्करण का उद्घाटन समारोह जयपुर में आमेर किले पर आयोजित किया जा रहा है। इस साल मार्ट की थीम कहानियां यात्राएं मुस्कान रखी गई है। RTDM के सत्र BM बिरला कन्वेंशन सेंटर में होंगे। इस दौरान B2B बैठकें होंगी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा पुलिस रा कामकाज रा तरीका ने बेहतर बनावन और असरदार निगरानी माथे जोर तीनो है। DGP आज बालोतरा जिला रा दौरा रा तहत सिंधरी पुलिस थाना रो निरीक्षण कीनो और जिला माए कानून व्यवस्था रा हालात री जानकारी लीनी। ई पाछा खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का पुलिस महानिदेशक कहो के राजस्थान पुलिस ने देश माए अव्वल बनावन री कोशिश करी जा रही है। वह पुलिस कानून नशा मुक्ति और साइबर अपराधन रोकथाम सारू करया जा रहा काम बारा माई जानकारी दीनी। श्री शर्मा कहो के पुलिस थाना माए जनता ने बेहतर सुविधा मुहैया करावन री कोशिशा करी जा रही है।
1: हमारी जनता को हम अधिक से अधिक बेहतर सुविधा दे सके और हमारे थानों में इस तरह का आचरण हो, इस तरह का व्यवहार हो कि जनता को, हमारे हर नागरिक को, महिलाओं को, बच्चियों को थाना जाने में कोई हिचकिचाहट ना हो, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नए आपराधिक कानून आए उसके बाद से जो न्याय की गति में तेजी आनी चाहिए, जल्दी डिस्पोजल हो केस का, इन्वेस्टिगेशन से ट्रायल जल्दी शुरू हो, डिजिटल साक्ष्य का इस्तेमाल हो, उस पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है।
0: जयपुर के नए जोगनेर राष्ट्रीय कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय रो 14वीं स्थापना दिवस आज मनाई चियो। इन नशा मुक्त भारत अभियान रो तौर मनाई चियो। इस मौके राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नशा मुक्ति सारू भिड़ी कोशिशा माथे जोर तीनो। वह कहो के ओ एक सरकारी अभियान नहीं है बल्कि इन जनतारी भागीदारी में हासिल करी जा सके है। राज्यपाल विश्वविद्यालय कानून बनाई जा कृषि मौसम पोर्टल री शुरुआती कीनी। वह विश्वविद्यालय माए नू बनाई जो सभागारी जनता ने सौंपियो। शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों सारू 6 महीना रो खास ब्रिज कोर्स चलायो है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज नई दिल्ली माए इन री शुरुआत कीनी। इरे तहत BEd डिग्री धारी शिक्षकों ने बनाई लिखाई जुड़िया नुआ तौर तरीका ने सिखावण दी जावेला। देश माए रियल एस्टेट हलकारा कामकाज माथे निगरानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा कानून करी जावे है। घर खरीदवा वाला रा हिता ने हिफाजत करण सारू रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा बनाई ची है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 रेरा एक ऐसा कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना

0: साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना है। ये अधिनियम 2016 में पारित हुआ और इसके कई प्रावधान इसी साल लागू किए गए। मई 2017 में इसे पूरी तरह प्रभावी किया गया। इसके तहत 500 वर्ग मीटर से ज्यादा और 8 से ज्यादा अपार्टमेंट वाले सभी नए और निर्माणाधीन व्यावसायिक और आवासीय प्रोजेक्ट्स का रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिल्डरों को तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर खरीदार को देना होता है। वहीं देरी होने पर खरीदार को ब्याज और मुआवजा देने का प्रावधान है। समाचार कक्ष से सालिहा गाजी।
1: मौसम राज्य रे ऊपर बनिया नुआ मौसमी तंत्र कई हल्का माए गरज चमक कर तेज हवा सागर बिरखरा समाचार है। कोटपुतली बहरोड़ जिला रा विराटनगर हरपावटा माए दोपहर पाछे शुरू हुई बिरखा रुक रुक कर चलती रही। चूरू हर आरएसआर रा हल्का और सवाई माधोपुर माए हल्की बरसात हुई। हनुमानगढ़ माए कई थोड़ा हुई बिरखाओं पारो उतरियो है जिन्हों गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। राजधानी जयपुर माए दोपहर पाछे थोड़ी देर ताई तेज बारिश हुई। कई हल्का माए छांटो छिड़को चल रियो है। मौसम विभाग रे मुजब काली बीकानेर रे अलावा बाकी संभागा माए गरज सागे बरसात रा आसार है। इबीचे प्रदेश रा आतुणी हल्का माए 19 सितंबर चौमासारी बिरखा लगभग बंद हुए जावन रा आसार है। राजभाषा हिंदी पखवाड़ा रा तहत कोटा माए आज केंद्रीय संचार ब्यूरो रा क्षेत्रीय कार्यालय रे ओर संगोष्ठी और निबंध रिहोड़ रखी जी। ई मौके सीबीसी रा सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा कहो कि हिंदी भाषा देश री सांस्कृतिक ओलखाण वे बनसा गई भावनात्मक एकारो जरियो है। आकाशवाणी जयपुर में आई हिंदी पखवाड़ा रा तहत आशुभाषण वाद विवाद और निबंध समेत न्यारी न्यारी होड़ा रखी जी। धौलपुर जिला रा तीर्थराज मचकुंड माए आज देव छठ मेलो भर रियो है। कौमी एकारा प्रतीक ई मेला माए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत दूजा राज्यों में मोटी तादाद माए जात्रु मचकुंड माए पवित्र स्नान सारू पूक रिया है। अलवर रा भरथरी धाम माए आज तीन दिन रो मेलो शुरू हुयो। ई माए आखा देश माया नाथ संप्रदाय रा साधु संत भाग ले रिया है। बाड़मेर जिला रा जसनाथ धाम लील सरमाई काल बाद वो मेलो भरेला इनु पहली आज राती जगो भरेला। भारत और अफगानिस्तान री पुरुष क्रिकेट टीम बीच तीजो T20 मुकाबलो आज नई दिल्ली में भरेला। तीन मैचों री सीरीज रो ओ आखिरी मुकाबलो अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू भरेला। ध्यान जो है कि भारत इन सीरीज रा पहला दो मैच जीतर सीरीज जीत क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर बीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला इन कार्यक्रम री 138वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 मत है 25 सितंबर ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो देश माए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम रे तेजी विकसित भेवन नवाचार निवेश और विकास रा नुआ मौका बनिया। प्रदेश माए पंचायताना चुनाव री आरक्षण लॉटरी 23 और 24 सितंबर ने निकाली जावेला। जयपुर माए आज राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट शुरू हुयो और प्रदेश के हल्का माए गरज और तेज बायरा सागे बरसात काल 6 संभागा माए बिरखा भेवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: कोई डर नहीं।
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगड़ा श्रोता मान है आशा धाबाई का घना घना राम राम। और अनीता जी आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
8: राम राम आशा जी, आपने भी घना घना राम राम। और किसान वाणी सुनवा वाला सभी किसान बहन है और श्रोताओं ने अनीता की घनी घनी राम राम सा।
7: और रामा श्यामा के साथ ही देखो आज के किसान वाणी कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आप यही करेला कि कार्यक्रम छे अपना किसान भाइयों को, काश्तकार भाइयों को, और आपनो उद्देश्य यही छे कि ई कार्यक्रम में मिली जानकारी ने लेर आपका जी का किसान बहन भाई छे वे टाइम सारू आपका खेता में सगड़ा काम कर लेवे, ताकि वहां कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होवे और वहां को जो उत्पादन छे वो भी चोखो होवे, वहां की जो फसलां छे वहां भी पूरी वे सुरक्षित ले सके। अब आर की बात करा तो ई टाइम सबसे ज्यादा जोर छे कि आपके खेता में जो फसलां उगेड़ी छे वहां में आपने संरक्षण काम पूरो पूरो कर लेनी छे संरक्षण को, ताकि सुरक्षित उत्पादन लियो जा सके।
8: जी इसके साथ ही जो किसान भाई खरीफ की अगेती फसल ले चुके हैं जहाँ का खेत खाली हो बड़ा चाहे वह किसान भाई रबी की अगेती फसल के लिए आपकी खेत की तैयारी कर सके चाहे और उनसे जुड़ेड़ा खेत की तैयारी, बीज की तैयारी या सभी के लिए पहले से ही काम कर वो शुरू कर सके चाहे।
7: बिल्कुल सा काश्तकार में जी आप जानो ही छो भाई पानी आबा से पहले आपने पाड़ बांधनी नहीं पड़े छे, वही आबाला टाइम में अब आप कौन सी फसल आपके खेता में लेबो चाहो छो, आपका क्षेत्र और हल्का में कसो किस्मा छे जो चोखो उत्पादन देवे छे, जलवायु और तापमान का हिसाब से वहां को आप पतो कर लियो सा, वहां की कौन सी किस्मा छे जो आसानी से आपने उपलब्ध हो जावेली, कितना पानी की वहां में जरूरत होवेली, उपलब्ध पानी की मात्रा आपके पास पूरी छे या कौन है, की प्रकार से आप वहां पोषण पूरा दे सको छो, या सब चीजा ने ध्यान में रखता हुए आप ब्लू प्रिंट तैयार कर लो कि आबाला टाइम में आपने कौन सी फसल आपने खेत में लेनी छे, कायों की उन्नत किस्मा छे और की तरह से आप वहां फसला में सुरक्षित उत्पादन ले सको छो, क्योंकि कोई भी काम ने शुरू करवा से उनकी योजना बना वो पहली तैयार छे, सिंचाई की पूरी व्यवस्था छे या कौन है, कोई जो यंत्र आपने खेती बाड़ी के लिए चाहिए वे आपके पास छे या कौन है, ये सब चीज को इंतजाम आपने कर रखनी छे।
8: बिल्कुल सा। और देखो सा अगर समय से पहले ही आप सारी तैयारियां कर लिया तो बाद में आपनो टाइम भी बचे छे और अगर देखो तसली से घोड़ा काम छे ना वो चोखो ही नतीजो आपने देवे छे। तो देखो सा जी हाँ फसल को चुनाव कर वो सिंचाई की उपलब्धता छे कौन है और आपने जो आपन जी जगह रहना चाहे उन मौसम के हिसाब से उन जगह के हिसाब से आपने सब चीजा ने ध्यान में रखनी चाहिए। और जी हाँ की आप बताया कि भाई प्रमाणित बीज की व्यवस्था भी आपने अभी सुनी कर लेनी चाहिए। बुआई की टाइम जल्दबाजी में कोई भी उपलब्ध बीज आपने खरीद और न बोनो चाहिए बल्कि उपयुक्त किस्मा को चयन करना चाहिए जिससे कि आपने मेहनत के अनुसार चोखो मुनाफो भी मिले।
7: और सबसे मोटी बात यही कि समय सारू समय को प्रबंधन कर आप आपको काम करो। दूसरी बात को यह ध्यान रखो कि टाइम टाइम पर जार आपका खेत में निरीक्षण आपने जरूर करना चाहिए, वो चाहे आवाड़ी वाले टाइम हो या अबार को जो टाइम चाहे। अबार अनीता जी आप देख ही रह जा कई जगह बरसात हुई चाहे, कई जगह कौन हुई एकदम से कम होगी, कई जगह बहुत कम हुई चाहे, तो ऐसी स्थिति में कीड़ा और बीमारी फसलों में ज्यादा लगे चाहे, वहां से ही सुरक्षित रहकर आप चोखो उत्पादन ले सका चा। इतना खेत में संरक्षण की पूरी पूरी बात पे गाडो गाडो ध्यान दे वो संरक्षण करबो, यो सबसे महती काम से अबार का टाइम को।
8: और यो सब जदि होलो जद आप समय के हिसाब से अपना खेत ना बीच बीच में संभालता रहवा देखता रहवा, क्योंकि जब समय से पहले

0: कोई भी चीज को पतो लाग जावलो कीट बीमारियों को रोग को जदी तो आप आवा की रोकथाम सही समय पर कर पावला।
1: और जब भी कीट और बीमारी की पहचान हो जावे विशेषज्ञ जो बतावे उही हिसाब से छिड़काव बुरकाव करनो चाहे न कम और न बत्ती क्योंकि दोनों ही स्थिति नुकसानदायक रहवे चाहे। और जब बात ध्यान राखवा के आवे चाहे तो आपने भी नेताजी ध्यान यू राखनो चाहे कि अब स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ पधार चुका चाहे रेणु धामाणी जी विषय विशेषज्ञ ने ले आया चाहे तो याका द्वारा जानकारी ने सभी काश्तकार भाया और किसान बहन भाया के ताई पूछावा।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज अपने स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर रामस्वरूप मीणा जी। तो डॉक्टर रामस्वरूप मीणा जी को नमस्कार।
3: नमस्ते किसान भाइयों बहनों।
2: डॉक्टर रामस्वरूप मीणा जी प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर सु पधारया है और आज अपना बातचीत का विषय है नागौरी पान मेथी की वैज्ञानिक खेती। डॉक्टर साहब आप माने बताओ कि नागौरी पान मेथी क्या है और इसकी खेती का क्या महत्व है।
3: किसान भाई और बहनों नमस्कार। जैसे आपसे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि नागौर पान मेथी क्या है और इसका क्या महत्व है। बड़ा ही अच्छा सवाल है। जैसे हमारे राजस्थान में नागौर जिले में नागौर पानी मेथी का उत्पादन होता है और ये बड़ी ही हमारे कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी फसल है जिसको लो वैल्यू हाई वैल्यू क्रॉप्स कहते हैं। इसका मतलब है कि छोटा सा उत्पाद आप मार्केट में ले जाओगे तो बड़ा सा पैसे ज्यादा लेके आओगे और साथ साथ में किसान इसका यदि एरिया की बात करें तो 7000 हेक्टेयर के आसपास उगाया जा रहा है। इसका उत्पादन करीबन करीबन 34000 के आसपास मेट्रिक टन उत्पन्न होता है और इसे किसानों को आय जो उत्पन्न होती है वो 460 करोड़ के आसपास आती है तो अच्छा खासा अमाउंट है। और किसानों की मेहनत और किसानों की जलवायु और मृदा का यही सहयोग है कि नागौर पानी मेथी में नागौर जो मुंडिया के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें खुशबू अच्छी होती है स्वाद अच्छा होता है और साथ साथ खुशबू के साथ साथ इसमें जो खुशबू पाई जाती है एक अव्यय पाया जाता है इसका नाम है स्टोलन की मात्रा यहाँ इस एरिया में ज्यादा पाई जाती है। जिस एरिया में ज्यादा पाई जाएगी उसको जीआई टैग के नाम से भी हम इसमें फाइल कर रखा है और बहुत जल्दी किसान भाइयों को ये जीआई टैग मिल जाएगा। जीआई टैग मिलने के बाद में इसको सब पूरे विश्व इसको नागौर पानी मेथी के नाम से जाना जाएगा। इसमें कोई आदमी इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता इसका नकली नहीं बेच सकता और किसानों को ज्यादा ज्यादा डिमांड उसमें मार्केट में बढ़ेगी तो आने वाले टाइम में किसानों की आमदनी अच्छी होगी। बेशर्त है कि किसान भाई अपने जिस प्रकार मन लगाकर अपनी खेती कर रहे हैं उसमें और भी वैज्ञानिक खेती को अपना कर इसको और अच्छी खासी ऊंचाई पर ले जाए ताकि नागौरी पानी मेथी का नागौर का भी नाम हो उसका उत्पादन का भी नाम हो और खाने वाले को सभी लाभ मिले।
2: जी डॉक्टर साहब थे किसान भाइया ने बताया कि नागौर पान मेथी क्या है। अब किसान भाइयों को ये बताओ कि जलवायु और भूमि का चयन कैसे करें हम।
3: हाँ तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है किसान भाई बहनों। जैसे आप जानते हो कि कोई भी फसल करते हैं तो उसकी जलवायु और मृदा पर ही निर्भर रहता है। वहाँ की जलवायु कैसी है वहाँ की जमीन कैसी है। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि नागौर में ही इस प्रकार की जो नागौर पानी मेथी में सुगंध आती है वो नागौर में ही क्यों आती है तो आपका उत्तर यहाँ मिल जाता है कि नागौर की जो जलवायु है वो अर्धशुष्क जलवायु है ठंडी रहती है और यहाँ की जो तापक्रम रहता है एकदम बढ़ता भी नहीं है एकदम घटता भी नहीं है। यहाँ की क्लाइमेट जो है कूल टाइप की है इसलिए यहाँ की जो मृदा है आपको दोमट मिट्टी में इसको उगा सकते हैं भूली दोमट में उगा सकते हैं और खास इसमें जो खेत की तैयारी करेंगे उसमें हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि मिट्टी पहले सबसे पहले हमको ग्रीष्मकालीन जुताई करनी पड़ेगी। जुताई करने के बाद में मृदा में जो कीड़े और कीड़ों के अंडे होते हैं वो गर्मी में सूख जाते हैं। सूख जाने के बाद में वो आने वाली फसल पर उसका प्रकोप कम होता है और प्रकोप जब कम होता है तो हमको कीटनाशी और दूसरे जो रसायन देने पड़ते हैं। रसायन नहीं देंगे तो हमारी नागौरी पानी मेथी में अच्छी सुगंध आएगी। नागौरी पानी मेथी में आप रसायन डालते हैं तो एक तो हमको हमारा जलवायु को नुकसान पहुंचाता है और खाने वाले के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ साथ में उसकी उत्पाद की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो किसान भाइयों आज की तारीख में आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार भी इस पर जोर दे रही है कि कार्बनिक खेती और नेचुरल खेती पर आना चाहिए ताकि आपको कम से कम रसायन का प्रयोग करें और आपको एक समन्वित एकीकृत पोषक प्रबंधन और एकीकृत कीट प्रबंधन करना चाहिए ताकि आपको खेत की जुताई से लेकर जीत के बारे में आपको बायोएजेंट से करना चाहिए ताकि आपको लास्ट में कम से कम रसायन का उपयोग करना पड़े।
2: जी सर डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी। इसके अलावा डॉक्टर साहब किसान भाई बहना ने आप भी बताओ कि खेत की तैयारी कैसे करें और नागौरी पान मेथी की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं।
3: तो किसान भाइयों और बहनों अब क्वेश्चन आता है कि खेत की कैसे तैयारी करें और किस्में हमारे पास में कौन कौन हो जाए। तो सबसे पहले अपन खेत की तरफ चलते हैं। खेत अपन को सबसे

0: पहले ग्रीष्म काल में गहरी जुताई कर देनी चाहिए।
1: जी
0: जुताई करने के बाद दो तीन हल पलटने वाले से करनी चाहिए, फिर उसको आपको लोन मोड़ से काटना पड़ेगा। तो आपको या तो हो सके तो वैज्ञानिक विधि में आप लेजर लेवर से आपके खेत को बिल्कुल बराबर कर लीजिए, ताकि आपको लोन मोड़ चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए और वो बराबर चले। और जब बराबर चलेगा तो आपकी जो मृदा के कण आएंगे, मृदा के ढेले उसमें आ जाते हैं कटने के टाइम पे, वो कम आएंगे और आपका गुणवत्ता अच्छी रहेगी। और जब आप मार्केट में बेचोगे तो उसमें अभी मिट्टी कम होगी तो आपको बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। इसलिए आपको खेत पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको जीरो लेवल से आप लेवल करा देते हो तो आपका बिल्कुल लोन मोड चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी प्रकार का आप स्प्रिंकलर भी आप देते हो तो पानी भी कहीं भरेगा नहीं, बराबर पानी लगेगा, बराबर कटाई होगी। तो बराबर पानी और बराबर कटाई जब लगेगी तो पौधे को सभी पौधे बराबर के होंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो खेत की तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में आप खेत में आपको गोबर की खाद जरूर मिलानी है। गोबर की खाद के बिना भी आप कसूरी मेथी कर सकते हो, पर आपकी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता आपके गोबर की खाद के बिना नहीं आएगी। एक हेक्टेयर में कम से कम 20 से 30 टन गोबर की खाद डालनी चाहिए आपको, ताकि आपको और ये आखिरी जुताई में गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। साथ साथ में आपको सभी खेत के आसपास में कोई भी गंदगी या झाड़ झंकर उनको काट के साफ कर लेना चाहिए, ताकि उसमें कोई एफिड या दूसरे तरह के कीड़े नहीं लगे। अब बात आती है किसान भाई बहनों की किस्में का चयन कैसे करें। किस्मों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। किस्मों का चयन आपको इस प्रकार करना चाहिए कि किस्म हमारे पास में 3 तरह की किस्में हैं अभी, जैसे पूसा डॉर्फ, पूसा अर्ली के नाम से है। और उसके बाद में आपको एक अभी किसानों ने कम्युनिटी वैरायटी का रजिस्ट्रेशन कराया PPNFRA में, वो भी आप वैरायटी ले सकते हो। एक लोकल के नाम से भी बिकती है जिसको कसिनगढ़ी कहते हैं, नागौरी बांध मेथी कहते हैं, उसका भी आप बीज ले सकते हो। और इसमें इसी कार्य के अनुसंधान कार्य में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र भी लगा हुआ है, हम भी एक वैरायटी बहुत जल्दी आपको देने वाले हैं। वो अभी टेस्टिंग हो रही है, लास्ट ईयर मुंडा और नागौर के क्षेत्र को टेस्ट किया था और बहुत जल्दी आपको एक किस्म और देंगे। तो इन मोटी मोटी किस्म आप 3-4 किस्म है, इनको आप ले सकते हैं। किस्म का लेते टाइम आप ध्यान रखें कि आप सर्टिफाइड सीडी लें, उसमें किसी दूसरी तरह का किसी का बीज नहीं मिला होना चाहिए, और किसी सरकारी उससे लें, ताकि आपकी शुद्ध आपकी बीज की शुद्धता बनी रहे। और शुद्ध जब बीज आपके पास में शुद्ध रहेगा तो आपको सभी आवश्यक क्रियाएं अच्छी तरह करनी पड़ेगी और आपको आप बहुत ज्यादा 50 या 60% काम, यदि अच्छा बीज मिल जाता था वो आपका काम हो जाता है।
1: जी सर, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, बताया कि नागौरी पान मेथी की उन्नत किस्में क्या क्या होती हैं। अब इसी के साथ किसान भाई बहनों को ये भी बताएं कि बीज उपचार और विधियां कौन कौन सी है नागौरी पान मेथी की।
0: किसान भाइयों और बहनों, जैसे हमारे पास में अच्छी क्वालिटी का बीज आएगा, बड़ा बीज आएगा, फिर आता है कि बीज का उपचार कैसे करें। जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे बच्चों का अपन टीका लगवाते हैं, वैसे ही उसी प्रकार हमारे बीज, किसी भी फसल का बीज हो, उसको उपचार करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले जब वो बड़ा होता है या हमारा बच्चा बड़ा होता है उसके टाइम पे किसी प्रकार की बीमारी लगे, उसी तर्ज पे हम भी इसका बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार हमें यहाँ पर आपको ट्राइकोडर्मा विरेडी या राइजोबियम से करना चाहिए। और इसमें भी एक फॉर्मूला होता है कि जिसको FR कहते हैं, पहले फंजीसाइड लेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड लेंगे, फिर राइजोबियम लेंगे। आप पहले थायराम से करें, थायराम के बाद में इंसेक्टिसाइड कार्बोफुरान डाल दें, और कार्बोफुरान के बाद में आपको राइजोबियम या विरेडी से उसका उपचार करें, ताकि आपका बीज का उपचार इनिशियल अवस्था में हो गया तो आपकी बीमारियां कम लगेगी और आपको आगे जाने वाली जो रसायन का आप जो यूज करेंगे वो नहीं करेंगे। और रसायन का यूज नहीं करेंगे तो हमारी जो टांगोर पानी मेथी की पान के लिए जानी जाती है, तो वो उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, और अच्छी जब गुणवत्ता अच्छी होगी तो आपको बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। अब बात आती है कि इसकी बोने की विधि कौन कौन सी। किसान भाई, इसको बोने की दो विधियां होती है, एक तो छिटको आप अच्छी तरह आप जानते हो, आप यूज करते हो, एक दूसरी विधि है जिसको कहते हैं कतार में बोना। कतार में आप लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा बीज आए। और एक हेक्टेयर में करीबन 80 से 90 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। साथ साथ में जैसे कई लोग किसान 120-140 किलो भी बांधते हैं, ज्यादा बांधने से किसानों का एक अपनी वो है, अदरवाइज ज्यादा बांधने से ज्यादा उसका कई बार जर्मिनेशन भी नहीं होता और ऊपरी पड़ा रहता बीज। तो बीज की मात्रा केवल आपको 70 से 80 किलो लेनी है और बीज की क्वालिटी अच्छी लेनी है। जैसे आप इसकी बीमारियों की बात करें तो आपका रूट रोट में आप ट्राइकोवेरम विरेडी के डाल सकते हो, मजला में आपको बेसिलियाना डीएनए डाल सकते हो, माइकोराइजर डाल सकते हो। ये सभी बायो एजेंट्स है, बायो एजेंट के साथ में आप मिट्टी में मिलाओगे, यदि इसको आप जब उसमें बीमारी आती है उसके पहले भी आप अभी खेत की तैयारी के टाइम भी मिला देते तो आपके बीमारियां कम से कम आएगी। बीमारी और कीट का प्रबंधन आपको इस प्रकार करना है ताकि सबसे पहले हमारी

0: फिजिकल एक्टिविटी कल्चर एक्टिविटी जो जिसके बायोएजेंट को डालना है, और जब बायोएजेंट से कंट्रोल नहीं आता तो फिर हमको रसायन पर जाना है ताकि हमारा गुणवत्ता खराब नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे उपज मिले। और उसमें किसी प्रकार का वीडीसाइड, वीडीहाइड को हम कभी भी वीडीसाइड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वीडीसाइड हमारी क्रॉप को तो मारता ही मारता है, हमारी पत्तियों में उसका रेजिड्यूल इफेक्ट आ जाता है। तो जब हम बाहर भेजते हैं तो हमारा जो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है कई बार। तो इसलिए किसान भाई विशेष ध्यान रखें कि आप खरपतवार जब निकालोगे तो खरपतवार हमारे आदमियों से ही निकालें, हाथ से चुन के निकालें, ताकि आपको कम से कम रसायनों का प्रयोग करना पड़े।
1: जी सर, डॉक्टर साहब ने बताया कि नागौरी पान मेथी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से कीट लग जाते हैं और उनका उपचार हम कैसे करें, तो किसान भाइयों के लिए बड़ी ही उपयोगी जानकारी है। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही किसान भाई बहनों को ये भी बताएं कि नागौरी पान मेथी की जो पत्तियां होती है उनको कैसे सुखाएं।
0: किसान भाई और बहनों, बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए। देखो, अपन जब पत्तियों को सुखाते हैं तो पत्तियों को आप लोग जमीन के ऊपर लीप के या गोबर की से लीप के सुखा लेते हैं, या उसको थोड़ा पानी डाल के हार्ड करके, तो उसमें मिट्टी के कण मिलते हैं। जब मिट्टी के कण मिलते हैं या गोबर के मिलते हैं, उसमें कई तरह के फंगस होते हैं जो हमारे पत्ती को टच करते ही पत्तियों में आ जाते हैं। कुछ दिखाई नहीं देते, पर जिसको माइक्रोस्कोप से जी एनालिसिस करते हैं, फंगस आ जाने की वजह से हमारा गुणवत्ता उसमें आप हमारी कमी हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पक्का फर्श होना चाहिए। और राष्ट्रीय बीज मिसाल अनुसंधान केंद्र ने इसे बहुत विशेष काम किया है। इसमें हमने एक टनल का, सोलर टनल का उपयोग किया, जिसमें आपको नीचे से पॉलिथीन बिछा देते हैं और ऊपर जीआई पाइप से अर्धचंद्राकार उसमें उसको एक वॉकिंग टनल बना लेते हैं, जिसमें ट्रैक्टर को आप ले जा सकते हो। ट्रैक्टर में जब उसकी कटाई होती है तो ट्रैक्टर में आप उसको पत्तियों को आराम से पीछे पीछे फैला भी सकते हो। तो आपकी एक तो कम लागत होगी, कम मजदूर लगेंगे और बराबर आपकी फसल सूखेगी। सूखने के बाद में ऐसे तो आपको 6-7 दिन लग जाते हैं, कई कबार मौसम खराब होता है तो और भी ज्यादा लग जाता है। उसमें आप यदि पॉलिथीन में सुखाते हो और यदि आपका धूप अच्छा होता है और 40 से 50 सेंटीग्रेड आपका तापक्रम है, तो आपको 2 से 3 दिन में सूख जाएगी। और सूखने के साथ साथ में फायदा उसका यह होगा कि उसमें किसी प्रकार का नीचे न तो जमीन से टच होगी, न किसी गोबर के टच में आएगी, और गोबर जमीन के टच में नहीं आएगी तो उनमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होगा। और जब वो आप मार्केट में ले जाओगे तो उसका कलर भी एकदम ग्रीन आएगा, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरण आती है जो हमारे प्रकाश में, वो आपकी उस पर पॉलिथीन को उसको रोक लेगी, तो उसमें केवल एंड केवल आपकी जो रेज की जो हीट है वही जाएगी। तो ये इसका कलर भी अच्छा होगा, गुणवत्ता भी अच्छी होगी। और नागौरी पान मेथी तो हमारी पत्तियों की सुगंध के लिए ही जानी जाती है, इसलिए आपको ये जरूर अपनाएं। ये कोई ज्यादा हाई नहीं है, कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ती होती है और इसको आप आराम से अपना सकते हो। और इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र में भी हमने लगा रखी है, आप वहाँ आके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। परंतु पत्तियों को सुखाना बहुत ही एक अहम क्रिया है, क्योंकि नागौरी पानी में थी पत्तियों के लिए जानी है, और पत्तियां हम ढंग से नहीं सुखा पाते हैं, या उसमें किस प्रकार का मच्छर रहता है या किसी प्रकार का कंटामिनेशन आ जाता है, तो हमारी गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
1: जी सर, डॉक्टर साहब ने अपने को बताया, किसान भाई बहनों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पत्तियों को कैसे सुखाएं, क्योंकि पत्तियों को सुखाना किसान भाई बहनों के लिए नागौरी पान मेथी की खेती का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, ऐसा डॉक्टर साहब ने अपने को बताया। और किसान भाई बहनों को ये भी बताएं डॉक्टर साहब कि नागौरी मेथी में जीआई टैग का क्या महत्व है।
0: हाँ, ये किसान भाई और बहनों बहुत आपके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि जीआई टैग नागौरी मेथी को मिलने वाला है, इसका फाइलिंग हो गया है। जब जीआई टैग, आपने जैसे बीकानेर भुजिया का नाम सुना होगा, इसी प्रकार आपकी पूरे संसार में जीआई टैग मिलने के बाद में आपकी कसूरी मेथी को जीआई टैग मिल जाएगा, और उसमें कोई भी आदमी उसको नकली नहीं बेच सकता, आपके बिना इजाजत के नहीं बेच सकता। इसलिए आपको जीआई का ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप बात करें आजकल यूरोपियन कंट्रीज में या गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका में, जिसको जीआई टैग मिला होता है उस फसल को ज्यादा लेते हैं और उस पर किसी प्रकार का संचय नहीं किया जाता, और इसलिए किसान की मांग बढ़ती है दूसरे देशों में, और बढ़ने के साथ साथ में किसान को अच्छे दाम मिलते हैं। तो दाम मिलेंगे तो आपकी उपज अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी, आपकी आमदनी अच्छी होगी तो राज्य की आमदनी अच्छी होगी, और अल्टीमेटली हमारे देश की आमदनी अच्छी होगी। तो जीआई टैग बहुत ही अच्छी है, जिसके बाद में पीपीएनएफआरए में भी नागौरी मेथी को कम्युनिटी अवार्ड, फार्मर कम्युनिटी अवार्डिक वैरायटी के नाम पर रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और ये पहले घास के नाम से बिकती थी, पर अब इसको स्पाइस बोर्ड ने शेड्यूल लिस्ट में लगा लिया है और इसको स्पाइस मसाले की फसल में इसको गिनती करने लग गए। तो ये आपके लिए और भी विषय है कि आपके बीजे मसाला की जो नागौरी पान मेथी है उसको एक स्पाइस का टैग मिल गया है, जीआई टैग मिलने

0: रहा है और पीपीएनएफआरए में ये एक पेटेंट वैरायटी के नाम पे रजिस्टर्ड भी हो गई है। आपको बस करना है कि आपकी मेहनत, आपकी जलवायु और मृदा को बनाए रखना है और उच्च गुणवत्ता करते हुए हमारे नागौरी पानी मेथी को यही नहीं हमारे विश्व के मंच पर ज्यादा से ज्यादा ले जाना है और आपका नाम रोशन होगा, आपकी नागौरी पानी का नाम रोशन होगा और इसके साथ साथ हमारे भारतवर्ष का भी नाम रोशन होगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।
1: जी डॉक्टर रामस्वरूप जी मीणा, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय डीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तवीची अजमेर से आप पधारे हैं और हमारे किसान भाई बहनों को नागौरी पान मेथी की वैज्ञानिक खेती के बारे में आपने बहुत बहुत जानकारी दी, तो इसके लिए मैं रामस्वरूप जी मीणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: सलाम बोलना।
2: पक्षियों से तो हम खेत

0: बीजू का
1: सलाह बोल रहा।
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जल्दी खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: रेणु जी, आपको भी घनो घनो धन्यवाद। जो डॉक्टर रामस्वरूप मीणा जी से नागोरी पान मेथी की वैज्ञानिक खेती का बारे में इतनी चौकी तरीका से जानकारी दिलवाया सा।
4: अरे देखो सर, जानकारी चौकी चे तो अनीता जी आपको और मारो भी यो काम चे कि आप विषय विशेषज्ञ ने, रेणु जी ने और कार्यक्रम सुन वाला आपका जो किसान बहन भाई है वाने सबने ही यो एक लोकगीत भी सुना देवा। तो आओ सा, सगला ही मिलर सुना।

0: अनीता जी जी गीत तो देखो आप बहुत ही बढ़िया सुनाया और उम्मीद छे कि कार्यक्रम सुन वाला सगलाई श्रोतावान ने पसंद भी आयो ही होलो। और अब आपनो कार्यक्रम समाप्ति की ओर छे तो जाबा से पहली काश्तकार भाई ने यही कहबो चावला सा कि मौसम विभाग के द्वारा जो भी मौसम की चेतावनी जारी करी जावे छे उन्हें ध्यान में रखता हुआ आपका खेती बाड़ी का सारा काम सम्पन्न करो सा ताकि कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आप न हो। और अब स्टूडियो की घड़ी इशारों कर रही है कि आज को जी को कार्यक्रम छे किसान वाणी उनको टाइम पूरा होते जा रहे छे तो श्रोतावा दिराओ आज्ञा आशाधा भाई ने
1: और अनिता ने चालार करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। और लीजिए अब सुनिए खेती बाड़ी कार्यक्रम।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगड़ा श्रोताओं ने आशाधा भाई का घना घना राम राम और अनीता जी आपने भी हमारा घना घना राम राम सा।
3: आशा जी आपने भी घना घना राम राम और खेतीबाड़ी सुनवाड़ा सभी किसान भाई ने अनीता की घनी घनी राम राम सा।
2: रामाशा

0: આજે ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં જ્યાં કે ગુરુવાર છે તો ગુરુવાર કે દિન ફોન ઇન કાર્યક્રમ હોય છે આપણો, જેમાં આપણા જે કાશ્તકાર ભાઈ છે અને ખેતીવાડી સે સંબંધિત જો ભી સમસ્યા છે, જો ભી વાંકા સવાલ છે, વે સ્ટુડિયોમાં આપણા જો વિષય વિશેષજ્ઞ પધારે છે, વાસે સ્વયં વાત કર માં સમસ્યામાં કો સમાધાન પા શકે છે. આજ ભી આખી સમસ્યામાં કો સમાધાન કરવા કે લીએ ઓર યાકા સવાલ કો જવાબ દેવા કે લીએ સ્ટુડિયોમાં વિષય વિશેષજ્ઞ પધાર ચુક્યા છે. સબસે પહેલી ઓળખાણ માં કી કરા દે, આજ આપકી સમસ્યામાં કો સમાધાન કરેલા દેવીલાલ કુમાવત, આપ ઉપનિદેશક કૃષિ. કાર્યક્રમ માં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. રામ રામ સા.
1: રામ રામ સા.
0: જ્યાં કે સગડા શ્રોતા મને પતો છે કે ચાર ફોન લાઈન મેં આપ કે લીએ રાખા છે, જે પર આપ ફોન કર સકો છો, ખેતીવાડી સે જુડી આપકી જો ભી સમસ્યા છે, સવાલ છે, વાપ બાત કર, આપ સીધા વિશેષજ્ઞ સે બાત કર આપકા સવાલો કો જવાબ પા સકો છો, આપકી સમસ્યા કો સમાધાન પા સકો છો. જ્યાં જો નિયમિત મારા શ્રોતા છે વાને પતો ભી છે, જો કાર્યક્રમ ને સુણે છે વાને પતો ભી છે, પણ જો ભી શ્રોતા નયા જુડે છે વાં કે લીએ એક બાર ફેર હું આપની જો ચાર ફોન લાઈન છે વાંકા નંબર મેં બતા દઉં છું. મારી લોકો સ્ટુડિયો કી ચાર ફોન લાઈન છે 2200600, 2200700, 2200800, 2366477. જયપુર કો જો STD કોડ છે 0141, ઉને જરૂર છે આપ લગા લો, તાકી સુવિધા સે આપકો ફોન લાગે ઓર આપ આપકી સમસ્યા ઓર સવાલ કો જવાબ પા સકો. और अनीता जी जैसे कि हमेशा ही आप अपना काश्तकार भाई ने कुछ एक छोटी छोटी बातें से जो बताओ.
2: जी बिल्कुल. और देखो सा जी है कि किसान भाई ने बालका से फोन मत करो सा, आप बड़ा ही फोन करो और आपकी समस्या को समाधान हर बोलो. और दूसरी बात यह है कि जो किसान भाई फोन कर रहे थे वह आपका रेडियो सेट से दूरी बना रखे, और जो विषय विशेषज्ञ से संबंधित सवाल से खेती बाड़ी से जुड़े सवाल से वही करें.
0: और एक बात यह भी ध्यान रखो सर कि जब भी आप बात करो छो तो फोन लाइन पर बने रहो, ताकि बीच में अपने विशेषज्ञ ने कोई भी आपसे सवाल पूछो चाहे आपसे समस्या से संबंधित, तो वे आपसे बात कर आपने बिल्कुल संतुष्टि पूर्वक जवाब दे पावे. अनीता जी फोन लाइन पे फोन आबाव शुरू होगा चाहे बात करा चो.
2: जी
0: राम राम सा.
3: राम राम सा.
0: खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत. कौन बोल रहे हो, नाम बताओ आपको.
3: रामेश्वर बोल रहा हूँ.
0: जी रामेश्वर जी, मैं पूछना चाह रहे छो
3: बरसात हो रही है तो मैं अब तारा मेरे भाव चाहूंगा तो जो सही टाइम और सही क्वालिटी होगी बताओगा.
1: देखो काश्तकार भाई, अभी तारा मेरा लगाने का सबसे उचित समय है. इसको 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक अपन लगा सकते हैं. तारा मेरा सामान्यतया है जो अपन ऐसी इंच तेल लगाते हैं. तो काश्तकार भाई, इसकी जो बीज दर है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर है, और तारा मेरा की मैं कुछ किस्में है वो बता रहा हूँ जो आप ला सकते हैं. इसमें ITSA T27, RTM 314 जिसे अपन करण तारा भी कहते हैं, RTM 2002 है जिसे अपन नरेंद्र तारा भी कहते हैं, एक और किस्म है बहुत अच्छी किस्म है, नई किस्म है RTM 1351 जोबनेर तारा, और 1355 ज्वाला तारा. ये सारे नाम जो है ये अपने जोबनेर की जो कॉलेज है वहां से विकसित की गई है, इसलिए इनके ये नाम है. बुआई से पूर्व जो बीज है उसको आप उपचारित जरूर करें, लगभग 2 से 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके फिर बुआई करें काश्तकार भाई, और 30 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको लगाएं.
3: किस मौका साहब संदेश दे तो अच्छा रहता.
1: किस्मों का
3: ये जो आपने किस्में बताई उसका मेरे फोन पर संदेश भेज सकते हो आप.
2: आप लिख लो बार कॉपी पेन ले.
1: आप या तो लिख सकते हैं या मेरे फोन नंबर नोट कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर बता सकता हूँ.
3: ठीक है,
2: फोन कर बताए. घनो घनो धन्यवाद सा. राम राम सा.
3: राम राम सा.
2: जी कौन बोल रहे छो.
3: अनिता बहन जी, आपको आशा बहन को डॉक्टर साहब को नमस्कार.
2: जी प्रकाश
1: जी, नमस्कार जी.
2: रवि गणो गणो राम राम.
3: राम राम डॉक्टर, ये पूछ रहा था कि एक दोस्त ने बैरोड में ना प्लॉट में 5 कटहल के पेड़ लगाए थे पिछले साल.
1: अच्छा.
3: और वो लग भी गए थे. वैसे तो पेड़ और भी हैं, लगभग 40-50 पेड़ है, बड़ा प्लॉट है वो. और उसमें कटहल के पेड़ है ना, वो मतलब एक के बाद सूख ऊपर से सूखने लगते हैं, और वो सूखते सूखते सारे पत्ते भी झड़ जाते हैं और वो पेड़ नष्ट हो रहे हैं.
1: अच्छा, वो सिर्फ सूख ही रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कीड़ा थोड़ी है उसमें, नहीं है ना.

0: ऊपर तो कुछ है नहीं, अब नीचे तो पता नहीं, तो जड़ों में तो
1: ना ना, ना जब ऊपर से सूख रहे हैं तो ऊपर की बीमारी है ये, नीचे से तो बिल्कुल सही है,
0: बस वो सूख के पूरा नष्ट हो जाता है फिर।
1: हाँ वो फिर तो ये डाईबैक है, एक तरह से डाईबैक बीमारी है, तो इसके लिए कहते हैं भाई ऐसा कर सकते हैं अपन, जहां से सूखना स्टार्ट हो रहा है ऊपर से और जहां तक ये सूख गया है उससे कुछ नीचे 4-5-7 अंगुल नीचे उसको आप काट दें, और जो जो कटा हुआ जो भाग है और जो बचा हुआ जो भाग है उसके ऊपर अपन कापर ऑक्सी क्लोराइड, ये एक फंजीसाइड है कापर ऑक्सी क्लोराइड, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के इसका छिड़काव करें।
0: अच्छा, उनकी रोकथाम हो जाएगी।
1: हाँ,
0: लेकिन जो चले गए उनको तो उखाड़ के फेंक,
1: जो चले गए हैं उनको उसकी जड़ सहित उखाड़ के, और उनको फेंकना नहीं है, उनको नष्ट करना है, और नष्ट करने का मतलब यह है कि या तो उनको कहीं गहरा गाड़ दें और या फिर उनको जला दें, जिससे कि बीमारी है दूसरे स्वस्थ पौधों में नहीं फैले।
2: धन्यवाद साहब, फोन कर बताएं, खूब खूब धन्यवाद। राम राम साहब, हेलो,
3: हेलो, रामो राम, खेतीबाड़ी में
2: जी, खेतीबाड़ी में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं, कौड़े से बोल रहे हैं?
3: पांची राम रेगर बोल रहा हूँ, लाडनू से, तहसील लाडनू, जिला लीलवाना कुचामन
2: जी। पांचू जी, काई समस्या छे?
3: समस्या मेरी है कि जो मेरे पपीते के पेड़ लगा रखे 15-20 इनके जो पत्ते है ना वो नीचे की ओर मुड़ रहे जमीन की ओर।
1: देखो काश्तकार भाई, ऐसा है कि ये जो बीमारी है जिसमें पत्ते हैं जो उल्टे दोने के समान हो रहे हैं, उल्टे दोने के समान हो रहे हैं नीचे, और थोड़े सिकुड़ भी रहे हैं, और नीचे से पत्ते हैं जो ये गिर भी जाते हैं, इसे अपन मोजेक या पर्ण कुंचन बीमारी है जो कहते हैं, ये वायरस की वजह से होती है। वायरस को अपन खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वायरस को जो फैलाने वाली जो छोटे छोटे जो रस चूसक जीव है, जैसे एफिड है, जेसिड है, या होपर से छोटे छोटे जीव है, फ्लाई भी होती है, तो उनको अपन मार सकते हैं। तो उसके लिए अपन ऐसा करें कि जिन पौधों में ये दिक्कत हो गई है तो उनको तो अपन नष्ट कर दें, और जो स्वस्थ पौधे हैं उनके अंदर कोई भी सिस्टमेटिक जो दवाई है, जैसे अपन डाइमिथोएट है जो 30% आती है वो, या मिथाइल डिमेटोन है जो 25% आती है, उसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के और इसका छिड़काव करें, और आवश्यकता अनुसार इसको 15-20 दिन के अंतराल पे दोहरा सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी आगे नहीं फैले।
2: धन्यवाद सर, फोन कर बताए, खूब खूब धन्यवाद। राम राम सर, हेलो, हेलो जी, नमस्कार सर, खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, थोड़ा जोर से बोलो सर।
4: मैं पूछ रहा हूँ कि सरसों बोने में समय?
1: देखो काश्तकार भाई, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न इस समय का समसामयिक है पूछा है, क्योंकि जो सरसों है वो ज्यादातर तो अपन असिंचित या तालाबी पेटे या जो बारिश हो गई है उसकी जो नमी है उसको संरक्षण करके और फिर अपन लगाते हैं, तो इसका उचित समय है 15 अपने सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक अपन इसको लगा सकते हैं। और ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, अपन अखबार में या जो मौसम केंद्र है अपने पास के उनसे ये निश्चित करें कि जो दिन का और रात का दोनों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग है 33 डिग्री या इससे कम आ जाए तो इसका उचित समय होता है। तो आप अपने क्षेत्र में ये टेम्परेचर देख लें और उसके अनुसार इसकी बुआई है 33 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आने पर अवश्य करें।
2: हेलो, हेलो देवीलाल जी, जी अबार दलहनी फसलों में इस समय कीड़ा रोग लागवा को भी थोड़ा मौसम बन रहे थे, तो जिया मोइलो, सफेद मक्खी, हरे तेलो, ये अगर कीट है जावे से तो अपना किसान भाई यहाँ को नियंत्रण क्या कर?
1: मैं कोकास्तार भाइयों, इस समय कुछ दलहनी फसलें तो कट गई है जो सिंचित है और जहाँ पे बारिश अच्छी हुई है, तो उस समय बारिश की वजह से और अपने जो आर्द्रता जो नमी है उसके बढ़ने की वजह से ये जो कीट है जैसे मोइला है, सफेद मक्खी है और हरा तेला है, ये पौधों का पत्तियों का कोमल भागों का रस चूस के उसको कमजोर कर देते हैं और अपना उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए कास्तार भाई ऐसा कर सकते

0: एक दवाई आती है मेलाथियान 50 cc, वो काम में ले सकते हैं, या डाईमिथोइट आती है 30 cc, वो ले सकते हैं। उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के और इसका छिड़काव करें तो ये जो रस चूसने वाले जो छोटे छोटे कीट हैं ये नष्ट हो जाएंगे और इसका नियंत्रण हो जाएगा।
1: आज मौसम की वजह से थोड़ी सी लहना में परेशानी भी आ रही है
2: कुमार साहब। अब आवारा टाइम में जो सरसों की फसल लेवल है उनके लिए काश कार्रवाई काई तैयारी रख है काई बीज दर रख है विस्तार से बताओ।
0: अभी सरसों की फसल का बुआई का उचित समय है वो हो ही गया है, तो काश्तकार भाई सबसे पहले तो ये करें कि इसकी जो बीज है उसकी व्यवस्था काश्तकार भाई कर लें, और बीज में मैं कुछ किस्में बता रहा हूं तो काश्तकार भाई वो उन किस्मों का उपयोग है वो कर सकते हैं। जैसे बायो 902 है, ये पुरानी किस्म है लेकिन बहुत बढ़िया किस्म है, बायो 902 काम में ले सकते हैं। और टी 69 ये भी बहुत अच्छी किस्म है, वो भी काम में ले सकते हैं। RS 30 है, लक्ष्मी है, वसुंधरा है, ये पुरानी किस्में हैं, अरावली है, इनको काम में ले सकते हैं। और नई किस्में अगर काम में लेना चाहते हैं काश्तकार भाई तो अपने NRC जो अपना भरतपुर वाला है वहां से NRC DR नाम की किस्म निकली है, 2 नंबर वाली और 601 नंबर वाली, वो किस्म काम में ले सकते हैं। RRN है 573, वो किस्म भी काम में ले सकते हैं। दूसरी पूसा सरसों है 26 और RH 406 है, ये किस्में काश्तकार भाई काम में ले सकते हैं। और फिर है इसके बीज जो अगर आप सर्टिफाइड सीड काम में लेंगे तो वो आगे से उपचारित हुआ हुआ आएगा, अगर घर का बीज काम में ले रहे हैं या उपचारित होके नहीं आया है तो फिर मैंकोजेब नाम की जो दवाई है उसका 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करके फिर इसकी बुआई करनी है। और काश्तकार भाई ये भी ध्यान रखें कि जब इसकी अपन बुआई करते हैं तो बीज है वो ज्यादा गहरा है वो नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखें कि कहीं ऊपर सूखी मिट्टी है और उसके अंदर अपन ने बीज लगा दिया है, जैसे जैसे नमी नीचे जाती जाती है वैसे ही इसकी गहराई है वो बढ़ती जाती है, यानी नमी वाले स्थान पर इसकी बिजाई करें। और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है वो मेंटेन करें।
3: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
2: अनीता जी, देवीलाल कुमावत उपनिदेशक कृषि अपने साथ है, काश्तकारों का सवालों को समस्याओं को समाधान बड़ी ही बेहतर तरीका से कर रहे थे। एक बार कार्यक्रम में फिर से आपको स्वागत है सा, और फोन लाइन पर श्रोता जुड़े से बात कर लेवा छो।
4: हेलो, राम राम सर।
2: राम राम सर, खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। थोड़ो सो रेडियो सेट से दूर यार फिर बात करो सर।
4: हो गया जी,
2: बताओ सर। कहीं
4: मैं दरअसल ये पूछना चाहता हूँ, मेरे घर में घिया के 2 पेड़ है।
2: कहीं का
0: कहीं के हैं 2 पेड़ आपके?
4: लौकी लौकी
0: लौकी के 2 पेड़।
4: 3 महीने तो हो गए सर, और कम से कम वो 200 प्लाट में पूरे में फैल गए, एक भी नहीं लगा, और कम से कम 200-300 रुपए दवाई डाल दी लाला के।
0: कौन सी दवाई आपने डाली? नहीं, दवाई किस लिए डाली आपने? कोई कीड़ा बीमारी है उसके लिए डाल दी, या कोई फ्रूट सेट के लिए डाली है, किसके लिए डाली है?
4: आप यहीं कॉलेज में कोई थे प्रोफेसर, मैंने पूछा था, उन्होंने मेरे को बताई दवाई छींक देना।
0: पहली बात तो ये है काश्तकार भाई, ये ध्यान रखें कि जो लौकी की जो फसल होती है उसमें इसकी जो वानस्पतिक बढ़वार होती है उसमें क्या है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर लगते हैं। मेल फ्लावर है उनके ऊपर तो लौकी लगती नहीं है, फीमेल फ्लावर के ऊपर ही लौकी लगती है। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना तो उस समय इसके जो पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब ये दिक्कत आती है ज्यादा। दूसरा ये है कि इसकी वानस्पतिक बढ़वार ज्यादा हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपने यूरिया वगैरह ये ज्यादा दिया हो? हाँ, क्या क्या डाला है?
4: ये बकरी की मींगनी।
0: नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करें, इसकी ज्यादा वनस्पति बढ़वार नहीं हो तो जहाँ से ये ग्रोविंग कर रही है इसका ऊपर का इसमें शीर्ष भाग है वहाँ से इसको आप काट दें। और दूसरा है जो प्लानोफिक्स एक नाम की एक दवाई आती है, शायद आपने काम में भी ली होगी, मेरे जानकारी में है। तो उसमें ये ध्यान रखें आप कि जो मैं मात्रा बता रहा हूँ उसको एग्जैक्ट काम में लें, बिल्कुल नहीं तो कम काम में लेनी है, नहीं ज्यादा काम में लेनी है। तो 1 ml प्रति 4.5 लीटर पानी, एक मिलीलीटर प्रति

0: चार लीटर पानी, लगभग एक टंकी के अंदर 3 ml दवाई है वो काम में लेनी है। अगर आपने ज्यादा काम में ले ली तो अपने रहे से जो फूल है वो भी गिर जाएंगे, और अगर आपने कम काम में ली तो वो काम नहीं करेगी। तो ये काम अभी आप कर सकते हैं। और इसमें फ्रूट सेटिंग के लिए ये भी है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा है वो थोड़ी सी सही अपन को लगानी चाहिए, तो वो स्टार्टिंग में होता है, बाद में नहीं होता। तो अभी तो जो मैंने बताया वो कार्रवाई करें
1: जी। फोन कर बताएं, धन्यवाद सा। राम राम सा।
2: राम राम जी। हेलो
1: जी। राम राम सा, खेती बाड़ी में फोन लाग गयो छे।
2: जिला जयपुर तहसील सांगा नहर गांव बागड़ो के बड़े कालू राम बागड़ा बोल रहा हूँ
1: जी। कालू राम जी, काई समस्या छे बताओ।
2: मूली लगा सका जगह ही भगत, मूली को टाइम जगह ही लगा भगत।
0: कालू राम जी, मूली लगाने का अभी उचित समय है, अब से लेके और दिसंबर तक अपन मूली है वो लगा सकते हैं, और अभी लगाएंगे तो वो अगेती भी रहेगी और मार्केट में मतलब बाजार भाव है वो अच्छे मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ किस्में बता रहा हूँ मूली की, वो लगा सकते हैं, जिसमें जापानीज व्हाइट नाम की आती है, बहुत अच्छी मूली आती है, स्वादिष्ट होती है। दूसरी पूसा रश्मि है, पूसा देसी है, वो काम में ले सकते हैं। और एक हेक्टर के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज है वो पर्याप्त होता है इसका, वो लगा सकते हैं। और जो पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी रखें वो 30 सेंटीमीटर की रखें, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें।
2: और कोई इसके साथ और कोई लगा सकते हैं क्या? वो अभी
0: और तो बहुत सारी चीजें हैं जो लगा सकते हैं अपन, मटर भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, और फूल गोभी, फूल गोभी की जो लेट किस्म है वो भी लगा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, फूल गोभी में कौन सी किस्म लें?
0: फूल गोभी में काशकार भाई अभी जैसे दानिया है, स्नोबाल है, पूसा स्नोबाल नाम की एक किस्म आती है वो ले सकते हैं, के एक किस्म आती है वो ले सकते हैं। और पहले इसके आपको अभी नर्सरी करनी पड़ेगी, और नर्सरी में जो बीज दर है वो 375 से 400 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से अपने पहले नर्सरी तैयार करें, और फिर जब पौधे हैं वो करीबन 25-30 दिन के हो जाएं तब जाके फिर इसकी ट्रांसप्लांटिंग है अपन खेत में कर सकते हैं, और खेत के अंदर इसको 60x45 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर रोपाई करें।
2: अच्छा, धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद सर, फोन कर बताएं, आपको भी खूब खूब धन्यवाद। हेलो हेलो सर।
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: जी कौन बोल रहे हो? खेती बाड़ी में खूब खूब स्वागत है।
2: खेती बाड़ी जी, मैं राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ जी, गांव रायपुर ईरान तहसील बोड़ा जोंगलो से जी।
1: जी पूछो सा।
2: पूछो जी, ये अमरूद के जो अभी फल लग रहे हैं तो उसको मतलब ये लगाना है कि तोड़ना है बताओ?
0: देखो अभी सितंबर चल रहा है, अभी फूल आ रहे हैं या फल लग रहे हैं?
2: नहीं, फल लग गए जी, वो है देर के मान के करीब मतलब।
0: तो आपका जब बारिश आई थी, बारिश में जून जुलाई अगस्त, तो उसमें उस समय भी फल लगे थे क्या आपके?
2: ना जी, उस समय, नहीं लगे थे।
0: उस समय नहीं लगे थे। तो जो अपनी ये जून जुलाई और अगस्त वाली जो मतलब फसल अपन जो लेते हैं तो उसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप हो जाता है, और उसकी वजह से सारी फल है जो काणे हो जाते हैं, तो उनको तो उस समय पहले से ही तोड़ देना चाहिए, या उससे भी पहले जो अपना अप्रैल का महीना है उसी समय, जब अप्रैल और मई में जब फ्लोरिंग आना स्टार्ट होता है तो उसी समय तोड़ देना चाहिए। अब ये जो सर्दी की फसल है इनको आपको तोड़ना नहीं है, इनका पूरा फ्रूट बनाना है, और अब क्या है कि जो ये फ्रूट फ्लाई है उसका प्रकोप है वो कम रहेगा, और फिर भी अगर थोड़ा बहुत कोई प्रकोप रहता है तो आप मेलाथियन है 50% जो आती है इसका उपयोग आप काम ले सकते हैं।
2: हेलो
1: जी,
0: बताइए।
2: हाँ जी, एक नींबू के मेरे 60 पेड़ है जी।
0: हाँ जी,
2: 60 पेड़ है जी, तो उसमें एक वो बड़े बड़े हो गए जी, 10-12 फुट के उसको फूल नहीं आ रहे जी।
0: कितने कितने साल के हो गए, कितना समय हो गया लगाए?
2: मतलब ये 4वें साल लग रही है जी,
0: 34 साल लग रही है। तो ये तो हाँ, ये सारे बीजू प्लांट
2: नहीं, मतलब कोई कोई पेड़ है जी।
0: हाँ, तो ये सब बीजू प्लांट होते हैं, यानी बीज अपन लगाते हैं, तो जो बीज वाले जो प्लांट होते हैं उनमें लगभग 4-5 साल बाद में ही अच्छी तरह से फ्लोरिंग और फ्रूटिंग होती है, तो थोड़ा इंतजार कर लें और उसके अंदर अपना देसी खाद है वो, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो दें, और उसका समय समय पर इरिगेशन है वो देते रहें, खरपतवार नियंत्रण करें, और थोड़ा इंतजार कर लें, निश्चित रूप से उसमें फ्लोरिंग और फ्रूटिंग होगी।
2: ठीक है जी, धन्यवाद जी, बढ़िया, धन्यवाद सर
1: जी। आपको भी घणो घणो धन्यवाद।

0: देखो साहब, मूंग की फसल की पत्तियां की शिरावा पीली हो रही है, तो अगर कोई किसान भाई की ऐसी समस्या आवे तो वह का कर सके?
1: देखो, मूंग की फसल में अभी क्या है कि वैसे तो जहां असिंचित थी वहां लगभग लगभग है जो कट गई है, जहां थोड़ी बारिश हो गई अच्छी और अगर सिंचित है तो उसमें थोड़ी सी बढ़वार है वो आ जाती है और फ्रूटिंग फ्लोरिंग और फ्रूटिंग है वो होती है। लेकिन इसमें जो वायरस है इसकी वजह से ये पत्तियां है जो पीली हो जाती है और इसकी जो जो शिराएं है वो पीली हो जाती है, तो उसके लिए वायरस को अपन खत्म नहीं कर सकते। इसको जो फैलाने वाले रस चूसक कीट है उनको खत्म करने के लिए कोई भी सिस्टमेटिक दवाई है, डाइमिथोएट है या मिथाइल डिमेटोन है या मोनोक्रोटोपोस है, उसका अपन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के उसका छिड़काव करें।
0: जी, हेलो हेलो।
2: हाँ बहन जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत। कौन बोल रहे हो, नाम बताओ आपको।
2: वाह, डॉक्टर साहब को, सभी को, सुनने वाला को नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, काश्तकार भाई नमस्कार।
2: मैं पाइप पार्क में से बोल रहा हूँ, मेरा नाम जैताराम है सर
0: जी।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: पाइप टू बाड़मेर जिला।
1: बाड़मेर, बताए
0: बताओ साहब, पूछो भाई, पूछना चाह रहे जो।
2: मैं एक दो दो पौधे मतलब एक एक कैसे लगाना, मतलब एक लगाना है क्या? नारंगी का
1: क्या लगाना है?
2: एक तो नारंगी का पौधा लगाना है और एक तो ये आंवले का, ये लग सकता है या नहीं लगेगा ये पूछता हूँ।
1: मतलब एक दो ही लगाना है, ज्यादा नहीं है ना? तो इसमें हाँ कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं। काश्तकार भाई, ऐसा है कि जो फ्रूट लगाने का जो उचित समय होता है वो या तो वर्षा काल में आप लगाएं या फिर अपन फरवरी के समय पे अपन लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे नारंगी वगैरह का इसका आपको लगाना चाहते हैं तो कोटा से एक हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है डिपार्टमेंट का, तो वहां से आप अच्छी किस्म का है जो पौधा मंगा के वो वहां से लगा सकते हैं, अथवा कोई भी अपने मान्यता प्राप्त जो नर्सरी है उससे आप प्लांट खरीद के और वो लगाएं। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि उसका बिल है वो अवश्य ले लें और उसकी अच्छे तरह से देखभाल करें। अभी समय है, आप अभी लगा सकते हैं, अगर इससे लेट होते हैं तो फिर फरवरी में लगाएं।
2: तो सर जी, हम कोटा से कैसे मंगवाएं?
1: कोई आता जाता हो तो उससे मंगवा सकते हैं या फिर आपके आसपास की कोई नर्सरी हो, निजी नर्सरी हो और वो एक्रीडेटेड हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, या फिर प्राइवेट भी हो तो उससे पहले मतलब ये तय करें कि वो जो वैरायटी दे रहा है, किस्म दे रहा है वो ट्रू टू टाइप ही है, सही है और उसका बिल अवश्य लें आप।
2: तो ठीक है सर, और एक थोड़ा और पूछना है सर।
1: बताए,
2: FM रेडियो चलता था, ये आपका कार्य कर रहा था, वो तो हमारे बंद हो गया 5-6 महीना से, इसका क्या कारण है? बहन जी को पूछो सर। FM आपका जयपुर का कार्यक्रम चलता है, वो बंद हो गया, अब तो कोई किसी का रेडियो ला के मैंने सुना है अभी।
0: नहीं, FM पे भी हमारा प्रोग्राम 101.2 FM पे आ रहा है, तो जरूर आप उस पे या फिर आप ऐप पे सुन लीजिए, न्यूज ऑन एयर ऐप पे।
2: FM है नहीं, रेडियो है पुराना मेरे पास में।
0: नहीं, रेडियो पे तो प्रोग्राम आ रहा है और FM पे भी आ रहा है, और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐप पे जाके सुन सकते हैं सर।
1: काश्तकार भाई, ऐसा है इसमें अपने जो मोबाइल होता है, आजकल तो सबके पास में स्मार्टफोन है और उसमें न्यूज ऑन एयर ये इस नाम का एक एप्लीकेशन होता है, तो वो आप डाउनलोड कर लें और उसके अंदर फिर ये FM का ऑप्शन होता है, उसमें 101.2 जो मेगाहर्ट्ज है उसके ऊपर आप ये सुन सकते हैं आराम से।
0: राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा,
3: राम राम बहन जी, राम राम
0: जी, राम राम सा।
3: बाड़मेर से गुड़ामालन क्षेत्र से मदन दुर्गाराम जी बोल रहा हूँ
0: जी। दुर्गाराम जी, बताओ सर, कहीं समस्या है?
3: डॉक्टर साहब, ये पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ जो अनार की खेती है ना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, उसमें क्या है 2-3 साल से हो रही है, तो उसमें क्या अभी 2 साल हुआ है फलाने के लिए क्या, और थोड़ी लट ज्यादा रहती है, उसमें क्या करना पड़ेगा?
1: लट ज्यादा लग जाती है कहना चाह रहे हैं आप, है ना? हाँ, तो हाँ, तो इसमें जो अनार की जो बटरफ्लाई है उसकी लट है वो लग जाती है, और ये भी क्या है कि जो फूल वाला जो हिस्सा होता है ना उधर लग के वो फिर अंदर ये अंडे देती है और उसमें वो लटे निकल के इसका गुदा खाना है वो जो स्टार्ट कर देती है, और फिर ज्यादा मात्रा में लगती है तो पौधे में ये जो फ्रूट्स है वो गिर भी जाते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। तो काश्तकार भाई, जैसे ही ये दिखाई दे आपको लगता है कि ये लट लगने वाली है या फ्लाई है जो इसकी जो बटरफ्लाई है वो दिखाई दे, तो आप ऐसा करें, क्विनोलफोस पाउडर आता है 1.5%

0: प्रतिशत क्विनोल फोर्स 1.5% पाउडर आता है, तो उसका आप बुरखाव करें तो ये जो इसकी बटरफ्लाई है वो नष्ट हो जाएगी, तो वो फिर अंदर जाके अंडे नहीं दे पाएगी और लटे अंदर नहीं बने।
1: दल के साथ सूखा से करें, क्या करें?
0: सूखा सूखा डेढ़ प्रतिशत पाउडर आता है, 1.5% पाउडर आता है ये, तो डस्टर की सहायता से कर सकते हैं। लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, अगर आपके बड़ा एरिया है तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर है, उसके हिसाब से आप काम में ले सकते हैं।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद।
2: धन्यवाद साहब, फोन कर बताई, आपको भी खूब खूब धन्यवाद। कुमावत साहब, अब अपने पास समय थोड़ो ही है, तो आपसे जानबो चावना की जो काश्तकार बार मटर की बुआई करबो चावे छे, तो वे कई तैयारी करे और की तरीका से सुरक्षित जो फसल जवाब प्राप्त कर सके?
0: मटर के लिए काश्तकार भाई अभी समय चला है और अभी मटर की बुआई है, जो अगेती करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रमुख किस्में हैं उसमें है अर्किल है, हरा बोना है, और काशी मुक्ति और पूसा प्रगति, ये भी बहुत अच्छी किस्में हैं। इसके अलावा जवार 3 है, जवार मटर 4 है, ये किस्में हैं काश्तकार भाई ले सकते हैं। इसका बीज की व्यवस्था आप कर लें, एक हेक्टर में लगभग ये 80 से 100 किलोग्राम लगेगा, तो वो आप इकट्ठा कर लें अपने पास में। और दूसरा फिर इसका बीज उपचार है, वो भी किसी बेविस्टिन या मैंकोजेब से इसका बीज उपचार काश्तकार भाई है वो करें। और फिर है जो इसकी बुआई है वो 30x10 सेंटीमीटर के ऊपर आप कर सकते हैं।
3: देवीलाल जी, थोड़ी सी बात अब यह भी करवो चाहना भाई, फूल गोभी की जो किसान भाई ये बार नर्सरी तैयार करवो चाहवच है, तो कहीं वह कर सके जे, तो इनकी किस्मा और बीज दर भी थोड़ो सो बताओ।
0: देखो फूल गोभी की, फूल गोभी और पत्ता गोभी की जो सही समय था वो तो अब निकल चुका है, अभी रोपाई का समय लगभग हो गया है, लेकिन जो काश्तकार भाई पछेती फसल लेना चाहता है तो उसके लिए गोभी के अंदर मैं दो किस्म मैंने जो पहले ही बताई थी अभी, वो है पूसा स्नोबाल, वो काम में ले सकते हैं, एक दानिया किस्म है वो काम में ले सकते हैं। और इसकी जो बीज दर है वो 375 से 400 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से इसकी नर्सरी पहले करके और फिर इसका करीबन 25-30 दिन बाद में इसकी जो है रोपाई है काश्तकार भाई कर सकते हैं।
2: अनीता बहन, देवीलाल कुमावत उपनिदेशक कृषि आज अपने स्टूडियो में आया और काश्तकार भाई का जो समस्या थी, जो सवाल था वहां का समाधान करे, आपको खूब खूब धन्यवाद। और अब स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि आज को जिको कार्यक्रम है खेतीबाड़ी उनको टाइम पूरा होते जा रहे थे, तो श्रोताओं दिराव आ गया आशाधा भाई ने
3: अनिता ने चालार करा
2: राम राम सा।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। रात्रि के 8 बजे ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण पर विशेष कार्यक्रम चेयर फॉर भारत आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: कूट एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन, जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचता है। आईटी नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैच पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेम पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत आकाशवाणी पर। एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी।

0: हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था, जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के न होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानते हैं कि यहां से पदक आ सकता है?
2: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था, और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टारडम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं, देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है, 74 खिलाड़ियों का है, और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो, जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटे, जैसे अविनाश साबले हैं। स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है। पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी, तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे, जिनसे भी उम्मीद होगी, क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमिना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति यारा जी वापसी कर रही है, राष्ट्रमंडल खेलों में वो भार रही थी, 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे, जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है। अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर गुलवीर है, जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, तो 1500, 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है, जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे। डेकाथलन में तेजस्विन शंकर है और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है, तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास, और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।
0: सायंतन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया। चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए, ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
3: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाला के जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी अनलॉक, शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आईची निकोया में होने वाले जहां पर एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था, उसका एक्लेमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है तो। लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तेजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x100 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का, एक्लोमेटाइज करने का ये व्यवस्था दिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहां जाकर कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहे हैं।
0: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की जिनसे काफी उम्मीद है। सर्वेश कोश्यारी भी एक एथलीट है जो हाई जंप में

0: गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
1: देखिए, सबसे जैसे सैंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकलकर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकलकर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम हैं उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में। 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे। तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें कई पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
0: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
2: देखिए, नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई वो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है जो से। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
0: हाई जंप में
2: 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहां पर वो 8th था, ये 1.77 मीटर। तो काफी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th था ये 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रीटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आई थिंक एशियन गेम्स।
0: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
1: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं न कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहां पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहां पार पाना पड़ेगा, लेकिन यहां चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं। विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहां पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया कभी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं।

0: लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले। और यहाँ से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना, ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
1: सायंकर, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
2: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पर रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है एशियन गेम्स पे। वुमेन्स टीम अगर इतना अच्छा कर सकता है वहां पे, फिफ्थ आ सकती है, तो मेन्स टीम भी कहां पहुंचे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहां पे मेन्स हॉकी टीम से काफी एक्सपेक्टेशन है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशन कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखते हुए काफी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जेफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे एसीटीसी के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफी एक्सपोजर कैंप्स बोथ मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुल्टन के जो साइड है उनको भी काफी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
0: फोर्थ प्लेस
2: फिनिश, जब हम लोग हॉकी वुमेन्स में लाए थे तो शॉर्ट मेरीन भी थे, वो वापस आ गए और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखें यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिए हैं जापान में एक्लोमेटाइज और भी करने में, वो मदद करे एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सके।
1: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से। इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम पांचवें स्थान पर रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 20-21-22 साल की 11 लड़कियां, तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शॉर्ट मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखें, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास अनान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है। लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है, और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा, सविता लेजेंडरी प्लेयर है और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहां नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है, और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शॉर्ट मारिन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहां आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पर उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मथियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम।

0: टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
1: चलिए हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेन्स डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मुना एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी है अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है दोनों फॉर्म में नहीं है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है दो बार की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है। और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पर, जैसा आपने कहा, चिराग और सात्विक पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जौली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखें, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
1: सायंतन बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही है इसमें। किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: वेल, जैसे अभी बताया गया कि त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसे करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हंजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग जो डबल्स वुमेन्स प्लेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस उस मोरल को लेकर आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद मैं आऊंगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए, तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है। एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देट इज ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली आज ना कोई बाहर आए।
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है, लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर। कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है, लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
0: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण, तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का, लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना

0: अपना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहां लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हां, सायंतन पवन सेहरा।

0: वुमेन्स कबड्डी टीम का, दो मेंजल वुमेन्स क्रिकेट टीम का और दो हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत के बाद जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले पीकेएल की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है पीकेएल से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का पीकेएल में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट में, सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहा है वो यू मुंबा के कैप्टन भी है, तो काफी ऐसे प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहां पे भी एक टीम का बढ़िया से ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है वुमेन्स टीम का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट है जो मेन्स टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेन्स टीम का स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कॉम्पिटिशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल। बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है जो स्वयं होने जा रहा है।
1: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थी। मुना, यहां पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
2: जी बिल्कुल, ऋषिकांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए, तो चार महिलाएं, वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है। पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और चौथे स्थान पर रही, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में और हरजिंदर कौर है 69 किलो में। तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर एक चीनी जोड़ी को हराकर विमेंस डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी, क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, दिया चिताले ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
0: देखिए अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफी हम लोग ने साइंस से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको, गुजरात में भी है, बेंगलुरु में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में, काफी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग होता है, कैंप नहीं होता एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया कि मानव ठक्कर और मनोज शाह जो है, जो मेन्स डबल्स पेयर में खेले जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल्स स्टैंडिंग्स में, तो ये काफी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनोज शाह, दिया चताले जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहे हैं, तो शरद कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनोज शाह, मानव ठक्कर, दिया चताले, इन तीनों में से काफी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था जैसे आपने जिक्र किया, तो इनसे आई थिंक मेन्स टीम, वुमेन्स टीम काफी सारे कॉम्पिटिशन में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
1: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, जी हां क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी उम्मीद यही है, टक्कर कहीं देखती है मोना?
2: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए।

0: है और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
1: सायंतन कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
2: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे हैं, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे, क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते हैं। एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पर रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
1: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है, तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मुना पार्थ सारथी, आपका, सायंतन मोइत्रो, आपका बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया आनंद,
2: थैंक यू सो मच।
1: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह जन्म है। 8:30 होने को ही थोड़ी देर में सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतर सही।
1: जी हां, हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर ताजा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक। सबसे पहले हेडलाइंस।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला नई दिल्ली में जारी। अभिषेक शर्मा 30 गेंद में शतक लगाकर सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। जापान के खिलाफ किताब बचाने के अभियान की शुरुआत करेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। वेस्टइंडीज के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और डेविस कप क्वालिफायर दूसरे दौर के मुकाबले में कल भारत का सामना कोरिया से।
1: तो शुरुआत करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन टी20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला इस समय दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। शक्ति, इससे पहले कि हम आगे चर्चा अपनी शुरू करें, इस मैच की अब तक की ताजा अपडेट क्या है?
0: अतर, बता दें कि इस समय 12 ओवर और 5 गेंद का खेल हो चुका है और भारतीय टीम जो पहले बल्लेबाजी कर रही है उसने 164 रन स्कोर बोर्ड पे चढ़ा लिए हैं और वर्तमान में संजू सैमसन 50 रन और कप्तान शेष अय्यर 4 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।
1: यानी संजू सैमसन का अर्धशतक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इससे पहले का कमाल की बल्लेबाजी की है अभिषेक की, जितनी प्रशंसा की जाए वो उतनी कम होगी। आशक्ति, 34 गेंद में 108 रन, क्या कहते हैं?
0: कुछ कहा ही नहीं जा सकता ऐसी पारी जिसके लिए शब्द कम पड़ जाए अतर। और जब मैदान में आज अभिषेक उतरे तो लोगों को लगा था कि क्या अफगानिस्तान क्लीन स्वीप के इरादे को नाकाम करेगी, लेकिन जिस तरह का खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने, हर तरफ शॉट और गेंद, ऐसा लग रहा था कि अभिषेक के बल्ले को छूती और सीमा रेखा के पार जाती और सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गया आज ये खिलाड़ी।
1: हालांकि ये मैच से पहले ये सोचा जा रहा था कि क्या अभिषेक आज भी कुछ कमाल कर दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने तो धमाल कर दिखाया आज। उनके बल्ले से एक के बाद एक

0: एक गेंद जो है रन बटोर रही थी, तो वो जो दृश्य है वो काबिले तारीफ कहा जा सकता है। एक सवाल आपके ही शब्दों में निकलता है, क्या भारत क्लीन स्वीप कर पाएगा?
1: जी बिल्कुल, अब तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का स्कोरबोर्ड आपने 164 रन चढ़ा लिए हैं, 13 ओवर का खेल हुआ है, भारत एक बहुत विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह का डोमिनेंस इस पूरी सीरीज में अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि दिल्ली के दर्शकों को एक तीसरे मैच में जीत लगातार स्पष्ट नजर आ रही है।
0: बिल्कुल, और मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए पहले उतरी भारतीय टीम दूसरी अपने इनिंग की जो शुरुआत करेगी वो बल्लेबाजी से करेगी, तब तक रात गहरा चुकेगी, तो क्या ये टॉस का महत्व कितना बढ़ जाता है ऐसे में, जबकि दिल्ली में मौसम का असर इस समय देखा जाए तो ह्यूमिडिटी लगभग 60% से ज्यादा है और रात में ओस का जो प्रभाव है और बढ़ जाता है शक्ति?
1: जी बिल्कुल, अफगानिस्तान ने आज टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन अब तक अभिषेक शर्मा के उस पूरे हिट शो के आगे फैसला बिल्कुल गलत साबित होता हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शुरुआत के दो मुकाबलों में भारत ने टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया था और परिणाम भारत के पक्ष में थे। शायद ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान के कप्तान के जहन में चल रहा होगा कि इस बार हमें मौका मिला है, हम गेंदबाजी करते हैं, मैच जीतेंगे, लेकिन पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है।
0: और साथ में शक्ति एक चीज और है, दिल्ली के दर्शक जो है भारतीय टीम को भा गए हैं। दिल्ली के दर्शकों के समक्ष दो लगातार जीतों के बाद तीसरी जीत के मुहाने पर कहा जा सकता है कि भारतीय टीम है, उम्मीद तो यही बता रही है अब तक की बल्लेबाजी के क्लीन स्वीप की ओर भारत बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल, और जिस तरह की पारी देखने को मिली, कोई मुझे अभी तक यहां से हमें दो राय नहीं नजर आती हुई, और भारतीय टीम एक शानदार जीत और इसके बाद जो टीम को एशिया कप खेलना है, एशियन गेम्स खेलने हैं, उसके लिए एक शानदार अभियान की तरफ बढ़ती हुई।
0: एक अंतिम सवाल, क्योंकि संजू सैमसन इस वक्त जो है पूरे फॉर्म में है, तो उनसे क्या उम्मीदें लगती हैं, क्या वो भी शतक की ओर बढ़ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि अभी खेल बचा हुआ है तकरीबन 7 ओवर का और संजू सैमसन अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, हालांकि थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे और अर्धशतक में अपना विकेट उन्हें गंवा दिया है, लेकिन एक चीज तो तय है कि भले उनका शतक नहीं हो सका लेकिन टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अतर
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और हमारी पूरी उम्मीदें शुभकामनाएं, और साथ में ये भी है कि जो प्रदर्शन है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत निश्चित रूप से ये मुकाबला जीतने की ओर अग्रसर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले सप्ताह दुबई में रिकॉर्ड 8वीं बार महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप जीतने के बाद गत विजेता और खिताब के प्रबल दावेदार भारतीय महिला टीम एशियाई खेलों में कल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। कल क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये मैच जापान के नागायो में भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
2: दुबई में खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, लेकिन एशियाई खेलों के नॉकआउट प्रारूप में उनके पास गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होगी। महिला स्पर्धा में 8 टीम भाग ले रही है और प्रतियोगिता सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होगी। इसका मतलब है कि किसी भी टीम को प्रतियोगिता में परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए ग्रुप चरण के मुकाबले नहीं मिलेंगे और एक हार ही अभियान को समाप्त करने के लिए काफी होगी। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा का प्रदर्शन काफी अहम होगा। उन्होंने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया था जिसमें वे टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज के साथ साथ टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जिनको स्मृति मानधना का भरपूर साथ मिलने की उम्मीद है। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर भी एशिया कप के औसत प्रदर्शन के बाद बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। गेंदबाजी में भारत के पास काफी विकल्प हैं। भारत की गेंदबाजी काफी हद तक अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और बाएं हाथ के स्पिनर स्विचरणी के इर्द गिर्द रहेगी। भारत के सामने मेजबान जापान घरेलू मैदान पर मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। जापान को मजबूत भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना होगा, उसे भारत के स्पिन विकल्पों के खिलाफ प्रभावी ढंग से खेलना होगा और साथ ही उसके गेंदबाजों को आक्रामक शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को रोकना होगा। इससे पहले कल बांग्लादेश और चीन के बीच मुकाबला बारिश के कारण रद्द होने के बाद ICC में बेहतर रैंक के आधार पर बांग्लादेश को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: शक्ति, भारतीय टीम से इस प्रतियोगिता में क्या उम्मीदें आपको लगती हैं?
1: जिस तरह की हालिया फॉर्म रही है हरमनप्रीत एंड आर्मी की, बिल्कुल वो स्वर्ण पदक को बचाते हुए टीम नजर आएगी। शानदार गेंदबाजी क्रम, मजबूत बल्लेबाजी, और थोड़ा अगर कुछ मोर्चों पे टीम और सुधार कर लेती है तो कह सकते हैं कि जापान में भारतीय टीम पोडियम फिनिश करते हुए स्वर्ण पदक के साथ नजर आ सकती है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। ऐसे में हमारी नजरें किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर

0: हो सकती है?
1: जी, अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो एक दो तीन नहीं, भारत के पास चार से पांच शानदार विकल्प हैं। दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, उसके बाद प्रेमा रावत, नंदिनी शर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और अभी जब टीम एशियन कप जीत करके आई है वहां पे देखा जाए दीप्ति शर्मा सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी थी, पांच मैचों में 14 विकेट, और वो शानदार स्पेल जो पहले मैच में आया था बिना कोई रन दिए, वो चार विकेट, शायद बहुत मनोबल मिलेगा जापान से पहले इस खिलाड़ी को और उनकी मौजूदगी से इस पूरी टीम के गेंदबाजी महकमे को।
0: अच्छा, बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बल्लेबाजी के मोर्चे पर हरमनप्रीत कौर की ये टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी कौन साबित हो सकते हैं?
1: बल्लेबाजी की अगर बात की जाए अतर, तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, कुछ मोर्चों पर टीम को काम करने की जरूरत है। शैफाली वर्मा की शानदार फॉर्म, हालिया फॉर्म जो है उसका कोई तोड़ नहीं, सबसे अधिक रन बनाए, पांच मैच 236 रन, तीन शानदार अर्धशतक जिनको साथ मिलता है स्मृति मंधाना का, तो कह सकते हैं कि वो ओपनिंग बहुत अच्छी है, मिडिल ऑर्डर से कुछ और योगदान होगा तो टीम बिल्कुल पोडियम पे पहुंच रही है।
0: बढ़ते हैं अगली खबर की ओर,
1: और अब बात की जाए भारत वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला की, जहां वेस्टइंडीज के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रृंखला में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ घरेलू सरजमी पर तीन एक दिवसीय और पांच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। आइए सुनते हैं इस पर अपने सहयोगी सरफिरोजी की रिपोर्ट।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वेस्टइंडीज के साथ आगामी एक दिवसीय श्रृंखला के लिए टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी है, जबकि केएल राहुल उपकप्तान और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल भी टीम का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर नीली जर्सी में खेलते नजर आएंगे। इन दिग्गज खिलाड़ियों के अलावा यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर के तौर पर नितेश कुमार रेड्डी, नमन धीर और रविन्द्र जडेजा को स्थान मिला है। वहीं गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज और औकिब नबी के हाथों में होगी। बोर्ड ने पांच T20 मैचों के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को T20 की कमान सौंपी गई, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन और संजू सैमसन का चयन किया गया है। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में स्थान मिला है। इनके अलावा अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस और मयंक यादव भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। श्रृंखला का पहला मैच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इस महीने की 27 तारीख को तिरुवेद्रम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच गुवाहाटी में 30 सितंबर को और अंतिम एक दिवसीय मैच चंडीगढ़ में 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। जबकि पांच T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा, वहीं दूसरा 9 अक्टूबर को रांची में, तीसरा 11 को इंदौर में, चौथा मैच हैदराबाद में 14 अक्टूबर को और दौरे का अंतिम मैच बेंगलुरु में 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैंप।
1: साइना नेहवाल ने खेलो सानंद उत्सव 2026 का आज उद्घाटन किया। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने गुजरात के सानंद में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सानंद में सभी 105 गांवों में 18 दिवसीय ओलंपिक खेल अभियान की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर साइना नेहवाल ने कहा कि ये देखकर बेहद अच्छा लगता है कि नई प्रतिभाएं खेल के मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चों को मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए देख रही हूँ, कंपटीशन के लिए रेडी होते हुए देख रही हूँ। एंड आई एक उत्सव बनाया जाता है किसी चीज का, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स में, और इससे यही चीज सीखी जाती है कि आई एम श्योर कि अभी वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के लिए टारगेट कर रहे हैं। फ्यूचर में हमें यहाँ से इतने सारे प्लेयर्स मिलेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा करेंगे।
1: तो अतर, जब जिलों तक खेल पहुंचता है, जब वो अंतर्राष्ट्रीय पैमानों को पार करके जिलों कस्बों तक पहुंचता है, तो सिर्फ खेल नहीं खिलाड़ियों का मान बढ़ता है। कितने सहायक है इस प्रकार के मंच,
0: बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ग्रामीण अंचलों से जब खेल निकलते हैं तो जिला स्तर पर पहुंचते हैं, और जिला स्तर से निकलकर प्रदेश स्तर पर पहुंचे, राज्य स्तर पर पहुंचते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में वो आकर्षण का केंद्र बनते हुए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम रोशन करते हैं। अब कितने ही खेलों की हम बात करें, खेलो इंडिया का अगर हम जिक्र करें, ट्राइबल गेम्स की अगर हम बात करें, युवा खेल की बात करें, तो इनमें से जो खिलाड़ी निकल करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ढेरों पदक ला रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और जो उनका सपना है और जो उनके प्रयास है, जो प्रोत्साहन है, उसके अनुरूप हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, पदक

0: ला रहे हैं, स्वर्ण पदक ला रहे हैं और भारत का नाम निरंतर रोशन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भारतीय खिलाड़ियों को मंझने का तराशने का एक मौका मिलता है और तराशने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब वो पहुंचते हैं तो वो पदक भारत के लिए लाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और वो भारत के जो प्रदर्शन है वो मेडल टैली में साफ नजर आता है कि सात समंदर दूर तक कहीं कोई प्रतियोगिता हो, भारतीय खिलाड़ी अब सिर्फ प्रतिभाग नहीं करते पदक के साथ लौटते हैं।
0: बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 वर्ष के बाद फिर से आयोजित की जा रही है। ये टूर्नामेंट श्रीलंका के जवाहरलाल नेहरू इंडोर कॉम्प्लेक्स में शनिवार से शुरू हो रहा है। इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।
1: वहीं भारतीय टीम कोरिया के खिलाफ डेविस कप क्वालिफायर के दूसरे दौर के मुकाबले में कल उतरेगी, जब उसकी नजरें डेविस कप के अंतिम 8 में जगह बनाने पर होंगी और एक बार फिर भारत के दक्षिणेश्वर सुरेश से अपेक्षाओं पर खड़े उतरने की उम्मीद होगी। उनका सामना कल सियोल में कोरिया के नंबर एक खिलाड़ी सुन वू क्लोन से होगा। और अतर कार्यक्रम में थोड़ी सी चर्चा एशियाई खेलों की भी कर ली जाए। बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, 503 खिलाड़ियों का दल है। बहुत कम समय में समझना चाहेंगे किन खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी।
0: कई सारे खिलाड़ी हैं लेकिन विशेष रूप से अगर हम बात करें आप शायद संक्षेप में करना चाहेंगे तो पहले तो मैं चर्चा करना चाहूंगा साक्षी चौधरी की। महिला बॉक्सर साक्षी चौधरी ने बेहद कम समय में अपनी खास पहचान बनाई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में साक्षी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा और वो स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी।
1: तो मैं साक्षी के आगे एक नाम अतर जोड़ देना चाहूंगा, अनाहत सिंह से भारत को प्रबल दावेदार है पदकों की। स्क्वाश खिलाड़ी है, 18 वर्षीय है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती है और मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को सबसे कम उम्र में भारत के लिए एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली ये खिलाड़ी, इसके पहले 2022 में 2 कांस्य पदक भारत के लिए महज 14 वर्ष की उम्र में जीत चुकी है।
0: दो खिलाड़ियों का और जिक्र करूंगा, अनुष्का यादव हैमर थ्रो में और आयुष शेट्टी के हम जरूर चर्चा करेंगे, वो भी उलटफेर करने में सक्षम है।
1: जी बिल्कुल, दिग्गज खिलाड़ी है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल आईडी sportscan@aiar@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और अतर को अनुमति दीजिए,
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
3: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे

0: चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है। और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.2,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी, क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर

0: आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को माई गव प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए माई गॉव प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माय गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने माई गॉव को एक अच्छी पहल बताया।
3: माई जीओवी के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं, साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता, बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
1: इस माई गॉव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है।

0: एक लाख करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत आरडी बर्मन का।

ये थी लता मंगेशकर, फिल्म थी लेबाज। दिल है कि मानता नहीं, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। बोल लिखे हैं रानी मलिक ने, संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

दिल है कि मानता नहीं। अभी आपने इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल को सुना। अब सुनिए आरती मुखर्जी को, फिल्म है मासूम। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

खयाम के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए। इस बार फिल्म है रजिया सुल्तान, आवाज लता मंगेशकर की, और इसे लिखा है जानिसार अख्तर ने।

अभी आपने जगजीत सिंह को फिल्म अर्थ में सुना। कैफी आजमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी कुलदीप सिंह ने। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि शब्दकार लिखें, शायर लिखें या गीतकार लिखें। हसरत जयपुरी का असली नाम था इकबाल हुसैन। 15 अप्रैल सन 1922 में गुलाबी नगरी जयपुर में वो पैदा हुए। यहीं से उन्होंने उस समय की मिडिल तक की अंग्रेजी में पढ़ाई की। बाद में उनके दादाजी फिदा हुसैन ने उन्हें उर्दू और फारसी की

बात 1940 की है जब हसरत जबरी मुंबई आए और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। 11 रुपए बतौर तनख्वाह उन्हें मिलती थी। चूंकि शायरी का शौक उन्हें था ही, तो वो मुशायरों में शिरकत किया करते थे। जिस तरह हीरे की पहचान जौहरी को होती है, पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर ने हसरत को ऐसे ही किसी मुशायरे में देखा और अपने बेटे राज कपूर से, जो कि फिल्म बरसात का निर्माण कर रहे थे राज कपूर, हसरत जयपुरी की सिफारिश कर दी और इकबाल हुसैन से वो बन गए हसरत।

बरसात फिल्म का हसरत जयपुरी साहब का ये पहला रिकॉर्डेड गाना था। फिल्म बरसात में ही एक और गाना उन्होंने लिखा जो एक ड्यूएट था।

ग्रेट शोमैन राज कपूर ने अपनी जो क्रिएटिव टीम बनाई उसमें संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और मुकेश, ये उस जमाने का माना हुआ सफलता का राज कपूर का जैसे फार्मूला था। दोस्तों, दूसरे बैनर के लिए भी इस क्रिएटिव टीम ने काम किया है। प्रेम के मधुरता की और जीवन दर्शन की जिस गाने में बात होती वो गीत शैलेंद्र लिखते, और जिस गाने में हुस्न व इश्क की बात, मोहब्बत के शबनम की नजाकत की बात होती वो गाना हसरत जयपुरी साहब लिखते।

शैलेंद्र और हसरत जयपुरी में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और इज्जत थी। गीतकार शैलेंद्र साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे मारे गए गुलफाम, इस फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा पर आधारित। वो स्वयं उच्च कोटि के गीतकार थे, पर वो अपने इस साथी को नहीं भूले और हसरत जयपुरी ने भी जैसे कलम तोड़ लिखा कि अमर हो गया वो गाना।

शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाए तो हसरत जयपुरी ने भी फिल्म हलचल की कहानी लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दोस्तों, 1951 में आई इस फिल्म के निर्माता थे के आसिफ साहब। गाने ख्वार बाराबंकी साहब ने लिखे थे और संगीतकार थे मोहम्मद शफी साहब और सज्जाद हुसैन साहब।

हसरत जयपुरी ने आर के बैनर के लिए 1949 से 1971 तक मुसलसल गाने लिखे। मेरा नाम जोकर और कल आज और कल इन फिल्मों के फ्लॉप होने तक हसरत जयपुरी आर के बैनर के लिए लिखते रहे। बाद में भी उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए गाने

दोस्तों, हसरत जयपुरी को कई इनाम और इकराम से भी नवाजा गया है। 1966 में आई फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओं को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड उन्हें मिला।

हसरत जयपुरी को उर्दू कॉन्फ्रेंस का जोश मलिहाबादी अवार्ड भी मिला। मेरे हुजूर फिल्म के एक गाने झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, इसके लिए भी उन्हें ब्रज भाषा गीत का डॉक्टर अम्बेडकर

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी राउंड टेबल की डॉक्टरेट भी उन्हें मिल चुकी है। 1972 में आई फिल्म अंदाज के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए भी हसरत जयपुरी साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, हसरत जयपुरी ने 350 फिल्में की हैं और 2000 से ज्यादा रिकॉर्डेड गाने उनके पायदार गीतकार होने की गवाही देते हैं। हसरत जयपुरी ने शंकर जयकिशन, सज्जाद हुसैन से लेकर आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित तक के सभी संगीतकारों के साथ काम किया है। गीतों का इतना बड़ा खजाना उनके नाम है, इसका हसरत जयपुरी को कभी भी गुमान न था। कभी बेखुदी में उन्होंने कहा था कि हमने जो नक्श छोड़े हैं वो कभी मिट नहीं सकते हैं। ये कोई गलत बयानी नहीं थी, ये हकीकत खुद उनके हमजबानी थी। दोस्तों, इसी की ताईद करते हैं उनके लिखे गाने। वैसे तो हसरत जयपुरी ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। दोस्तों, उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं ससुराल,

पगला कहीं का इस फिल्म का ये जो गाना उन्होंने लिखा है दोस्तों, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, वाकई इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उनके लिखे हुए तमाम गाने आज भी हमारी जहनों में रचे बसे हुए हैं।

मुझे। आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा

0: आकांक्षा सिंह का, संपादक व प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का सुरगाम ही चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बजे है। पेश नजर है

अक्सर दिल टूट सा जाता है, हर याद अब आंखों में उतर जाता है। तेरी मोहब्बत अब सिर्फ याद बन गई और हर लम्हा गम में बदल जाता है। इसी के साथ फिल्म संगीत का आगाज करते हैं, तो कबूल कीजिए शबाना शेख का प्यार।

सुनते हैं जब जब फूल की रस्म का गीत मोहम्मदी की आवाज में बोल बख्शी के हैं और धुन कल्याण जी आनंद जी की है। तुम्हें तो सफर आसान लगता है, तेरे बिना दिल सुनसान लगता है। मोहब्बत का रिश्ता सबसे प्यारा है, तेरे बिना दिल अधूरा लगता है।

का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना और अब सुनते हैं शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज में आंसू फिल्म का गीत। जो दिल का गम अब भूले मुंह तक उतर गया, तेरे बिना दिन मेरा बेसहारा रह गया। तेरी हंसी याद आती है हर शाम, मगर तू अब किसी और का

लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत सुना। आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अमर प्रेम फिल्म का नगमा। नामगान है आनंद बख्शी और मौसी की राहुल देव बर्मन की है। तेरे बिना दिल बेचैन रहता है, तेरे बिना हर सपना अधूरा लगता है। हर खुशी का मजा फीका हो गया, तेरे जाने के बाद अब सब सुना।

प्रेम इस फिल्म का गीत अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना और अब सुनते हैं रविन्द्र जैन के गीत और संगीत निर्देशन में किशोर कुमार की आवाज में चोर मचाए शोर फिल्म का गीत। टूटे दिल को कोई समझ नहीं पाता, जुदाई का दर्द कोई कह नहीं पाता, हर हंसी के पीछे छुपे होते हैं गम, मगर ये राज कोई देख नहीं पाता।

और आप सुन रहे हैं रफी की आवाज में लैला मजनू फिल्म का गीत। गीतकार हैं साहिर और मौसिकी मदन मोहन की है। दिल के टुकड़े हर रोज मेरे रोते हैं, तेरी यादों की बारिश में भीगते हैं। तेरी चाहत अब सिर्फ ख्वाब बन गई, मगर तेरी कमी हर पल मुझे सताती है।

उनका भी तबला अपनी मोहम्मदी की आवाज में सुना आप सुनते हैं रविन्द्र जैन के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले की आवाज में कालू चरण फिल्म का गीत।

तेरी यादों का सिलसिला कभी थमता नहीं, झूठे वादों का वो जहर कभी उतरता नहीं। शायद तुम्हें खबर भी नहीं होगी मेरे हाल की, पर ये दिल आज भी किसी और के लिए धड़कता नहीं।

आशा भोसले की आवाज में भी अपने कालीचरण फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं अनवर की आवाज में अर्पण फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हर मुस्कान के पीछे दर्द छुपा है, तेरे बिना दिल अधूरा सा लगता है। तेरी यादों का साया अब भी साथ है, मगर तू दूर और मैं तन्हा लगता है।

अब आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में बेमिसाल फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन आरडी बर्मन की है। तेरी मोहब्बत अब सिर्फ याद बन गई, तेरी बातें दिल में रहकर जल गई। हर खुशी में अब तेरी कमी खलती है, तेरी जुदाई में मेरी

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में बेमिसाल फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं अंजाम का लिखा गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। तन्हाई की छांव में दिल रोता है, हर खुशी अब अधूरी हो जाती है, तेरी यादें अब भी पास है मेरे पर तू अब दूर कहीं खो जाती है।

लगी शराब फिल्म से आवाज किशोर कुमार की है, वो अनजान के है धुन बट पुलहरी की है। तेरे बिना हर रात तन्हा होती है, तेरे बिना हर सुबह वीरान होती है। दिल अब सिर्फ तेरी यादों में खो गया, तेरी सितार मेरी रूह को रुलाती है।

किशोर कुमार की आवाज में शराबी फिल्म का गीत सुना। और अब सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में बेताब फिल्म का दो गाना, जिसे लिखा है आनंद बखी ने और दर्ज राहुल देव बर्मन की है। तेरी यादों का हर

शब्बर कुमार की आवाज में बेतन फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं संसंगीत की आखिरी पेशकश रेशमा की आवाज में हीरो फिल्म से पूनम बख्शी के हैं धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। तन्हाई में हर आवाज खो जाती है, हर खुशी अब वीरान हो जाती है, दिल की दुनिया सुनी और खाली है, तेरी आती हर पल मुझे सताती।

हर मुश्किल में अपने प्यार को बचाना है। मोहब्बत की मिसाल वो होती है जो हर कम में मुस्कान लाना है। इसी के साथ फिल्म संगीत अभी ही समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ का नया चैनल है। रात्रि के 11 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री हेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी

0: क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्ले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं और हमारी आज की सभा यही समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ बखैर, जय हिंद।